नमस्कार, सुप्रभात। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 31वीं तिथि, तदनुसार आज दिनांक 22 जून सन 2026 ईस्वी, समय प्रातः के 5:55 और 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा का आरंभ करते हैं इस मंगल ध्वनि के साथ।

0: यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। समय सुबह के 6 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार। समाचारों की कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
2: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वे चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगी और चीतों की देखभाल करने वाले वनकर्मियों तथा स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति ने कल चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस समय देश में 52

चीते हैं जिनमें 49 कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हैं। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवादी रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों पर की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान केप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप जी के मुकाबले में ईरान और बेल्जियम के बीच मैच बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा। वहीं ग्रुप एच में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। आज ग्रुप एच में उरुग्वे और केप वर्डे के बीच मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। आज ग्रुप एच में उरुग्वे और केप वर्डे के बीच मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: runs by Marie-Jeanne Kapp. South Africa defeated India by 6 wickets in a Group A match of ICC T20 World Cup in Manchester last night, chasing a target of 159 runs set by India. South Africa scored 161 for 4 with 5 balls to spare. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 324.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे के 6:10 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

श्रोतों, आज सोमवार है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अनुराधा पौडवाल और साथियों के स्वर में भोलेनाथ की इस महिमा के साथ।

अभी आप सुन रहे थे अनूप जलोटा और साथियों के स्वर में ये भक्ति रचना। भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए लखबीर सिंह लखा और साथियों को।

गरीबी से बुरा हाल, धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका, ए किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ए द्वार

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नरेंद्र चंचल और साथियों के स्वर में ये भक्ति रचना। कार्यक्रम के आखिर में सुनिए इंद्रेश जी महाराज के स्वर में ये भक्ति रचना।

0: श्रोताओं, अभी आप सुने थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सुबह के 6:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम चिंतन। आज का चिंतन है नाम की महिमा। वाचक स्वर हैं यशपाल सिंह राठौर के।
1: यह निर्विवाद सत्य है कि ईश्वर का वास घट घट में होता है, या हम यूं कह सकते हैं प्रभु सर्वत्र विद्यमान है, सर्वशक्तिमान है। भगवान कृष्ण और नारद जी के मध्य हुए संवाद के अनुसार एक स्थान पर भगवान कृष्ण नारद जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे नारद, मैं न तो वैकुंठ में निवास करता हूँ, न ही कैलाश पर्वत पर अथवा किसी सागर में निवास करता हूँ, बल्कि जहाँ मेरे भक्त मेरा सुमिरन करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, वही होता है मेरा वास्तविक निवास। ऐसी पवित्र भावना, ऐसा अटल विश्वास जिस भक्त के मन में समा जाए, तब उस उल्लसित स्थिति का आप स्वयं अंदाज लगा सकते हैं। जिसने नर नारी में नारायण की मूर्ति का एहसास कर लिया, वह ईर्ष्या अहंकार की मलिनता से स्वतः ही मुक्त हो गया। कहते हैं, हम सबका एक ही मालिक है, हम सभी उस परमेश्वर की संतान हैं जिसने इस सुंदर संसार की रचना की है। फिर जाति पाति, ऊंच नीच, धर्म, मजहब, भाषा, प्रांत को लेकर ये भेदभाव कैसा? भारत जैसे महान देश में जहाँ सभी धर्मों का समुचित सम्मान किया जाता है, उस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के नागरिक कहलाने में हमें कितने फख्र का एहसास होता है, कितना गर्व होता है। जिस तरह सभी नदियाँ बहते बहते अंत में एक ही सागर में आकर विलीन हो जाती हैं, उसी तरह प्रभु अथवा खुदा के कई नाम हैं। कोई ईश्वर के नाम से उनकी भक्ति करते हैं, तो कोई अल्लाह ताला के नाम से उनकी इबादत करते हैं। भक्ति के विविध रास्ते हैं, पर अंत में सभी रास्ते एक ही स्थान पर मिल जाते हैं। भक्ति मार्ग के पथिक को वहाँ पहुँचने पर मिलती है एक अनिर्वचनीय शांति, प्रभु सुकून का एक एहसास, जिसकी अभिव्यक्ति शब्दों में नहीं की जा सकती। आवश्यकता इस बात की उस परवरदिगार, उस परमपिता परमेश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारी आस्था कभी खंडित न हो। जीवन यात्रा में चाहे अनुकूलताएं, चाहे प्रतिकूलताएं, सुख हो अथवा दुख हो, हम उस परमपिता परमेश्वर को भूले नहीं। मन में एक विश्वास कायम रहे, अन्यथा बात बनेगी नहीं। किसी ने ठीक ही कहा है, सुख में सुमिरन ना किया, दुख में करता याद, कहें कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। अतः निर्मल भाव, श्रद्धा से, विश्वास के साथ उसका गान करते रहें, उसकी प्रार्थना, साधना, उपासना में लीन रहकर एक निश्चित लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में

0: उस परमेश्वर का आपके सिर पर वरदहस्त बना रहे, सभी प्राणियों पर उसकी कृपा बनी रहे। यही है नाम की महिमा।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। आज का चिंतन था नाम की महिमा। वाचक स्वर थे यशपाल सिंह राठौड़ के।

आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। समय सुबह के 6:50 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित किए जाने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:10 पर किसान भाई सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम खेती हर वास्ते। जानकारी का विषय होगा कुष्मांड कुल की सब्जियों की देखभाल। प्रातः 7:20 पर कार्यक्रम मानस गान में आप सुन पाएंगे भाग संख्या 282। प्रातः 7:30 पर कार्यक्रम सुप्रभात में आज जानकारी के विषय होंगे अतिथि सत्कार, सत्य ही शिव है और संस्कार अनमोल दौलत है। 8:45 पर आप सुन पाएंगे हमारे जयपुर केंद्र से कार्यक्रम समाचार तरंग। 9:10 पर कार्यक्रम मरुमंगल में आज कलाकार होंगे कालूराम प्रजापत। 9:30 पर आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत और प्रातः 10 आप सुन पाएंगे कार्यक्रम आज के फनकार। आपके फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम गीत बहार आप सुन पाएंगे प्रातः 11:00। 12:05 पर कार्यक्रम होगा सैनिकों के लिए। सुगम संगीत आप सुन पाएंगे दिन में 12:30 पर। 12:50 पर कार्यक्रम खेत खलिहान में आज जानकारी का विषय होगा फर्टिगेशन अपनाएं और उपज बढ़ाएं। दिन में 1:05 पर महिलाएं सुनेंगे अपना कार्यक्रम महिला जगत। चर्चा के विषय होंगे ऊर्जा की बचत में महिलाओं का योगदान, बस्तर हस्तशिल्प कला, घरेलू उपकरणों की देखभाल और कच्चे आम के व्यंजन। संध्या 5 युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी। जानकारी के विषय होंगे राजस्थान की प्रमुख नदियां, पद्म पुरस्कार, मांड गायिका गौरी देवी पर बातचीत, विज्ञान के चमत्कार और आज का इतिहास। संध्या 6:05 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सिराइकी। संध्या 7 ग्रामीण परिवार सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम चौपाल। 7:45 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम एक ही फिल्म से आप सुन पाएंगे हमारे केंद्र से रात्रि 8:00। रात्रि 10:00 आप सुन पाएंगे हमारे जयपुर केंद्र से कार्यक्रम खेल जगत। आज की ये सभा हमारी संपन्न होगी रात्रि 11:10 पर।

0: एवं च सदस्याः त्वरितम् आपद उत्थार अभियानम् आरब्धवन्तः। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजयः उच्चस्तरीय अन्वेषणस्य आदेशं दत्त्वा त्रिसदस्यीयां समितिं नियुक्तवान्। फीफा विश्व कप चषके केप वर्डे उरुग्वे च अनयोः दलयोः स्पर्धा तत्र द्वि द्वि अंकेन समतायाम् अभवत् इति वार्ता।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्र शामिल हैं।
2: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल रहेंगे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी आज से UGC नेट जून 2026 की परीक्षा शुरू करेगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में इस महीने की 30 तारीख तक प्रतिदिन 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF और सहायक प्रोफेसर के पदों तथा PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान कैप ने

0: नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर महिला और पुरुष क्रिकेट दोनों में 200 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुश्तबा। Prime Minister Narendra Modi says a strong maritime capability is the deciding factor for a country's economic and strategic influence, and India is preparing for it. In his address after commissioning three indigenously built naval ships in Kolkata, Mr. Modi said India does not want to remain only a buyer country in the defence sector, and the nation's armed forces cannot become just a market for the world. The Prime Minister commissioned indigenously built 12th frigate Dunagiri, survey vessel Sanshodhak,

0: ये गर्मी और वर्षा ऋतु दोनों में एक करी जा सके है। कद्दू कुल की प्रमुख सब्जियां जी आपने वांगी बात करा, तरबूज है, खरबूजो, कद्दू, तोरई, लौकी, पेठो, ककड़ी, टिंडा, खीरा, करेला ये मुख्य रूप में है। आगे अच्छी उन्नत किस्मा की बात करा जी, लौकी की बात करा, पूसा समर प्रोलिफिक लॉन्ग, पूसा समर प्रोलिफिक राउंड, पूसा मंजरी, पूसा नवीन, अर्का बहार, पूसा मेघदूत ए लौकी की अच्छी उन्नत किस्म है। तरबूज की बात करा तो सुगर बेबी, दुर्गापुरा मीठा, दुर्गापुरा केसर, अर्का ज्योति, मधु और सिलेक्शन एक। कद्दू की बात करा, पूसा विश्वास, पूसा अलंकार और अर्का चंदन। खरबूजे की उन्नत किस्मा की बात करा, दुर्गापुरा मधुर, पंजाब सुनहरी, पंजाब हाइब्रिड, अर्का जीत, हरा मधु और पूसा मधुरस। चिकनी तुरई की बात करा, गलगल तोरी जिकने पूसा चिकनी के नाम से भी जानो जाए, धारीदार तुरई, पूसा नस्तार, खीरे की अच्छी उन्नत किस्मा, बालम खीरा, पाइन सेट, पूसा संयोग। करेले की बात करा, कोयमटूर लौंग, पूसा दो मौसमी, प्रिया, अर्का हरित और पूसा विशेष। ये आपने कुष्माण्ड कुल की जिकी सब्जियां हैं बांगी अच्छी उन्नत किस्म है। टिंडे की बात करें तो बीकानेरी ग्रीन, दिल पसंद, पंजाब 48, हिसार सिलेक्शन एक, ककड़ी लखनऊ अगेती। और बुआई के टाइम की बात करा तो तरबूज है, खरबूजो है, ककड़ी है फरवरी मार्च में, और तुरई, खीरा, लौकी, कद्दू, करेला, टिंडा आंगी भी बुआई आपा इन टाइम जकी कर सका फरवरी मार्च में, और आंगी वर्षा कालीन में भी आपा बिजाई जकी कर सका। बीजा ने बीजनेस यूँ पहला भूमि जनित बीमारियां की रोकथाम का तर आपने 52-2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित कर लेना चाहिए। किसान भाई खाद और उर्वरक की बात करा, गोबर की खाद 40 से लेके 50 क्विंटल प्रति बीघे तई, नत्रजन 20 से लेके 25 किलोग्राम प्रति बीघे तई, फास्फोरस 10 किलोग्राम प्रति बीघे तई और पोटास 10 किलोग्राम प्रति बीघे तई। देसी खाद पोटास और फास्फोरस आंगी पूरी मात्रा, नत्रजन की 1/3 मात्रा, 7.5 किलो नत्रजन बुआई के टाइम भूमि में मिला के दे देनी चाहिए। शेष बचड़ी नत्रजन की मात्रा 2 बार छिड़काव के रूप में पहली बार बुआई गए 25 से 30 दिन के बाद में और दूसरी फूल आने के टाइम में दे देनी चाहिए। बीज की मात्रा की बात करा, लौकी, कद्दू, करेला, तरबूज, तुरई, टिंडा अंग बीज 1 किलो ले गए 1.25 किलो प्रति बीघा की दर से, और खरबूजे खीरा और ककड़ी को बीज है देखो 0.5 किलो बीज प्रति बीघा के हिसाब से अपने बीजना चाहिए। बुआई के टाइम की बात करा तो बुआई को टाइमिंग वो फरवरी और मार्च में है, और कद्दू कुल की सब्जियां की बुआई नालियां में करनी चाहिए और एक स्थान पर 2 या 3 जगह बीज लगाना चाहिए। अंकुरण के बाद जो स्वस्थ बीज अभी ने रख लेना चाहिए, बाकी ने उखाड़ के रख काट देना चाहिए। सीधे खेत में बीजने के कारण बिजाई की बुआई से पहले 24 घंटे पानी में बीज ने भिगो कर टाट में बांध के अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए। बिंगे बाद ही बीजा ने बीजना चाहिए, क्योंकि अंकुरण की प्रक्रिया जी की बात बहुत ही तेजी से हो। तो इस हिसाब आपने कद्दू कुल की सब्जियां बीजते टाइम जितने भी आप सावधानी भी रखनी चाहिए, और बात जब भी आप बीजा तो नालियां में बीजनी चाहिए। नालियां की जिकी चौड़ाई है वह 2 मीटर लेके 3 मीटर तक होनी चाहिए। बीज बीज की दूरी भी मैं 2.25 फुट लेके और 3 फुट तक होनी चाहिए। तो जब आप मैं जो को पूरा लाभ है जो को ले सकांगा, जटे भी आपने अच्छो स्वस्थ बीज है वो उग जाए तो वो रखना चाहिए, बाकी बीज आपने काट देना चाहिए। और जितना भी अच्छा ही बेल वाली सब्जियां में आप वैज्ञानिक ढंग ध्यान रखांगा, टाइम टाइम सर आप खेत की देखभाल करांगा तो जी में हरी बीमारी कीड़ो कांटो या घास कूट लो है बिंगी तुरता फुरता आप निगह करांगा, निकालता रहांगा, बिंगी रोकथाम करांगा। जदि आप लाभ है जो कोई सूं ज़्यादा ले सकांगा तो अपन जद भी ये साग सब्जी वाली फसलें बीजनी हुए तो विशेष तौर है बड़ी नाजुक वगैरह पर अपन सावधानी से ही काम करना चाहिए। जदि आप इस पूरा लाभ है जो को ले सकांगा, पढ़ अब चलूँ, राम राम सा राम राम।
1: कुष्माण्ड कुल की सब्जियों की देखभाल, अभी किसान भाई सुन रहे थे इस विषय पर जानकारी कार्यक्रम खेती हर वास्ते में। श्रोतों लीजिए सुनिए लोक भजन, आज कलाकार हैं चीड़ी देवी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोक भजन। आज कलाकार थी चीड़ी देवी। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सुबह के 7:20 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम मानस गान में भाग संख्या 282।

अशोक वाटिका में हनुमान उस वृक्ष की डालियों पत्तों में छिपे बैठे हैं जिसके नीचे सीता बैठी हैं। रावण सज धज कर नारियों के समूह के साथ वहां आता है। साम दाम दंड भेद सभी प्रकार से वो सीता को समझाता है कि हठ त्याग कर वे अपने को उसके सुपुर्द कर दें। वो मंदोदरी समेत सभी रानियों को उनकी दासी बनाकर रखेगा। किंतु जुगनुओं के प्रकाश से भला कमल खिल सकता है? सीता जी ये कहते उसकी भर्त्सना करती हैं कि वो रघुनाथ जी के वाणों से परिचित नहीं है और इसी कारण वो पापी निर्लज्ज उनका हरण कर लाया है। अपमानित रावण क्रोध में कांपता कृपाण लेकर उनकी ओर बढ़ा ही था कि पटरानी मंदोदरी ने नीति की दुहाई देते हुए उसका हाथ रोक दिया। सीता को सोच विचार करने के लिए एक माह का समय देकर रावण वहां से विदा हो जाता है। रावण की दासियों में एक थी त्रिजटा, जिसे श्रीराम के चरणों में अथोर प्रीति थी। वो अन्य राक्षसियों को अपना स्वप्न सुनाती है जिसमें उसने एक वानर को लंका दहन करते देखा था। ये भी देखा था कि रावण के दसों सिर मुड़े हुए, बीसों भुजाएं कटी हुई हैं और वो गधे पर सवार है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मानस कान में भाग संख्या 282। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ जोन एआईआर पर। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। इस वक्त हमारे स्टूडियो घड़ी में सुबह के 7:30 और 20 सेकेंड हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात।

आज के इस कार्यक्रम में हमारे जानकारी के विषय होंगे अतिथि सत्कार, सत्य ही शिव है और संस्कार अनमोल दौलत है। तो श्रोताओं, सबसे पहले हम बात करते हैं अतिथि सत्कार पर। श्रोताओं, भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता के समान माना गया है। हमारे यहाँ अतिथि देवो भव की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। अतिथि सत्कार का अर्थ है घर आए मेहमान का प्रेम सम्मान और साथ आदर के साथ स्वागत करना। अतिथि सत्कार हमारी सभ्यता और संस्कारों का प्रतीक है। जब कोई अतिथि हमारे घर आता है तो उसका मुस्कुराकर स्वागत करना, उसे बैठने के लिए उचित स्थान देना तथा उसके भोजन और आराम की व्यवस्था करना हमारा कर्तव्य होता है। इससे आपसी प्रेम, सद्भाव और सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं। श्रोताओं, भारत में अतिथि सत्कार को विशेष महत्व दिया गया है। प्राचीन ऋषि मुनि और राजा महाराजा भी अतिथियों का आदर करते थे। आज भी गांव शहरों में लोग अतिथियों का स्वागत बड़े प्रेम और सम्मान के साथ करते हैं। अतिथि सत्कार एक श्रेष्ठ गुण है जो व्यक्ति के अच्छे संस्कार और मानवता को दर्शाता है। हमें सदैव अपने घर आए अतिथियों का सम्मान करना चाहिए और अतिथि देवो भव की भावना को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इससे समाज में प्रेम, भाईचारा और सौहार्द बढ़ता है। श्रोताओं, बातें आपके साथ और भी करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं फिल्म वीर जारा का ये गीत।

श्रोताओं, प्राचीन भारतीय संस्कृति में सत्य को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। सत्य ही शिव है और इसका अर्थ है कि सत्य ही कल्याणकारी, शुभ और मंगलमय है। सत्य मनुष्य के जीवन का आधार है और वही उसे सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सदैव सम्मान और विश्वास प्राप्त करता है। सत्य मनुष्य के चरित्र को महान बनाता है तथा समाज में शांति और सद्भाव स्थापित करता है। महात्मा गांधी जी ने भी अपने जीवन में सत्य और अहिंसा को अपनाकर पूरे विश्व को सत्य की शक्ति का परिचय कराया। उन्होंने कहा था कि सत्य ही ईश्वर है। श्रोताओं, असत्य कुछ समय के लिए लाभदायक प्रतीत हो सकता है, लेकिन अंततः वह दुख और विनाश

अकारण बनता है। सत्य कठिन अवश्य हो सकता है, परंतु उसकी विजय निश्चित होती है। इसी कारण कहा गया है कि सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की ही विजय होती है। श्रोतों, आज के समय में जब समाज अनेक प्रकार की समस्याओं और भ्रमों से घिरा हुआ है, तब सत्य का महत्व और भी बढ़ जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सत्य, ईमानदारी और नैतिकता का पालन करना चाहिए। अतः स्पष्ट है कि सत्य ही मनुष्य को और समाज के कल्याण का मार्ग है। इसलिए हमें सदैव सत्य का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में सत्य ही शिव है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। आज जानकारी के विषय थे अतिथि सत्कार, सत्य ही शिव है और संस्कार अनमोल दौलत है। प्रातः के 8 बजे हैं, लीजिए सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन करेगी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधिमंडलों की बैठक के बाद ईरान वार्ता में प्रगति। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड को 3-2 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की, सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं।
1: भारत निर्माता बनना चाहता और जिस दिन निर्माता हो गए ना, उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता

0: पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह कूनो नेशनल पार्क में सफारी की। इसके बाद वे कूनो के चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का दौरा कर चीता परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया था। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं। उन्हें चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़कर भारत की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते लाए गए। संरक्षण और प्रजनन के प्रयासों के कारण अब कूनो में चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे परियोजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। समाचार कक्ष से मैं मृगनैनी पांडे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की UGC नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसर के पदों और PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देशभर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। इस बीच NTA ने नीट UG पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। NTA ने कहा है कि परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज भाजपा सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार के इस बजट पर सभी का ध्यान है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 कल शाम संपन्न हो गया। मुंबई में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने महोत्सव को गैर काल्पनिक सिनेमा के लिए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित समारोहों में से एक बताया। हमारी संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में पोलैंड के वृत्तचित्र सिल्वर ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता।
3: अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग में माया सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च और अंडर द स्नो को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म का सिल्वर कॉन्च दिया गया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग में आर्मस्ट्रॉन्ग फ्रॉम अंगलम्मन कोविल स्ट्रीट को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का सिल्वर कॉन्च मिला। वही स्मॉल क्लाउड को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म और वाई को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सिल्वर कॉन्च प्रदान किया गया। दी ओल्ड बुल नोज और वंस न्यू को सर्वश्रेष्ठ छात्र फिल्म का पुरस्कार मिला, जबकि द लास्ट शेल्टर को विकसित भारत, वंदे मातरम के 150 वर्ष, भारत एट

0: 2026 विषय पर बनी सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ मिफ 2026 का समापन हुआ। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। एक रिपोर्ट।
2: लेक ल्यूर्सन के निकट बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में बंद कमरे में हो रही इस वार्ता से पहले जेडी वेंस ने कहा कि अब तक की बातचीत के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं और आगे भी प्रगति की उम्मीद है। वार्ता का मुख्य केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इसके साथ ही इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम बनाए रखने सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा जारी है। जेडी वेंस ने कहा कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अमरीका लगातार प्रयासरत है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में इस वार्ता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर हम अपनी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 15 विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।
3: हम लिख के गया। ऐसे करते करते लेखक का दर्जा मिल गया।
4: सोना घाटी की पहाड़ी, पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था। वृक्ष विहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियाँ कुछ बची थी और वहाँ पर 8,000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।
5: समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा क्या करना है और क्या नहीं करना है।
6: मेरे मन माया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है।
1: ये विशेष कार्यक्रम आज और कल प्रातः 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड से प्रसारित होंगे, जिन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाकों और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा और लक्षद्वीप में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
7: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन और कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से नीट परीक्षा कराए जाने के समाचार छाए हुए हैं। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है योग। कोलकाता में योग दिवस समारोह के दौरान एक प्रतिभागी की मदद करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर भी अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित है। दैनिक जागरण ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पहाड़ से मैदान तक योगमय हुई दुनिया। सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाइयों और पानी की गहराइयों में योग करते सैनिकों के चित्र भी ध्यान आकर्षित करते हैं। पंजाब केसरी और दैनिक भास्कर ने क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की तस्वीरों को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर छापते हुए उनकी उपलब्धियां बयां की हैं। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, वैभव क्रिकेट की दुनिया का अजूबा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट देने 2,00,000 कम अभ्यर्थी पहुंचे। दैनिक जागरण बताता है कि देश विदेश के 5,454 केंद्रों पर यह परीक्षा हुई और गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है। परीक्षा में भाग ले रहे उम्मीदवारों को कोई कठिनाई ना हो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के हवाई अड्डे पर 45 मिनट प्रतीक्षा करने को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने पहलगाम हमले की जांच के सामने आए कुछ तथ्यों को सचित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, सीमा पार से आए ड्रोन ने गिराए थे हथियार।
1: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा आयोजित करेगी। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडैम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज स्ट्रॉन्ग मैरिटाइम केपेबिलिटी इज डिसाइडिंग फैक्टर फॉर अ कंट्रीज इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस एंड इंटर इज प्रिपेयरिंग फॉर इट। President Draupadi Murmu visits Kuno National Park in Madhya Pradesh, reviews progress of Project Cheetah. India to host two-day meeting of BRICS National Security Advisors in New Delhi today. National Testing Agency to commence UGC NET June 2026 examination from today. US Vice President J.D. Vance says Iran talks making progress as delegations meet in Switzerland. And in men's hockey, India beat Netherlands 3-2 in the last match of FIH Pro League Rotterdam leg. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that a strong maritime capability is the deciding factor for a country's economic and strategic influence, and India is preparing for it. He said a country with maritime capabilities is strong and has more economic and strategic influence.
2: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: Prime Minister Modi made these remarks after commissioning three indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra at the Shyama Prasad Mukherjee Port in Kolkata yesterday. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach shipbuilders and engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare.
2: जब समुद्री विरासत की बात होती है तो बंगाल का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आता है। यह भारत के समुद्री संपर्कों की भी महत्वपूर्ण भूमि रही है। हुगली की धाराओं ने इतिहास को बदलते हुए देखा है, व्यापार के नए अध्याय देखे हैं, विकास की नई यात्राएं देखी है और संयोग देखिए, ये पोर्ट बंगाल के ही सपूत देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर है।
1: Prime Minister Modi has expressed gratitude to people around the world for making the International Day of Yoga 2026 a global celebration. The Prime Minister said it is encouraging to see yoga bringing together people from all walks of life across nations in the shared pursuit of wellness and good health. He expressed hope that the day would inspire more people to make yoga a part of their daily lives in the times to come. President Draupadi Murmu visited Madhya Pradesh's Kuno National Park yesterday and reviewed the progress of Project Cheetah, India's flagship initiative to reintroduce the species in the wild after its extinction in the country. During the visit, the president toured the park's cheetah management area and was briefed by officials on the status of the project. Kuno, the country's first cheetah reintroduction site, has been developed under Project Cheetah because of its suitable habitat, adequate prey base, and relatively low human disturbance. More from our correspondent.
3: President Draupadi Murmu went on a safari at Kuno National Park this morning. The president will also interact with the members of the Saharia tribe working as cheetah mitras, cheetah trackers, local forest personnel

0: He says strong maritime capability is a deciding factor for a country's economic and strategic influence, and India is preparing for it. President Draupadi Murmu visits Kuno National Park in Madhya Pradesh, reviews progress of Project Cheetah. India to host two-day meeting of BRICS National Security Advisors in New Delhi today. National Testing Agency to commence UGC NET June 2026 examination from today. U.S. Vice President J.D. Vance says Iran talks making progress as delegations meet in Switzerland. And in men's hockey, India beat Netherlands 3-2 in the last match of FIH Pro League Rotterdam leg. And with that, we end the morning news. Have a great day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुस्तहकम बहरी सलाहियतें किसी मुल्क के इक्तसादी और दिफाई तौर पर मौसर होने में एक फैसलाकुन उंसुर का किरदार अदा करती हैं और भारत इसके लिए तैयारी कर रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता की पेशरफ्त का जायजा लिया। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों की दो रोजा मीटिंग की मेजबानी करेगा। इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी 2026 के यूजीसी नेट इम्तिहानात का आगाज आज से कराएगी। अमरीका के नायब सदर जे डी वांस ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत में पेशरफ्त जारी है। वफूद ने स्विट्जरलैंड में मीटिंग की है और मर्दों के हॉकी में एफआईएच प्रो लीग रोटरडम मरहले के अपने आखिरी मैच में भारत ने नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक मजबूत समंदरी सलाहियत किसी मुल्क के इक्तसादी और दिफाई तौर पर मौसर होने का फैसलाकुन उंसुर होती है और भारत इसके लिए तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि समंदरी सलाहियतों का हामिल कोई मुल्क मजबूत होता है और इक्तसादी और दिफाई तौर पर ज्यादा मौसर होता है।
2: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने यह रायजनी मुल्क ही में तैयार किए गए जंगजू जहाज दूनागिरी, जायजा लेने वाले जहाज संशोधक और गहरे पानी में सरगर्मियां अंजाम देने वाले आबदोस शिकन बहरी जहाज एग्रे को कल बहरिया के कामकाज में शामिल करते हुए किया। इन जहाजों को बहरिया के जंगजू जहाज तैयार करने वाले ब्यूरो ने डिजाइन किया है और इनकी तामीर गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने की है। इन बहरी जहाजों का मकसद जंगी सरगर्मियों को मुस्तहकम बनाना, समंदर के जायजे लेना और आबदोज शिकन कार्रवाइयां अंजाम देना है।
2: जब समुद्री विरासत की बात होती है तो बंगाल का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आता है। यह भारत के समुद्री संपर्कों की भी महत्वपूर्ण भूमि रही है। हुगली की धाराओं ने इतिहास को बदलते हुए देखा है, व्यापार के नए अध्याय देखे हैं, विकास की नई यात्राएं देखी है और संयोग देखिए, ये पोर्ट बंगाल के ही सपूत देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर है।
1: वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने दुनिया भर के लोगों का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने योग के 2026 के बैन-अल-अक़वामी दिन को एक आलमी तकरीब की शक्ल दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये बात हिम्मत अफजा है कि योग की वजह से दुनिया के मुल्कों में जिंदगी के सभी शोबों के लोग तंदुरुस्ती और अच्छी सेहत के लिए यकजा हो रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस दिन से मजीद लोगों को तहरीक मिलेगी और वो योग को आने वाले वक्त में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क की सैर की। उन्होंने चीता प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायजा लिया जो मुल्क में चीतों के खत्म हो जाने के बाद जंगल में इनकी बाजाबादकारी के लिए भारत का एक अहम कदम है। सदर जमहूरिया ने अपने दौरे में चीतों के बंदोबस्त के इलाके

0: दौरा किया। उन्हें अफसरों ने इस प्रोजेक्ट की मौजूदा सूरत हाल की जानकारी दी। कुनो मुल्क की पहली ऐसी जगह है जहां चीतों की बाजाबादकारी की गई है। इस जगह को प्रोजेक्ट चीता के तहत तैयार किया गया है क्योंकि ये इनके लिए एक मुनासिब और वाफर शिकार वाली जगह है। इसके अलावा यहाँ इंसानी मुदाखलत भी निस्बतन कम होती है।
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज कुनो नेशनल पार्क की सफारी का दौरा किया। उन्होंने सहारिया कबीले के अरकान से भी बातचीत की, जो चीता प्रोजेक्ट के तहत चीता मित्रों, चीता ट्रैकर्स, मकामी जंगलाती अमले और सयाहों के गाइड्स के तौर पर काम कर रहे हैं। इससे पहले इतवार को सदर जमहूरिया ने कुनो में चीता कमान और कंट्रोल मरकज का दौरा किया था और चीता प्रोजेक्ट से मुतालिक एक नुमाइश देखी थी। अफसरों ने उन्हें बताया कि भारत में फिलहाल 52 चीते हैं, जिनमें से 49 चीते कुनो नेशनल पार्क में हैं। तीनों चीतों को गांधी सागर जंगलाती तहफुजगाह में मुंतकिल कर दिया गया है। सदर जमहूरिया को मवेशियों पर नज़र रखने और उनकी ट्रैकिंग के निज़ाम के बारे में जानकारी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चीतों की बाजाबाद कारी का प्रोजेक्ट 2022 में शुरू किया था, जिसके लिए उन्होंने अपने यौम पैदाइश पर कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को लाकर बसाया था। इसके बाद जनूबी अफ्रीका और बोत्सवाना से मजीद चीते लाए गए। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: भारत आज नई दिल्ली में शुरू होने वाली ब्रिक्स कौमी सलामती के मुशीरों की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी के फराइज अंजाम देगा। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे, जिसमें इस ब्लॉक के 11 रुकन मुल्कों के सलामती से मुतालिक सरबराहान शिरकत करेंगे। इनमें भारत, ब्राज़ील, चीन, मिस्र, एथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: कॉन्फ्रेंस में सभी अरकान आज दुनिया को दरपेश सलामती के गैर रिवायती चैलेंजेस के मौजू पर तबादला ख्याल करेंगे। साथ ही वो कौमी सलामती को दरपेश खतरात की नौइयत पर बातचीत करेंगे और सलामती के उभरते हुए खतरात में नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी तवज्जो मरकूज करेंगे। वफूद साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल खतरात और मसनू जहानत से पैदा होने वाले खतरात पर भी गौरखोज करेंगे। सभी रुकन ममालिक के कौमी सलामती के मुशीर और वफद के सरबराहान इंफॉर्मेशन और मवासिलाती टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक ब्रिक्स की वर्किंग ग्रुप्स की हालिया मीटिंग के नतज का जायजा भी लेंगे। भारत की सदारत का मरकजी मौजू लचक पजीरी, इख्तरा, बाहमी ताउन और पायदारी को फरोग देना है, जिसकी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के आवाम पर मरकूज विजन की अक्कासी होती है, जिसे 2025 की रियो समिट में पेश किया गया था। चीन ने तस्दीक की है कि उसके वजीर खारजा वांग ई इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। दिल्ली से ऋषु जायसवाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। इम्तिहानात कराने वाली कौमी एजेंसी एनटीए आज से यूजीसी नेट 2026 का इम्तिहान शुरू कराएगी। कौमी सतह की एहलियत का टेस्ट हर रोज 2 शिफ्ट में इस माह की 30 तारीख तक कंप्यूटर पर मबनी टेस्ट सीबीटी मोड में कराया जाएगा। यूजीसी नेट इम्तिहान उन उम्मीदवारों के लिए कराया जाएगा जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन और पीएचडी कोर्सेज के दाखिले के लिए क्वालिफाई करने की ख्वाहिशमंद है। एनटीए ने सभी उम्मीदवारों को मशवरा दिया है कि वो अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड करें और इम्तिहान की सभी तफसीलात के पूरे ध्यान से तस्दीक करें। उसने कहा है कि उम्मीदवारों को इम्तिहान से पहले अपने इम्तिहान की तारीख, शिफ्ट, वक्त और इम्तिहान के मरकज़ के बारे में मालूमात हासिल कर लेनी चाहिए। मजीद ये कि पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को भी मशवरा दिया गया है कि वो अपने मुकर्रा इम्तिहानात के मराकज़ का पहले से दौरा करें ताकि मकाम और दस्तयाब सहूलियात से वाकफियत हासिल की जा सके। इम्तिहान कराने वाली कौमी एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली एक वीडियो के इन दावों को मुस्तरद कर दिया है कि इम्तिहान से पहले टेलीग्राम पर नीट यूजी 2026 के दोबारा इम्तिहान का सवालनामा इफ्शा हुआ था। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने कहा है कि नीट का इम्तिहान जामे सिक्योरिटी और निगरानी के तहत कामयाबी के साथ मुनक़िद कराया गया। उसने मजीद कहा कि तलबा के लिए इस तरह की गलत मालूमात जानबूझकर फैलाना एक संगीन जुर्म है। सीबीएसई ने 12वीं जमात से मुतालिक मामलात के तस्दीक नामे और दोबारा जाँच के नतज जारी करना शुरू कर दिए हैं। बोर्ड ने एक बयान में कहा कि इन नतज का ऐलान मरहलेवार किया जा रहा है, जिनमें से 87% से ज़्यादा दरखास्तों के नतज

0: का ऐलान कल कर दिया गया। बाकिया दरखास्तों के नतज दीगर मरहलों में जाहिर कर दिए जाएंगे और उम्मीद है कि यह अमल जल्द ही मुकम्मल हो जाएगा। दरखास्त किस मरहले में है इसकी मालूम rizalts.digilocker.gov.in पर की जा सकती है। CBSE ने तलबा को यकीन दिलाया है कि हर एक दरखास्त एक बड़े शफाफ और करीबी नज़र रखने वाले निज़ाम से गुजारी गई है। तलबा को मशवरा दिया जाता है कि वह अफवाहों या गैर तस्दीकशुदा सोशल मीडिया पोस्ट पर ध्यान न दें और वो सही मालूम के लिए CBSE के सरकारी बयान पर ही भरोसा करें। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू 2026 के पद्म इनामात सिविल अवार्ड्स की कल दूसरी तकरीब में अदा करेंगी। इस मौके पर हम अपनी सीरीज आकाशवाणी पर लोगों के पद्म के हिस्से के तौर पर आपके लिए 15 खसूसी प्रोग्राम नशर कर रहे हैं।
1: हम लिख के गया ऐसे करते करते लेखक का एक दर्जा मिल गया।
2: सोना घाटी की पहाड़ी, पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वो वृक्षविहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियाँ कुछ बची थी और वहाँ पर 8,000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।
3: समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा क्या करना है और क्या नहीं करना है।
4: मेरे मन माया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है।
0: आप इस गुफ्तगू को आज और कल 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुबह 9:10 से सुन सकते हैं। ये प्रोग्राम आप न्यूज़ ऑन AIR ऐप और न्यूज़ ऑन ऑफिशियल YouTube पर भी सुन सकते हैं। 19वां मुंबई बैन अलावामी फिल्म फेस्टिवल मिफ 2026 कल शाम एक शानदार तकरीब के साथ अख्ताम पजीर हो गया। मुंबई में अख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने गैर अफसानवी सिनेमा के लिए दुनिया में मुंबई बैन अलावामी फिल्म फेस्टिवल को एक सबसे पुरवकार फेस्टिवल करार दिया। पोलैंड की दस्तावेजी फिल्म सिल्वर को बैन अलावामी मुकाबला जाती जुमरे में बेहतरीन दस्तावेजी फिल्म के लिए पुरवकार गोल्डन कॉन्च एजाज से नवाजा गया। एक रिपोर्ट।
5: महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा, इत्तलात और नशरियात की वजारत में एडिशनल सेक्रेटरी जनाब प्रभात और दीगर शख्सियात ने मुख्तलिफ जुमरों में बेहतरीन फिल्मों को 18 एजाजात अता किए। बैन अलावामी मुकाबला जाती जुमरों में बेहतरीन एनिमेशन फिल्म के लिए माया सॉन्ग को सिल्वर कॉन्च के एजाज से नवाजा गया, जबकि अंडर द स्नो को बेहतरीन मुख्तसर अफसानी फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च एजाज से नवाजा गया। कौमी मुकाबला जाती जुमरों में बेहतरीन एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च का एजाज आर्म स्ट्रॉन्ग फ्रॉम अमंगलम कोविल स्ट्रीट को दिया गया, जबकि द लास्ट शेल्टर ने विकसित भारत वंदे मातरम के 150 साल भारत एट द रेट 2026 से मुतालिक बेहतरीन शॉर्ट फिल्म के लिए अवार्ड हासिल किया। मुंबई से अंकिता आप्टे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: अमरीका के नायब सदर जेडी वांस ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत में खातिरख्वाह पेशरफ्त हुई है, जबकि स्विट्जरलैंड में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और इलाकाई सलामती के मामलों से निपटने के लिए भी सीनियर वफूद की बातचीत हुई। जेडी वांस ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि मुजाकरातकारों के दरमियान बातचीत में मजीद पेशरफ्त का इम्कान है। अमरीका और ईरान के वफूद के दरमियान स्विट्जरलैंड के सियाहती मकाम बर्जन स्टॉक पर बंद कमरे में बातचीत शुरू की गई। मीटिंग से पहले नामाधिकारों से बात करते हुए जेडी वांस ने कहा कि मुजाकरात के सबब पहले ही हौसलाकुन नताइज बरामद हुए हैं। मुजाकरात के दौरान इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी बरकरार रखने की कोशिशों समेत इलाकाई सिक्योरिटी के मामलों के जरिए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर खसूसी तवज्जो दी गई। मर्दों की हॉकी में भारत ने कल FIH प्रो लीग रोटरडम मरहले के अपने आखिरी मैच में नीदरलैंड्स को 3-2 से हरा दिया। भारत की तरफ से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। कप्तान हार्दिक सिंह को उनकी बेहतरीन क़यादत और शानदार कारकर्दगी के लिए मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
6: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाली आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने भारतीय बहरिया में 3 जंगी जहाज़ों को शामिल किए जाने की खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में तैयार करदा 3 नए जंगी जहाज को भारतीय बहरिया में शामिल किए। वजीर आजम ने कहा कि तरक्की, सलामती और खुशहाली सब समुद्र से जुड़े हुए हैं। रोजनामा इनकलाब ने आलमी योम योग से मुतालिक खबर को नुमाया तौर पर शाये करते हुए सुर्खी लगाई है, आलमी योगा डे पर सदर जमहूरिया और वजीर आजम समेत दिगर पार्टियों के लीडरों ने योगा में हिस्सा लिया। इस मौके पर वजीर आजम ने कहा कि सेहतमंद रहने के लिए योगा जरूरी, योग ने इंसानियत को सेहतमंद, मुतवाजन और बामकसद जिंदगी का रास्ता दिखाया है।
0: और आखिर में खास खास खबरों का खुला

0: अच्छा, एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुस्तकम बहरी सलाहियतें किसी मुल्क के इक्तसादी और दिफाई तौर पर मौसर होने में एक फैसलाकुन अंसर का किरदार अदा करती हैं और भारत इसके लिए तैयारी कर रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता की पेशरफ्त का जायजा लिया। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों की दो रोज़ा मीटिंग की मेज़बानी करेगा। इम्तहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी 2026 के UGC नेट इम्तहानात का आगाज आज से कराएगी और अमरीकी सदर जेडी वांस ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत में पेशरफ जारी है। वफूद ने स्विट्जरलैंड में मीटिंग की है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रातः 8:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारे जयपुर केंद्र से समाचार तरंग।
2: समाचार एकांश की ओर से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार तरंग। श्रोताओं, आज के इस अंक में मैं माधुरी वशिष्ठ
3: और मैं रितिका गुप्ता
2: आपका स्वागत करते हैं। प्रस्तुत है सप्ताह भर की सुर्खियां।
3: दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योग सभी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करता है।
2: राज्य स्तरीय समारोह सिरोही के आबूराज में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया।
3: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का प्रदेश दौरा, विभिन्न रेल सेवाओं और सुविधाओं का लोकार्पण किया।
2: केंद्र सरकार के 12 वर्ष के कार्यकाल के पूरे होने के उपलक्ष्य में विविध गतिविधियां।
3: लोगों की समस्याओं के एक ही स्थान पर समाधान के लिए प्रदेश भर में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन।
2: बच्चों में दस्त रोग से होने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिए शुरू किया गया स्टॉप डायरिया कैंपेन।
3: विश्व रक्तदाता दिवस पर प्रदेश भर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाए गए।
2: वीरता और स्वाभिमान के अमर प्रतीक महाराणा प्रताप की जयंती धूमधाम से मनाई गई।
3: दुनिया भर में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया गया। विश्व भर में बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग थीम पर कार्यक्रम हुए। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व करते हुए कहा कि योग सभी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करता है।
4: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
3: प्रदेश में सभी जिलों, ब्लॉक और ग्राम पंचायतों, शैक्षणिक संस्थानों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर योग कार्यक्रम हुए। राज्य स्तरीय समारोह सिरोही के आबूराज में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने समारोह में सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि योग अब एक विश्वव्यापी जन आंदोलन बन गया है। उन्होंने सभी से स्वस्थ जीवन शैली के लिए नियमित योग अपनाने का आह्वान किया।
5: शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को जोड़ता है, वैसे ही योग आज विश्व को भी जोड़ रहा है। योग के शारीरिक और मानसिक लाभ भी अनगिनत है। ये शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाता है, तनाव, चिंता और क्रोध को कम करता है तथा मन को शांति प्रदान करता है, एकाग्रता बढ़ाता है, निर्णय क्षमता को मजबूत करता है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। आधुनिक विज्ञान भी आज योग की महत्ता को स्वीकार कर रहा है।
3: इधर बीकानेर के करणी सिंह स्टेडियम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने योग शिविर में योगाभ्यास किया। योग प्रोटोकॉल सत्र में भाग लेने से पहले मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जीवन में योग को अपनाने से न केवल बीमारियों से बचाव संभव है बल्कि ये एक संपूर्ण जीवन पद्धति भी है।
6: योग को अपनी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बनाए हम सब। योग से ही जीवन के सारे रोग दूर हो सकते हैं और साथ ही साथ जीवन जीने की एक पद्धति बन सकती है योग। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत भारत की संस्कृति

0: कृति को विश्व के पटल पर पहुंचाया, वैसा ही योग को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व पटल पर पहुंचाया है।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रदेश को कई रेल सेवाओं और सुविधाओं की सौगात दी। उन्होंने बीकानेर से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे गुजरात और राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान के पूरे सीमावर्ती क्षेत्र को रेल नेटवर्क से जोड़ने की परियोजना पर काम किया जा रहा है।
2: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है, जिसमें हमारे अगर हम देखें सरूपसर से जैतसर से अनूपगढ़ से रोजरी बीकानेर एक लाइन ये हो गई, और अनूपगढ़ से खाजूवाला से जैसलमेर और बाड़मेर होते हुए भिलड़ी। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है और हमारे प्रदेश के लिए भी बहुत अत्यंत आवश्यक है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं।
1: केंद्रीय मंत्री ने जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। ये रेलगाड़ी राजस्थान और बिहार के बीच संपर्क को नई गति देगी। श्री वैष्णव ने खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने 41 छोटे और मध्यम स्टेशनों पर नए प्लेटफॉर्म विस्तार तथा 16 स्टेशनों पर एकीकृत यात्री सूचना प्रणाली का भी लोकार्पण किया। इसके अलावा राज्य के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर विकसित की गई यात्री सुविधाओं का भी लोकार्पण किया गया।
3: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य भर में जागरूकता प्रदर्शनियां और प्रचार गतिविधियां आयोजित की गई। 12 साल विश्वास की, विकास की, जनकल्याण के विषय पर आयोजित प्रदर्शनी में सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अलवर जिला मुख्यालय पर लगाई गई प्रदर्शनी का प्रभारी मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने अवलोकन किया। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और इसके लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा।
1: विकसित भारत संकल्प सम्मेलन के तहत बीकानेर में भाजपा की ओर से प्रबुद्ध जन सम्मेलन रखा गया। सम्मेलन में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 सालों में भारत ने विकास, सुशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक न्याय और जनकल्याण के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ काम किया है।
4: नल से जल की बात करो, हर घर बिजली की बात करो, बिजली पहुंचने की बात हो और चाहे देश की रक्षा सुरक्षा की बात हो, इसी कालखंड में देश ने सर्जिकल स्ट्राइक देखा, एयर स्ट्राइक देखा, ऑपरेशन सिंदूर भी देखा, और इसी कालखंड में धारा 370 समाप्त हुए भी देश ने देखा और जम्मू कश्मीर भी मुख्य धारा में जुड़ा।
3: प्रदेश में इन दिनों विभिन्न जिलों में आयोजित हो रहे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से स्थानीय लोग लाभान्वित हो रहे हैं। शिविरों में लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है, साथ ही आवासीय पट्टे भी सौंपे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सहित अन्य कैबिनेट मंत्री और आला अधिकारी इन शिविरों का जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने उदयपुर में शहरी सेवा शिविर में अवलोकन किया। उन्होंने उदयपुर विकास प्राधिकरण परिसर में आयोजित शिविर में लाभार्थियों को पट्टे, प्रमाण पत्र और दिव्यांगों को सहायता राशि के चेक तथा सहायक उपकरण वितरित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिविर में मौजूद लोगों से बातचीत कर फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री ने आमजन से अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों को शिविरों तक पहुंचाने में सहयोग करने का आह्वान किया।
5: मित्रों, इन शिविरों के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारे शहरी क्षेत्रों जो भी हमारे वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको उनका लाभ मिलना चाहिए, चाहे वो नामांतरण का हो, शुद्धिकरण का हो, बंटवारे का हो, पट्टों का हो, उसके घर में किसी तरह से कोई परेशानी जैसे नाली, सड़क, खरंजा, सिवरेज खराब, बिजली की व्यवस्था, ये सारे विषय उसमें आते हैं। हम चाहते हैं कि इन शिविरों का आम जन को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले।
3: सवाई माधोपुर में लगाए गए शिविर में वहां की निवासी सुनीता अग्रवाल को आवासीय पट्टा सौंपा गया। इस पर खुशी व्यक्त करते हुए उन्होंने सरकार का आभार जताया।
6: मैं सवाईमाधोपुर जिले की रहने वाली हूँ और हमने पट्टे के लिए 1.5-2 साल पहले आवेदन करा था, तो आज हमें प्राप्त हुआ, हमें बहुत खुशी हुई और इसीलिए मैंने

0: आभार करना चाहूँगी उनका, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: इंडिया स्टोन मार्ट 2028 के आयोजन के लिए रीको और लघु उद्योग भारती के बीच MOU हुआ। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ की मौजूदगी में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक कार्यक्रम में ये MOU किया गया। इस मौके पर श्री राठौड़

0: दिल से आभार करना चाहूँगी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: इंडिया स्टोन मार्ट 2028 के आयोजन के लिए रीको और लघु उद्योग भारती के बीच एमओयू हुआ। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ की मौजूदगी में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक कार्यक्रम में ये एमओयू किया गया। इस मौके पर श्री राठौड़ ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य में पत्थर और शिल्प की कोई कमी नहीं है, इसे उत्कृष्ट पहचान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि स्टोन मार्ट पत्थर उद्योग के लिए वैश्विक मंच के रूप में उभर चुका है।
2: राजस्थान का जो पत्थर है वो निश्चित रूप से बहुत मशहूर, चाहे यहाँ का मार्बल हो, हमारा कोटा स्टोन हो, लाइम स्टोन हो, सैंड स्टोन हो, नॉर्वुड स्टोन हो, जैसलमेर स्टोन हो, हर तरह से, चाहे आधुनिक बिल्डिंग हो, चाहे पुरानी जो किले है, मंदिर है, हर तरफ हमें राजस्थान का पत्थर दिखाई। और ये पत्थर तो ऐसा है जिसके साथ तस्वीर खिंचाने के लिए टूरिस्ट विदेशों से आते हैं, तो पत्थर में कोई कमी नहीं। अब ये हमारी पीढ़ी के ऊपर निर्भर करता है, हम एक दूसरे के साथ बैठकर किस तरह का मंथन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, किस तरह से जोड़कर अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर अब डिपेंड करता है कि हम राजस्थान के पत्थर को और कितना ऊंचा लेंगे।
1: राज्य में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्टॉप डायरिया कैंपेन चलाया जा रहा है। 5 वर्ष तक के बच्चों को दस्त रोग से सुरक्षित रखने और बाल मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से ये कैंपेन चलाया जा रहा है। 16 जून से शुरू हुआ ये अभियान 31 जुलाई तक चलेगा। हनुमानगढ़ के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि इसके लिए अस्पतालों में विशेष व्यवस्था की गई है, वहाँ ORS कॉर्नर बनाए गए हैं,
3: जिसमें इस बार की हमारी टीम है डायरिया की रोकथाम, सफाई और ORS से रखें अपना ध्यान। इस कैंपेन के दौरान हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी आशा ANM घर घर जाकर जागरूकता भी करेंगे, हाथ धोने की तकनीक, सफाई किस तरीके से रखें, और साथ में हमारे ORS और जिंक वितरित भी किया जाएगा। हमारे सभी संस्थानों पर ORS कॉर्नर बनाए जाएंगे। इसका मूल उद्देश्य है कि जो 5 साल तक के बच्चे हैं, जो डायरिया से जिनको कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, उनकी रोकथाम और डायरिया के लिए जागरूकता।
1: प्रदेश में शिशु मृत्यु दर IMR में लगातार सुधार हो रहा है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की ताजा आंकड़ों के अनुसार शिशु मृत्यु दर में 1 अंक की कमी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग में शिशु स्वास्थ्य परियोजना निदेशक डॉक्टर प्रदीप चौधरी ने आकाशवाणी को बताया कि नियमित स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से शिशुओं को बेहतर देखभाल मिल पा रही है।
4: हमारे राज्य में जो नवजातों की, जो बीमार नवजात है स्पेशली, उनकी जो उपचार के लिए जो सुविधाओं का विस्तार हुआ है, अभी राज्य में 71 स्पेशल न्यूबोर्न केयर यूनिट्स, जो इनको सामान्य भाषा में आप नर्सरी भी बोलते हैं, और लगभग 1,20,000 के लगभग नवजात वित्तीय वर्ष 25-26 में इन यूनिट्स में भर्ती कर उपचारित किए गए थे। उसके अलावा आशाओं द्वारा घर घर जाकर जो नवजात होते हैं उनकी होम बेस्ड न्यूबोर्न केयर विजिट किया जाना, उसके बाद 3, 6, 9, 12, 15 महीने पे भी बच्चों की विजिट आशाओं द्वारा की जाती है, उनका टीकाकरण इंश्योर किया जाता है। टीकाकरण का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है शिशु मृत्यु दर को कम करने में।
1: विश्व रक्तदाता दिवस पर विभिन्न जिलों में सामाजिक संगठनों की ओर से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाए गए। मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें जीवन बचाएं थीम पर लगाए गए इन शिविरों में लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। करौली से हमारे संवाददाता बांकी बिहारी शर्मा ने बताया कि वहां शिविरों में निशुल्क रुधिर जांच की गई और बड़ी संख्या में लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया।
5: हिंडौन उपखंड रक्तदान की मजबूत परंपरा के लिए पहचान बना चुका है, जहां प्रतिवर्ष 1000 यूनिट से अधिक रक्त का संग्रह किया जाता है। यहां से एकत्रित रक्त का उपयोग जयपुर, करौली सहित विभिन्न ब्लड बैंकों के माध्यम से जरूरतमंद मरीजों के उपचार में किया जाता है। सामाजिक संगठनों, युवाओं और स्वयंसेवी रक्तदाताओं की सक्रिय भागीदारी से जिले में रक्तदान के प्रति जागरूकता लगातार बढ़ी है। विश्व रक्तदाता दिवस पर जिला मुख्यालय स्थित जिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर आयोजित किया, जहां अधिकाधिक लोगों से रक्तदान कर जीवन बचाने के इस महादान में सहभागी बनने की अपील की गई है।
1: वीरता और स्वाभिमान के अमर प्रतीक महाराणा प्रताप की जयंती और हल्दीघाटी विजय के 450 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम रखे गए। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने भारतीय क्षत्रिय महासंघ की ओर से जयपुर में आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत की। उदयपुर में शोभा यात्रा निकाली गई और राष्ट्रीय चेतना संकल्प सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने महाराणा प्रताप के संघर्ष को देश की स्वतंत्र चेतना, स्वाभिमान और सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा का प्रतीक बताया।
6: हल्दीघाटी युद्ध में विजय हुई महाराणा प्रताप की, वहां लड़े थे थोड़े से मेवाड़ के वीर, मेवाड़ की जनता के साथ राणा प्रताप नेतृत्व कर रहे थे।

0: लेकिन उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरा भारत उस लड़ाई पर निगाह टिकाए बैठा था और उस लड़ाई ने यह तय कर दिया कि ये जो विदेशी आक्रमण है ये भारत को झुका नहीं सकता। हम भारतवासी अपने धर्म संस्कृति सहित यहाँ पहले से है, बाद में भी रहेंगे।
1: श्रोताओं, आज के इस अंक में बस इतना ही। अब हमें इजाजत दीजिए। जाने से पहले आपको बता दें, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रहे रामनाथ मीना।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे जयपुर केंद्र से समाचार तरंग। लीजिए अब सुनिए हमारे जयपुर केंद्र से ही समाचार, हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
3: अजमेर केंद्र है, अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। जोधपुर के पावटा जिला अस्पताल में सिजेरियन के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी, विशेषज्ञों की टीम अलर्ट मोड पर। राज्य स्तरीय सीएसआर कॉन्क्लेव का आयोजन आज से सवाई माधोपुर में किया जा रहा है। और राज्य में नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज से 7 जिलों में 3 दिनों तक आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ, और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी से जुड़े सुरक्षित उपायों के मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल उदयपुर की महत्वाकांक्षी देवास 3 और 4 पेयजल परियोजनाओं का हवाई निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन बांधों के कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने इस महत्वपूर्ण परियोजना के सभी काम उच्च गुणवत्ता और पूर्ण सुरक्षा मानकों के साथ निर्धारित समय सीमा में पूरे किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पूरा होने से उदयपुर शहर और इसके आसपास के क्षेत्रों की वर्तमान तथा भविष्य की पेयजल आवश्यकताएं पूरी हो सकेंगी। इस मौके पर वरिष्ठ प्रशासनिक और तकनीकी अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बांध, टनल निर्माण और पुनर्वास से जुड़े कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। राज्य सरकार प्रदेश में डेयरी सेक्टर को मजबूत करने और युवाओं को रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। पशुपालन और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने कल पाली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि राजस्थान का डेयरी क्षेत्र बेहद मजबूत है और इस पर गुजरात डेयरी या अन्य किसी बाहरी का हस्तक्षेप का कोई असर नहीं पड़ेगा।
5: हमारा डेयरी सेक्टर इतना मजबूत है कि यहाँ पर उन नियमों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारा गांव-गांव तक, हर किसान तक हमारा डेयरी सेक्टर फैला हुआ है। हम किसानों को फैट के आधार पर, दूध पालकों को फैट के आधार पर तो पैसा देते हैं, लेकिन 5 रुपए सरकार की तरफ से पर लीटर उनको अनुदान भी देते हैं। इसलिए जो लोग, जो किसान, जो पशुपालक हमारी डेयरी से जुड़े हुए, निश्चित रूप से वो हमारी डेयरी से जुड़े रहेंगे। उनके नियमों से हमारे यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
4: रोजगार के मोर्चे पर राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए श्री कुमावत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में 4.25 लाख सरकारी नौकरियां देने के बजट घोषणा पर तेजी से अमल हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने अलवर जिले को विकास की 2 बड़ी सौगातें दी है। उन्होंने 42.80 करोड़ रुपए की लागत से कल नटनी का 12 से जैसमन बांध नहर को पक्की करने के काम का

0: शिलान्यास किया। साथ ही 3,34,00,000 रुपए से निर्मित भाखेड़ा एनिकेट का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन दोनों परियोजनाओं से क्षेत्र का भूजल स्तर रिचार्ज होगा, जिससे वन्य जीवों, किसानों और आमजन की पानी की जरूरतें पूरी होंगी। जोधपुर के पावटा जिला अस्पताल में डिलीवरी के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है। इनमें से 2 महिलाओं की हालत गंभीर होने पर उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। इन सभी महिलाओं की शनिवार को सिजेरियन डिलीवरी कराई गई थी। हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया कि ऑपरेशन के बाद प्रसूताओं को स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं होने लगी, जिसके बाद उनका उपचार शुरू किया गया।
1: पावटा अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर कुलबीर चोपड़ा ने बताया कि शनिवार को अस्पताल में 8 सिजेरियन ऑपरेशन हुए। ऑपरेशन के बाद भी सभी का ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव होने लगा। इनमें से 2 महिलाओं की स्थिति अत्यंत गंभीर होने पर उन्हें तत्काल मथुरादास माथुर अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उन्हें आईसीयू में भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। दोनों मरीजों की किडनी भी प्रभावित हुई है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम उनकी निगरानी कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से ऑपरेशन थिएटर बंद कर दिया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो सकेगी। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। सवाईमाधोपुर में आज से राज्य स्तरीय कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान वन विभाग की ओर से हो रहे 2 दिन के इस कार्यक्रम का उद्देश्य CSR के माध्यम से वन और वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन तथा स्थानीय समुदायों के सतत विकास को प्रोत्साहित करना है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री होंगे और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता।
2: राजस्थान वन विभाग द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के माध्यम से वन और वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन तथा स्थानीय समुदायों के सतत विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आज से राज्य स्तरीय CSR कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। कॉन्क्लेव में विभिन्न कॉरपोरेट संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों, उद्योग समूहों, गैर सरकारी संगठनों, वन अधिकारियों, संरक्षण विशेषज्ञों तथा नीति निर्माताओं की सहभागिता रहेगी। कार्यक्रम का उद्देश्य वन विभाग और कॉरपोरेट क्षेत्र के मध्य प्रभावी साझेदारी स्थापित कर वन और वन्य जीवों का संरक्षण प्रभावी बनाना है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
0: जयपुर के नाहरगढ़ जैविक उद्यान में राजस्थान की पहली सफेद बाघ सफारी शुरू हो गई है। यहां सफेद बाघ भीम और सुनहरी बाघिन सस्कंधी को टाइगर सफारी क्षेत्र में छोड़ दिया गया है। रविवार को पर्यटकों ने सफारी के दौरान इन दोनों बाघों को नजदीक से देखा। इससे पहले ये बाघ केवल जैविक उद्यान क्षेत्र में रखे गए थे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA आज से UGC नेट जून 2026 परीक्षा शुरू करेगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में इस महीने की 30 तारीख तक प्रतिदिन 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो JRF सहायक प्रोफेसर पदों तथा PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। NTA ने अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड करने और परीक्षा से संबंधित सभी विवरणों का सावधानीपूर्वक सत्यापन करने की सलाह दी है। नीट UG पुनर्परीक्षा कल कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेशों के 14 केंद्रों पर कुल 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। इधर प्रदेश के विभिन्न जिलों में नीट परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई। इसी कड़ी में राजधानी जयपुर में भी रविवार को नीट UG की पुनः परीक्षा कड़े सुरक्षा प्रबंधों और प्रशासनिक निगरानी के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। राज्य में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मौसम ने करवट ली है। प्रदेश में सक्रिय हुए एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जिलों में लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में कल सर्वाधिक अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस तापमान फलोदी में दर्ज किया गया। आज 7 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। जोधपुर और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में 25 जून तक आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने का

0: अनुमान है। इस बीच विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि खुले में रखी तैयार फसलों और अनाज को सुरक्षित स्थानों पर ढक कर रखें ताकि उन्हें भीगने से बचाया जा सके। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। जोधपुर के पावटा जिला अस्पताल में सिजेरियन के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी, विशेषज्ञों की टीम अलर्ट मोड पर। राज्य स्तरीय सीएसआर कॉन्क्लेव का आयोजन आज से सवाईमाधोपुर में किया जा रहा है। और राज्य में नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज से 7 जिलों में 3 दिनों तक आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सुबह के 9:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए राजस्थानी लोक संगीत का दैनिक कार्यक्रम मरमंगल। आज कलाकार हैं कालू राम प्रजापत।

श्रोताओं, कार्यक्रम मरुमंगल आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। आज के हमारे कलाकार हैं कालूराम प्रजापत।

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत का दैनिक कार्यक्रम मरुमंगल। आज कलाकार थे कालूराम प्रजापत। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। इस वक्त हमारे स्टूडियो घड़ी में सुबह के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म नसीब के इस गीत के साथ। इस गीत को आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी को। फिल्म का नाम है बगावत, गीत आनंद बख्शी का है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: गगन को डोर समझ रहा है? नादान, मौत आई है तेरी।
1: मौत? इतनी हसीन, अए ये नागन डसले तो क्या कहना।

श्रोताओं लीजिए सुनिए, आशा भोसले और मोहम्मद रफी को। फिल्म का नाम है धर्म कांटा। गीत मजरू सुल्तानपुरी का है और संगीत नौशाद का।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में सुनिए लता मंगेशकर और साथियों को। फिल्म का नाम है हीना, गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में सुनिए लता मंगेशकर और साथियों को। फिल्म का नाम है हीना, गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। इस वक्त हमारे स्टूडियो घड़ी में सुबह के 10 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम आज के फनकार। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हमारे आज के फनकार हैं बॉलीवुड के महान अभिनेता अमरीश पुरी। आज इनकी जयंती है और आज ही के दिन 22 जून 1932 को इनका जन्म नवांशहर पंजाब में हुआ था। श्रोताओं, अमरीश पुरी भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित और बहुमुखी अभिनेताओं में से एक थे। उन्होंने अपने 4 दशक लंबे करियर में 400 से अधिक फिल्मों में काम किया। अपनी भारी आवाज और शानदार अभिनय के लिए मशहूर, उन्हें मोगैम्बो जैसे अमीर किरदारों के लिए भी याद किया जाता है। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे उनके द्वारा अभिनय की गई फिल्मों के कुछ शानदार गीत। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म परदेश के इस गीत के साथ।

श्रोताओं लीजिए अब सुनिए कुमार शानू, अलका याग्निक और साथियों को। फिल्म का नाम है करण अर्जुन।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
1: दीप तुम्हें इसे मोबाइल चार्ज करना,
2: दिमाग चार्ज कर अपना।
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
2: देखा
1: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
3: अब क्या करोगे?
1: फ्री वाईफाई है ना?
2: बुद्धू सुधर जा।
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
1: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
3: RBI कहता है
4: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
5: श्रोताओं, इनके शुरुआती जीवन और संघर्ष पर बात करें तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि अमरीश पुरी जी का जन्म 22 जून 1932 को नवाशहर पंजाब में हुआ था। उनके बड़े भाई चमन पुरी और मदन पुरी पहले से ही बॉलीवुड में अभिनेता थे। फिल्मों में किस्मत आजमाने मुंबई आए, अमरीश पुरी अपने पहले ही स्क्रीन टेस्ट में असफल रहे। इसके बाद उन्होंने कर्मचारी राज्य बीमा निगम में 21 साल तक क्लर्क के रूप में नौकरी की। नौकरी के साथ साथ वे पृथ्वी थिएटर में नाटकों में भी काम किया करते रहे और सत्यदेव दुबे को अपना गुरु माना। 1979 में उन्हें प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। श्रोताओं, इस महान शख्सियत पर हम और भी बात करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं इन्हीं पर फिल्माया गया कोयला फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं लीजिए अब सुनिए मोहम्मद अजीज और सुदेश भोसले को। फिल्म का नाम है सौदागर, गीत आनंद बख्शी का है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

قتل کیا تھا اور قاتل کون تھا، یہ ہم سے زیادہ تم جانتے ہو۔

जो तो अमरीश पुरी जी के फिल्मी सफ़र पर बात करें तो लगभग 40 वर्ष की आयु में उन्होंने 1971 में फिल्म रेशमा और शेरा से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की। वे हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े खलनायक बने। 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया में उन्होंने मोगैम्बो का किरदार भारतीय सिनेमा का सबसे आइकॉनिक विलेन बन गया। 1984 में स्टीफन स्पीलबर्ग की हॉलीवुड फिल्म इंडियाना जॉन्स एंड द टेंपल ऑफ डूम में मोलाराम की भूमिका निभाकर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी धूम मचाई थी। तो आपको सुनवाते हैं अमरीश पुरी का गाया हुआ फिल्म तहलका का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम आज के फनकार में हमारे आज के फनकार हैं अमरीश पुरी। लीजिए अब सुनिए उन्हीं की फिल्म मिस्टर इंडिया का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में।

श्रोताओं, कार्यक्रम आज के फनकार आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। आज के फनकार हैं अमरीश पुरी। लीजिए सुनिए फिल्म राम लखन से ये गीत, आवाजें हैं मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति की।

श्रोताओं, अमरीश पुरी ने खलनायक के अलावा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और गदर एक प्रेम कथा जैसी फिल्मों में अत्यंत प्रभावशाली और सकारात्मक और भावुक भूमिकाएं भी निभाई थी। लीजिए हम आपको सुनवाते हैं इन्हीं की फिल्म गदर का ये गीत।

श्रोताओं, मस्तिष्क में रक्त स्त्राव के कारण 12 जनवरी 2005 को 72 वर्ष की आयु में इस महान अभिनेता अमरीश पुरी जी का निधन हो गया था। इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें याद करते हुए कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं उन्हीं की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम आज के फनकार में हमारे आज के कलाकार थे अमरीश पुरी। अब कार्यक्रम संपन्न करने की अपने दोस्त मनोज खत्री को दे इजाजत। नमस्कार।

श्रोताओं, प्रोग्राम आज के फनकार आप सुन रहे थे मनोज खत्री के साथ। आज के फनकार थे अदाकार अमरीश पुरी। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम गीत बहार।

गोरा और काला। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की। इस गीत को सुनना चाहते थे गांव जोगीवाला श्रीगंगानगर से प्रेम सारण, मोनिका, मनीषा सारण, चक 15 PS से सरोजीत सिंह जोसन, सरोजीत कौर जोसन, गुरमन सिंह, आदर्शपाल सिंह जोसन, मेलबर्न से रोबन सिंह जोसन, वैंकूवर से रोबिन सिंह जोसन ने वैंकूवर से हमें ये मैसेज भेजा है। मजनू कटिला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर, उमंग, आकांक्षा, माही मलिक, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिकलानी, बबीता मिकलानी, सुभाष, योगी, बब्बू और डब्बू, ग्राम पजोनिया उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक चंसोलिया, गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, जगदीश जोहरी, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर, स्वीटी छाबड़ा, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना।

0: मामी, किरण खुराना, लव्या आरव, एस के पप्पी। पलेरा टीकमगढ़ से ब्रिजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष विश्वकर्मा। और पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, तनुजा, ईशांत देवांगन।
1: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी, पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
5: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: प्रोग्राम की अगली पेशकश घर फिल्म से। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। फरमाइश आप सबकी। वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला, विशाल और निशा। अनारकली बाजार जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा पाठक, विनोद पुरी, जयपाल यादव। गांव अरायन से डॉक्टर बनवारी लाल जयपाल, विमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम, पूनम चालिया। आदर्शनगर बठिंडा से अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति ग्रोवर, पवनीत, विक्रमजीत ग्रोवर। शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन, रोशनी मनवर, बेबी प्रियांशी। नलेश्वर नगर महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला, विशाल नहावकर। बांडीवाला फाजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया। वीरमगांव गुजरात से अजीत भवसागर, प्रमीला, भावेश, जैमिन भवसागर। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी, पर्ल, विलिस डिकैस्ट्रो। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम, मुन्ना, दानिश, आसिफ शेख। और बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। आप सभी सुनिए अपनी पसंद पर घर फिल्म का ये गीत।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: प्रोग्राम के अगले गीत के लिए हमें फरमाइश मिली आप सबकी। करणपुर से पवन कटारिया, शालू कटारिया, समीर कटारिया, कंवर कॉलोनी वड़वा मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, ये फरमाइश हमें मिली है। खरगोन मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना अनुजा, योशी रमेश चंद्र, शेख मूसा भाई, राजकुमार बोड़ाना, आदलपुर गोगावा से संजय बामनिया, माया काहना और कृष्णा, लखवाली हेड से मास्टर भंवरलाल, कृष्णा विशाल, राजबाला, ममता लक्षिता, नव्या मोहम्मद रफीक, महावीर लोहरा, मुकना राम, साधु शहर से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद ओमकार साई, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा रजत, मयंक भाटिया, मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक

अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज, अमरगढ़ साधुशहर से कुलवंत मान, लखविंदर कौर, खुशप्रीत कौर मान, गुरनूर हरविंदर, कुलविंदर कौर मान, लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, रघुनाथपुरा से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, गांव ममना हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। श्रोताओं, कुछ पत्र भी हमें मिले हैं। आप हैं गांव दौलतावाली से शोलाल जी बेनीवाल, शांति बेनीवाल, हेमंत और मंजू, सुंदर सिंह वाला से लाल सिंह औलख, लिखमी सर से हंसराज मंडा और श्री गंगानगर से रामेश्वर लाल जी सारस्वत। आप सभी सुनना चाहते हैं स्वयंवर फिल्म का ये गीत, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की हैं।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: श्रोताओं, इस समय आप प्रोग्राम सुन रहे हैं गीत बहार, और इसे प्रसारित किया जा रहा है आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। प्रोग्राम की अगली पेशकश फिल्म धनवान से आवाजें लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की। सुनना चाहते हैं नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, डिंपल, मीनाक्षी, ट्विंकल, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। अनूप शहर से गजानन सारस्वत, डॉक्टर ताराचंद सारस्वत, सोनू, अशोक कुमार, उपेश, मुरारी लाल, मदन लाल, हुसाराम और इनके परिवार के सदस्य। केसरी सिंहपुर से राजकुमार ठठई, कमल ठठई, मगनलाल सोमानी, बिंदा टेलर, मुंशीराम महेंद्रा, हीरालाल गजरा, अशोक मित्तल, ताराचंद दायमा। हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, श्रवण रेणवा, हंसराज भाटिया, मनीराम, रंजीत राम किरोड़ीवाल। नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौशीफ हाशमी, तैमूर हाशमी, मोहम्मद कलीम अंसारी। डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामूरिया, अजय देव, तुषार, डॉली बेबी पूजा तामूरिया, राधिका प्रभा देवी तामूरिया और मास्टर अल कबीर। कॉल सिटी बरका काना से अफजल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू, निप्पी सहानी, मोहम्मद अफजल मलिक। फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशाल खेड़ा, विशु खेड़ा, लाडी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवानसी, वाणी खेड़ा, आरबी खेड़ा, जीवन बूक। गांव घमंडिया से जगदीश ढूकिया, प्रमीला ढूकिया, ज्योति, शिवम, सरिता, सचिन, अमना, तमन्ना, साइना, विष्णु ढूकिया और ईवा धारणिया। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि राजेश, शीतल राजेश। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी और रानी कामठ छिंदवाड़ा से उदय भान ठाकरे, दीपक ठाकरे, नवीन ठाकरे, ग्रंथ और गोरी ठाकरे। आप सभी सुनिए अपनी पसंद पर धनवान फिल्म का ये गीत।

शेगांव बुलढाणा महाराष्ट्र से संतोष एस काले, तेजस लोकेश एस काले, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और जसवी यादव, सांगली जतशहर से अल्ताफ हुजरे, सफुल्ला सवाहत, कीरत हुजरे, रिहान शेख, चक 5 एमडी पत्रोड़ा से मंगल जनागल, रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदु और डॉक्टर सुनील जनागल, मानपुर मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान, अताउर रहमान, शेख हबीबुर रहमान, गांव नाईवाला से वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा, गांव कलमंडी झालावाड़ राजस्थान से अनूप सिंह नाथावत, भारत सिंह, रविंद्र सिंह पंवार, लवली बना और धीरज, कर्णवीर हाउस भुच्चो कैंचियां बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर दीपेंद्र, कुलदीप, सीमू, एकम, दमन और अभिजोत, मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायड़े, वसंतराव भोजने, पीएस नहावकर, तुषार करंगले, ज्योतिनगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी, हसन सिक्का, 7 डीबीएन भादुवाली ढाणी से टेकचंद चारण, संतोष देवी, सत्यप्रिय, जय सिंह, बिटिया योगेश्री, रंजीत सिंह सुथार, गुरुदेव सिंह भगानिया और हरनेक सिंह भगानिया, 63 एलएन

इसे कृष्णलाल राहड़ बरखा रानी ये फिल्म के लिए कुछ इन्होंने फरमाइश भेजी है, और ये फरमाइश हमें मिली है हितेंद्र दास की असम से और हनुमानगढ़ टाउन से रज़ाक मोहम्मद ख़ान, शमीम बेगम, इमरान ख़ान, इरफान ख़ान और जिशान ख़ान। आप सभी को हम सुनवा रहे हैं दाग फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। लीजिए सुनिए।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति गैम्बलर फिल्म से आप सबके लिए, राजकोट से जैमिन कुमार जैन, हेतल कृष्णा, राकेश जैन, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा, साइना और निवान शर्मा, अलीकंठ अव्वाली से बसंत सिंह चन, यशिका

युवराज गांधी, कुलदीप गांधी। फाजिल्का रोड मलोट पंजाब से कुलवंत गिल, जसवंत गिल, रमन, बलजीत, दिशा मोहला, जगतार, जग्गा। गांधीनगर गुजरात से जी के परमार, ज्योत्सना, हर्ष और दीपल। अलीका डब्वाली से रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत लखोत्रा, सरबजीत लखोत्रा, रानी, सोनू और रजनी। खोखरावाली से विनोद बारासा, विशाल, विकास, रोशनी, शगुन बारासा। बठिंडा रोड मंडी डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित और तानिया नारंग। मिनिस्ट्री रोड न्यू दिल्ली मोतीनगर से गौरव, अनिल, मानसी, कविता, मदान। पीपरलोड छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। नाभा पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर और मनु। और बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, सक्रांति चौहान और उत्कर्ष चौहान। आप सभी को हम सुनवा रहे हैं गैम्बलर फिल्म का ये गीत, आवाज़ें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की हैं।

शेरकोट ज़िला बिजनौर से मोहम्मद वक़ार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन रोज़ी, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर, पद्मा टाकीज नेपा नगर से, सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र शाह, गोराया जालंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत, भरत मक्कड़, कमल साहनी, अमरपुरा जालूखाट से जगदीश चंद्र प्रजापति, विमला, मोनू, राजेंद्र प्रजापति, उदयपुर राजस्थान से रमेश नाचानी, भारती, विनीत, मिथिल, बाबू भाई चांदीवाला, जीटीबी मार्केट अहमदगढ़ से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना आफिया, सना, समा, हीना, शकीला, जैस्मीन, रजिया सुल्ताना, अख्तर अंसारी, सूरज मोहम्मद, जावेद अंसारी, रानीगंज बंगाल से रवि और इंदर, गांव हिंगड़ी आलोट रतलाम से जगदीश धाकड़, नायमा, रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह और शिवांजी, शिवांगी धाकड़, चक 10 एसटीबी लाडगढ़ जाटान से रामेश्वर निरानिया, सुमन, दिव्या, नूतन, पंकज, मनीषा, हेमू और ब्रिजलाल निरानिया, रानी बाजार बीकानेर से रानी झांब, बिट्टू झांब, मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायड़े, वसंतराव भोजने, पीएस नहावकर, तुषार करंगले और गांव नलोई शिवानी मंडी हिसार से सज्जन जांगड़ा, राजबाला, कार्तिक और वेदांश जांगड़ा। आप सभी को हम सुनवा रहे हैं महबूब की मेहंदी फिल्म का ये गीत, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है।

भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि पुष्पेंद्र नोखेलाल वर्मा, गांव फ्रांसी से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, सौरभ डूडी, चोकुंठी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और पूरा अब्बासी परिवार, रायपुर से नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण, कपिल, कुणाल, गांव कुम्हारखेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम और अदीब, मंडी केसरी सिंहपुर से बिल्लू सूद, सुनीता, आशीष, चांदनी, विश्वजीत सूद, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना, आशीष, चैतन्य, मेघा मस्कीन, राहुल खुराना, रचिता मस्कीन और केशु खुराना, बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी, जयश्री, मेहत्रे, अंजलि कसवा, बाला साहेब कसवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टवूल और पीबी कुलथे, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार और हैप्पी राय, और आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां। आप सभी को हम सुनवा रहे हैं तलाश फिल्म का ये गीत, आवाज़ लता मंगेशकर की।

गांव शोभापुर मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़, बेनीपट्टी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश और नियति कुमारी, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल, ईशान और पूजा परिहार, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह का ये मैसेज हमें मिला है गांव दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से। जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक, स्वाति, जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक, उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश, कोहला हनुमानगढ़ से महावीर सुथार, रमेश सुथार, सुनील, भजनलाल, मोहनलाल, बुर्ज हनुमानगढ़, फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश, डॉक्टर मदन लाल वर्मा, नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, गांव कलाना से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, उद्धव, कृष्ण, मायल, हनुमान सहारण, कीड़ूराम जोया, मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबीस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी, नेवासा खुपटी महाराष्ट्र से बंडू लोहार, पोपलघट, चंद्रकला, देवीदास, पोपलघट, जलालाबाद वैस से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, टिशानी और निमित आहूजा, शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी, गोविंदपुरा से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी और इनके परिवार के लोग, सूरतगढ़ से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और बेबी जानविका, दत्रेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता, रुद्र वर्मा, राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई, हीरामण, प्रणय।

चौटाला हरियाणा से दारा पंडित संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा, राजू प्रजापत, आप सभी को हम सुनवाते हैं। प्रोग्राम के आखिर में आपकी कसम फिल्म का ये गीत आवाज़ें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की है। प्रोग्राम का ये आखिरी गीत आप सुनिए और सुमन को दीजिए इस प्रोग्राम से इजाज़त।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 12:05 पर कार्यक्रम होगा सैनिकों के लिए। 12:30 पर सुगम संगीत और 12:50 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम खेत खलिहान, जिसमें आज चर्चा का विषय होगा फर्टिगेशन अपनाएं, उपज बढ़ाएं। दिन में 1 बजे हिंदी प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले किए जाएंगे। 1:05 पर बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत। आज इसमें चर्चा के विषय रहेंगे ऊर्जा की बचत में महिलाओं का योगदान, बस्तर हस्तशिल्प कला, घरेलू उपकरणों की देखभाल और साथ ही कच्चे आम के व्यंजन विधि भी आपको बताई जाएगी। दिन में 2 बजे अंग्रेजी समाचार और 2:15 पर हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। 2:30 पर फिल्म संगीत प्रसारित किया जाएगा। दिन में 3 बजे उर्दू सर्विस हमारे दिल्ली केंद्र से ही रिले की जाएगी।

शाम 5 बजे युवा साथी सुन सकते हैं कार्यक्रम युववाणी। आज चर्चा के विषय होंगे राजस्थान की प्रमुख नदियाँ, पद्म पुरस्कार, मांड गायिका गौरी देवी, विज्ञान के चमत्कार और साथ ही आज के इतिहास पर भी चर्चा की जाएगी। शाम 6 बजे कार्यक्रम विवरण में 6:05 पर सिराइकी प्रसारित की जाएगी। 6:30 पर हिंदी प्रादेशिक समाचार, 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले किए जाएंगे। संध्या 7 बजे किसान भाइयों के लिए प्रसारित किया जाएगा उनका अपना कार्यक्रम चौपाल। आज चर्चा के विषय रहेंगे नशा जीवन का नाश, खेत में कंपोस्ट खाद की उपयोगिता, सिंचाई पानी की बचत और साथ ही बाजार भाव और मौसम की जानकारी भी दी जाएगी। 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन, 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे News@9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी। रात्रि 9:15 पर सुगम संगीत, 9:30 पर प्रोग्राम पब्लिक स्पीक हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा और रात्रि 10 बजे कार्यक्रम खेल जगत आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। रात्रि 10:30 पर आप फिल्म संगीत सुन सकते हैं। ये था कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

उदित नारायण और अलका याग्निक को भी आपने सुना, फिल्म थी फिजा। और लीजिए अब शान की आवाज़ में ये गीत सुनिए, फिल्म है सावरिया।

दबंग फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ें थीं श्रेया घोषाल और सोनू निगम की। और लीजिए अब सोनू निगम के साथ अलका याग्निक को सुनिए। इस गीत को हमने फिल्म रिफ्यूजी से लिया है।

श्रोताओं, अभी आपने कार्यक्रम सुना सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। 12:30 हुए हैं। पेश है सुगम संगीत।

श्रोताओ, अभी आपने राजेंद्र मेहता और नीना मेहता की आवाज़ों में ये गज़ल सुनी। शायर थे सुदर्शन फ़ाकिर। प्रोग्राम की अगली पेशकश जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ों में।

0: भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की गाई इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का ये प्रोग्राम अब यहीं ख़त्म होता है। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेत खलिहान। आज इसमें जानकारी का विषय है फर्टिगेशन अपनाएं, उपज बढ़ाएं।
1: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों बातागरा खेती पाती की और हुमस बहुत घनी हो रही है किसान भाइयों, इतनी हुमस में काम करनो बहुत ही दूरों लागे, ऊपरों लेगे नीचे तई पसीनो आवे, पर के करा खेती काम। तो देखो किसान भाइयों ये मेहनत कोई काम है तो मौसम चाहे किसो ही होवे और आपने जिम्मेदार हैं तो ये भी खेत में आप काम करा अपनों। और पर देखो कई बार आप देखा कि कई जिका

है में देखो नई नई तकनीक आ गई है, तो भी तकनीक शू काम करा ने किसान भाइयों, तो बिन मापा ने थोड़ी कम मेहनत करनी पड़े। जी हाँ देखो, अब आप खाद उर्वरक देवा खेत में तो आप छिड़काव करा तो भी मैं क्या बहुत मेहनत लगा अपन ने पूरा खेत में, आपा ने झोली में आपा बा खाद गाल लें और पूरा खेत में आपा ने फिरनो पड़े। पर आप फर्टिगेशन छू बिन तकनीक अपन आगे फर्टिगेशन और बी छू देवा तो भी मैं अपनी मेहनत कम लागे। तो देखो सिंचाई को पानी है और दूसरों के खाद, ए दो बहुत ही जरूरी चीज़ें हैं अपने खेती खातर। दोनों मुझे खाद भी ना हो, पानी ना हो, पानी भी ना तो देखो खेती जमा ही को नहीं हो सके। और बहुत सारे किसान भैया जिका पानी की कमी है तो खेत जिका खाली भी पड़े रहे। और दूसरी है कि उर्वरक जिकी आप खाद आप रासायनिक खादा जिकी आप देवा खेत के मां, तो ए भी आप मैंने पूरे पूरी सोच समझ गए और अच्छी समझ छूँ आपने देनी चाहिए है। तो बात करा फर्टिगेशन की, तो देखो फर्टिगेशन वह विधि है बिंग में कि आप जो कई उर्वरक है वे पानी के रूप में तरल रूप में आप खेत के मां पानी के सागे आप दे दें माने, और जिका दाना वाला आप कही आप देखा कि दाना वाला जिका उर्वरक है वे भी आपने खेत में आप देना पड़े, तो वे भी आप देश कहाँ पर माने दाना वाला क्या भी पहले आप पानी में आप घोल लें और पानी की जिकी मात्रा है वह अच्छी तरह जानकारी ले गए, उचित मात्रा वह घोल गए अच्छी तरह छान लिया भी ने और भी बाद में आप भी ने खेत में देश कहाँ। तो इसमें क्या है कि आपनों जो को उत्पादन है वो उत्पादन तो देखो एक अच्छी मात्रा टिकाऊ मात्रा में हुई है, बिंग सागे सागे के आपनों जो को आसे पासे गो पर्यावरण है वो भी एकदम अच्छो शुद्ध बनो रहे। और इंग सागे सागे आपने जिका भी खाद उर्वरक आप देवा तो बंगो जो को अच्छो प्रबंधन है, प्रबंधन छू मतलब है कि बंगी अच्छी मात्रा टेम ए सब चीज़ें जिकी आपने ध्यान में रख गए और अपन खेती पाती का काम करना चाहिए। इंगे सागे सागे किसान भाइयों फर्टिगेशन जी को है खेत के माँ फसल आंगी अच्छी बढ़वार और पैदावार खातर भी जी का भांत भांत का पोषक तत्वों की अपन आवश्यकता पड़े तो बी खातर भी फर्टिगेशन अच्छो रेवे। इंगे सागे सागे माटी के माँ पोषक तत्वों की कमी हो जाए तो बन पूरीकरण खातर भी अपन खाद उर्वरक की जरूरत पड़े। और खाद उर्वरक आजकल आप देखा कि बहुत महंगा हो रहा है तो खर्चो खूब आवे बंग में भी, तो यहीं कर गया जो को उपयोग है आने आप अच्छी तरह पूरी समझ छू आप काम में लेवा। और आज की आप काम में लेवा खाद उर्वरक इंग में जो आप थोड़ी सी भी चूक कर दें तो बीच में फिर क्या नुकसान हो जाए, जो आप कम रखा खेत में तो भी नुकसान है और ज़्यादा कर दें तो भी नुकसान है। और सागे सागे देखो ज़्यादा अगर दे दें आप तो खर्चो तो लागे ही लागे हैं। इंग सागे सागे किसान भाइयों को देखो अच्छो लाभ आपने जद्दी मिल सी जद आपने जरूरत के अनुसार छूँ सही संतुलित और अच्छे ढंग से आपने काम में लेवा और खेत के मां ज़्यादा उपज खातर आपने आंगो संतुलन बहुत ही जरूरी है। तो किसान भाइयों फर्टिगेशन जिकी है आ बहुत ही अच्छी प्रणाली है, तो इस आप अगर खाद उर्वरक देवा तो इंग में अपने टाइम की बचत होवे और पीछे टक्के की भी बचत होवे और सागे आपने जिकी जमीन है खेत है वो भी अच्छो रहे। तो फर्टिगेशन प्रणाली की बात करा तो इंगमा जिका उर्वरक है खाद है वे आप जो को खेत में पानी लगावा बिंग सागे आना मिला के और सीधा अपना जिका पौधा है बंगी जड़ें तई पहुँचा सका आपने। और फर्टिगेशन चू उर्वरक जिका है वे कम मात्रा में और बहुत ही जल्दी जल्दी और कम टेम गए माँ सिंचाई पानी के सागे आप देश का आपने और पौधा ने बंगी जरूरत के अनुसार जिका पोषक तत्व वे पूरा बंगा हो जाए। और इंगे सागे सागे आपने जिका कीमती खाद उर्वरक हो बंगो नुकसान भी को नहीं हुआ, कई बार आप सीधो छिड़काव करा तो बिंग में कम ज़्यादा भी हो जाए और ज़्यादा होने से क्या है कि बंगो रिसाव हो गए और वह जमीन में नीचे उड़ जाए। तो इस तरह फर्टिगेशन के माध्यम से आप पानी और पोषक तत्व है बंगो सही मिलान करके और फसलों ने देवा तो बीच में फसलों की जिकी पैदावार है वह भी अच्छी हो जाए और सागे सागे बंगी जिकी गुणवत्ता है वह भी बढ़िया हो जाए और पौधा ने पूरा जरूरत का पोषक तत्व है जिका वह मिल जाए और इंगे सागे सागे अपना उर्वरक जिको है बंगो नुकसान भी को नहीं हुए। किसान भाइयों उत्पादन के माँ ज़्यादा हुए और गुणवत्ता भी अच्छी रहे तो बी खातर फर्टिगेशन जिको है बहुत ही जरूरी मान्यो गए हैं। किसान भाइयों आप बात करा फर्टिगेशन की, तो तरल रूप में जिका तरल फर्टिगेशन हो तो आप काम में ले सका, पर जिका सूखा और दाना वाला जिका उर्वरक हो बने भी आप काम में ले सका। तो बी खातर आप जी अभी बात करी कि बने पानी में घोल बना गए और अच्छी तरह छान गए और भी बाद में आप आने काम में ले सका, क्योंकि फर्टिगेशन के मैं आप जिकी ड्रिप सिंचाई पद्धति जिके ना आप टपका सिंचाई पद्धति भी बोलना या बूंद बूंद सिंचाई पद्धति बोल दें और इस अलावा जिकी फुहार वाली आप सिंचाई करा तो बिंग में बहुत ही ज़्यादा कामयाब है। इंगे सागे सागे आप जिकी पारंपरिक सिंचाई आप करा तो बिंग में भी आप देश कहाँ अपन बिंग खातर आपने इंगे अच्छी तरह विधि पूरी जानकारी ले गए और अच्छी जिकी मात्रा है और घोल जो है बढ़िया बना गए और बिंग बाद में आप इन्हें काम में ले सका।

और टपका सिंचाई में या फुहरा विधि की बात करें तो बिंग में क्या अपन इन्हें छाड़नों बहुत ही जरूरी है, जिसमें क्या कि आपने जी की आगे नालियां हैं वे बंद ना आवे। और इनमें आप सावधानियां भी आपने रखनी चाहिए। देखो एक तो क्या है कि जब भी आप फर्टिगेशन अपना काम में लेवा तो भी मैं क्या पहला 10-1 मिनट पानी जी को है सीधो पानी आप चला दें और खाद उर्वरक देनु बाद में भी अपन के 10-1 मिनट सादो पानी अपन चलाने देना चाहिए तो भी शूँ कि नालियाँ जी के भी एकदम अच्छी तरह साफ हो जाए। और इंग सागे सागे मिश्रण जी को है वो बहुत ही आपने सावधानी से बनाना चाहिए। कई बार आप देखा कि जिका दो न्यारा न्यारा भांत का उर्वरक हुए वे आपस में बंगो मिलान को नहीं हुए तो इं करके इंग भी आपने जानकारी लेनी जरूरी है कि जिका आपस में मिलान वाला जिका उर्वरक हुए वे भी आप सागे मिलावा नहीं तो बना आपने न्यारा न्यारा जिका खेत में देना चाहिए। और सल्फेट है फास्फेट जिका उर्वरक है बने कैल्शियम वाला उर्वरक हुए बंग सागे कदी नहीं मिलाना चाहिए, इन बात को भी आप विशेष ध्यान रखा। और इंगा फर्टिगेशन का अगर आप फायदा की बात करें किसान भाइयों तो इंगा देखो बहुत सारा फायदा है। सारों मोटो फायदों तो ये कि अपने जरूरत के अनुसार खाद उर्वरक और पानी की जिकी सही मात्रा है बा खेत में जावे।

0: जी का खेत में देना चाहिए। और सल्फेट है फास्फेट जी का उर्वरक है बने कैल्शियम वाला उर्वरक हुआ बंग सागे कदी नहीं मिलाना चाहिए, ये बात को भी अपना विशेष ध्यान रखा। और इंगा फर्टिगेशन का अगर अपना फायदा की बात करें किसान भाइयों, तो इंगा देखो बहुत सारा फायदा है। सारों मोटो फायदो तो ये कि अपने जरूरत के अनुसार खाद उर्वरक और पानी की जिकी सही मात्रा है वह खेत में जावे और जमीन का माँ प्रदूषण को नहीं हुआ, क्योंकि आप कई बार देखा कि आप सीधा खाद उर्वरक देवा तो बे कई बार कम ज़्यादा हो जाए तो बीच में भी नुकसान है, और सही तरीका से पौधा की जड़ें तई ना जावे तो बीच में भी क्या माटी के माँ नुकसान होने लग जाए और आपने जमीन की जिकी पोषक तत्व है वह में कमी आने लग जाए और पैदावार की जिकी क्षमता वह वह भी कम हो जाए। इंगे सागे सागे फसल की बढ़वार है या बाकी गुणवत्ता है तो वह भी अच्छी हो फर्टिगेशन छू। और उर्वरक जिका है वह सीधा पानी के जरिए छू जड़ा गा माँ अच्छी तरह घुल जाए तो बीचू के पौधा की बढ़वार भी जिकी है अच्छी हो। और सागे सागे फर्टिगेशन तकनीक जिकी है आप बहुत ही सुरक्षित मानी जाए है और इंग माँ पौधा की जिकी जड़ा है बने बिल्कुल भी कोई नुकसान को नहीं हुए। और इंग सागे सागे पौधा जी का है वह सही मात्रा का माँ पानी बने मिले सही मात्रा का माँ बने उर्वरक मिले तो बीचू जमीन और अपने फसल जी की है दोनों बहुत ही अच्छी रेवे और पैदावार भी इंग माँ बढ़िया होने लग जाए और जिका खरपतवार है वह भी कम हुए तो बीचू पोषक तत्व जी का है ज़्यादा ज़्यादा फसलों ने अपना जी की फसल है पौधा है बने मिले और खरपतवार कम हुआ तो इंग माँ अपने बने काटने में या बने ख़त्म करने में भी बहुत ही आसानी हुए। तो किसान भाइयों देखो आप बात करी फर्टिगेशन की तो इतनी या तकनीक जिकी है बहुत ही अच्छी तकनीक है और इसू किसान भाइयों की जिकी है मेहनत है वह भी कम लाग गया, तो ये करके आप जद भी आ गए छू अपन ध्यान रखना चाहिए कि फर्टिगेशन अपन जरूर अपनावा। और फर्टिगेशन को एक फ़ायदा और है कि आप टपकाली विधि छू या फुहरा सिंचाई विधि छू खेत में पानी देवा तो इनमें किसान भाइयों आपने खाली जिकी भूमि पड़ी है या बंजर भूमि है कई किसान भाइयों के जो टिब्बा क्षेत्र का किसान भाई है तो बंग माँ फसल उगानी बहुत ही औखो काम है तो आप टपका सिंचाई विधि छू और बिंग में फर्टिगेशन अपना लें तो देखो पानी और खाद दोनों आप फसलों ने दे सक तो बिंग में भी फसल अपने जिकी अच्छी हो सके है। और किसान भाइयों सागे सागे आप देखा कि यहाँ दिनांग में आगे आने वाले दिनांग में कई जिकी भांत भांत की फसल हैं बंगी बुआई को भी टेम है जियाँ बिरखा छू आप कई फसलों की बुआई करा हाँ तो बंगों भी आप ध्यान रखा तो अच्छी अच्छी किस्म जिकी है बंगी जरूर आप जानकारी ले लें। और सागे सागे जिकी भी फसल की आप बुआई करा तो बिंग में बीज जिको है बिंग उपचार आप जरूर करा तो आगे आने वाले दिनों में आपने फसल का माँ रोग है या कीट है तो बंगों प्रकोप अपने न होवे। तो किसान भाइयों अब चला राम राम सा राम राम।
1: फर्टिगेशन अपनाएं उपज बढ़ाएं कार्यक्रम खेत खलिहान में भी किसान भाइयों ने इस विषय पर ये जानकारी सुनी। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। जोधपुर शहर के सरकारी पावटा जिला अस्पताल में सिजेरियन ऑपरेशन के बाद तबीयत बिगड़ने वाली 8 प्रसूताओं में से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने जयपुर में पत्रकारों को बताया कि इनमें से 6 प्रसूताओं की स्थिति सामान्य है, वहीं 1 को एम्स में भर्ती कराया गया है।
1: पावटा के अंदर 6 पेशेंट्स बिल्कुल नॉर्मल है, उनका यूरिन वगैरह ऑल पैरामीटर्स आर ओके। एक जो एम्स में रेफर कर रहे हैं वो हाईली डायबिटिक है और एक प्रसूता जो एमडीएम में है उसके पी लिया हुआ है, उसको भी जो है हम परमिशन ले रहे हैं कि हम चांस क्यों ले, क्योंकि एम्स की फैसिलिटीज जो है वो एक अलग लेवल की फैसिलिटीज होती है।
0: ये मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन ने संबंधित ऑपरेशन थिएटर को सीज कर दिया है। संक्रमण के कारणों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन थिएटर में उपयोग किए गए उपकरणों, दवाओं और अन्य व्यवस्थाओं की जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अपार सफलता इस बात का प्रमाण है कि

0: योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है बल्कि उन्हें आत्मविश्वास के साथ सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। सोशल मीडिया पर एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन को पूरी तरह शांत रखने का साधन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मन को शांत करना और श्वास प्रवाह को नियमित करना इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की तीव्र गिरावट दर्ज की गई। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रेंट क्रूड की कीमत प्रति बैरल में 2% से अधिक की गिरावट के साथ लगभग $89 पर आ गई। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में जैसलमेर से गिरफ्तार मुश्ताक अली को आज जयपुर की एक अदालत ने 3 दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया है। 5 दिन की रिमांड पूरी होने पर आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया था। पुलिस ने कॉल डिटेल और बैंक खातों की विस्तृत जांच के लिए अदालत से रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की थी जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। पुलिस के अनुसार मुश्ताक पिछले 2 साल से पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था और खुफिया जानकारी पाकिस्तानी एजेंटों के साथ साझा करता था। प्रदेश में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष यातायात अभियान के तहत 1,37,000 से अधिक वाहनों पर कार्रवाई की गई है। 4 से 20 जून तक चले इस अभियान में सबसे ज्यादा शिकंजा अवैध काली फिल्म वाले वाहनों पर कसा गया। इसके तहत 51,000 से अधिक वाहनों में काली फिल्म हटवाई गई। साथ ही नियम विरुद्ध नंबर प्लेट, अनाधिकृत चिन्ह, लाल बत्ती, नीली बत्ती, प्रेशर हॉर्न के मामलों में भी सख्त कार्रवाई की गई। यातायात महानिदेशक अनिल पालीवाल ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य चालान काटना नहीं बल्कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकना है। जिलेवार कार्रवाई में जयपुर पश्चिम सबसे अव्वल रहा। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच आम जन को पेयजल संकट से राहत दिलाने के लिए राज्य सरकार के विशेष अभियानों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा चलाए गए 9 अभियानों के तहत 24,000 से अधिक पेयजल समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया है। 5 अप्रैल से 20 जून तक चले इन अभियानों में 5,000 से अधिक खराब हैंडपंपों की मरम्मत, पाइप लीकेज दुरुस्त करने और बाधित जलापूर्ति बहाल करने सहित लाखों लोगों को बड़ी राहत पहुँचाई गई है। पिछले सप्ताह इस अभियान के दौरान एक दिन में 2,385 पेयजल समस्याओं का निस्तारण किया गया। प्रदेश में मौसम के मिजाज में बदलाव का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कहीं कहीं मेघ गर्जन के झांकेदार हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई। सबसे अधिक 26 मिलीमीटर बारिश झुंझुनू और सीकर के रामगढ़ में दर्ज की गई। वहीं सर्वाधिक अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस तापमान श्रीगंगानगर में रिकॉर्ड किया गया। सबसे कम न्यूनतम तापमान जोधपुर में 30.7 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा अलवर, पिलानी और सीकर में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 17 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। 1:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। सखियों, इन पंक्तियों को सुनकर आप समझ ही गई होगी कि हम क्या कहना चाहते हैं। ये धरती, पौधे, ये हरी भरी वादियाँ तभी खूबसूरत दिखेंगी जब अमृतमयी वर्षा होगी। और समय की मांग भी है कि अब तो घनघोर घटाएं आ ही जाएं, और मुझे लगता है कि वो जल्दी

आ भी जाएंगी, और क्योंकि आज है विश्व वर्षा वन दिवस, तो आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, और साथ ही साथ आपकी प्रिय रेडियो सखी कृष्णा का प्यार भरा नमस्कार।

कहते हैं लाख तूफान जिंदगी में आए लेकिन कभी भी अपने उम्मीद की लो को कम नहीं करना चाहिए। चाहे जीवन में कितना भी अंधेरा हो, इस लो को हमेशा जलाए रखना चाहिए। सखियों, उम्मीद बहुत बड़ी होती है जो हमें जीने की ताकत देती है। हमारी बहुत सी इच्छाएं होती हैं जो कभी पूरी नहीं हो पाती हैं और मन मायूस हो जाता है, चेहरे की रौनक चली जाती है। यूं लगता है बस अब और नहीं, जिंदगी बोझिल लगने लगती है। कोई खुशी नहीं क्योंकि दिल के किसी कोने में ठेस जो लगती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि जब हमारी उम्मीद कभी कभी पूरी नहीं होती है तो हम मायूस हो जाएं। हमारी उम्मीद को हमें टूटने नहीं देना चाहिए। आशा एक शक्तिशाली प्रेरक है जो आशा को बनाए रखती है। बस थोड़ा सा सब्र रखें, हमारी आशा आपसे यूं ही बधी रहेगी इस गीत के बाद।

एक छोटी सी विराम के बाद हम फिर हाजिर हैं अपनी खूबसूरत बातों के साथ। सखियों, बातें हो रही थी आशाओं की, इच्छाओं की। विचारों के साथ आशा का गहरा संबंध होता है, मानसिक भावनात्मक संबंध बहुत मजबूत होता है। ये नकारात्मक विचारों से हमें हमेशा बचाती हैं और विश्वास दिलाती है कि आने वाला कल बेहतर होगा। जब कोई व्यक्ति आशा उम्मीद से भरा होता है तो उसके भीतर लक्ष्य को प्राप्त करने की ऊर्जा बहुत होती है। अगर वो असफल भी होता है तो आशा उसे ऊपर उठा ही लेती है। जिंदगी का दामन उम्मीदों से, आशाओं की किरणों से भरा हो, बस तभी जिंदगी जिंदगी लगती है, वरना जीते तो बेजान जिंदगी सभी हैं। तो अब हमारी आशा है, हम सभी की आशा है कि बस बादल आ जाएं और बरस जाएं और हम पूर्ण रूप से तृप्त हो जाएं।

सखियों, आशावादियों की सोच समाज से बिल्कुल हटके होती है। वो खुशियों का अवसर ढूंढ ही लेते हैं कहीं न कहीं से। ऐसे लोग समस्याओं से घिरे होने के बाद भी खुश रहने की कोशिश करते हैं। उनका उद्देश्य सकारात्मक होता है। भारतीय संस्कृति और मनोविज्ञान में भी आशा को जीवन का आधार माना गया है। ये व्यक्ति को कर्म करने की शक्ति प्रदान करता है। जीवन में आशा वह संजीवनी है जो विपरीत परिस्थितियों में भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, हमें दुखों से लड़ने का हौसला देती है, एक बेहतर भविष्य का निर्माण करने के लिए मार्ग प्रशस्त करती है, हमारे लक्ष्य का निर्माण करती है ताकि हम जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच सकें।

0: वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस की यात्री
1: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
2: दिमाग चार्ज कर अपना।
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
2: देखा
1: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
3: अब क्या करोगे?
1: फ्री वाईफाई है ना?
2: बुद्धू सुधर जा।
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
1: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
3: RBI कहता है
4: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
5: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
6: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
8: सखियों, कभी कभी हमें जीवन में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और इसके लिए हमें किसी किसी से लड़ना भी पड़ता है। कुछ अच्छा बोलते हैं तो कुछ बुरा, तो सामने वाले को भी बुरा लगने लगता है। उसे शायद आदत नहीं है अच्छा सुनने की। जी हाँ, क्योंकि सत्य में बहुत ताकत होती है, लेकिन ये कभी कभी अपनों से भी लड़ा देती है। उनकी नज़रों में हम बुरे बन जाते हैं क्योंकि सच तो हमेशा कड़वा होता है। आजकल समय है चापलूसी का, झूठ का। घर हो, दफ्तर हो, पड़ोस हो, सभी जगह बस झूठ और चापलूसी है। भला सच का साथ कौन दे? लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सत्य का हमेशा साथ देते हैं और समाज में एक अलग ही उनकी धारणा होती है, अलग उनकी पहचान बन जाती है। वो किसी की परवाह नहीं करते कि जो समझता है समझने दो, भाई हम तो सत्य का ही साथ देते हैं और हमेशा देंगे। तो चलिए एक और गीत हम आपको सुनवाते हैं।

0: कभी तो हंसाए।
1: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: सखियों, सच बोलना हमेशा आसान नहीं होता है और सच बोलने वालों को तनाव भी बहुत लेना पड़ता है। सच का रास्ता कांटों भरा होता है, जहां कोई साथ खड़ा नहीं होता। इसलिए सच बोलने वालों को हमेशा विरोध का सामना करना पड़ता है। जीवन के इस सफर में अपने ही कभी कभी धोखा दे जाते हैं, सच बोलने पर साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर रिश्ते नकली झूठ बुनियादों पर होते हैं। वो केवल स्वार्थ की भाषा समझते हैं, लेकिन भैयान तो दाल ही काली है। अपने भी झूठ और दिखावे से प्रभावित हैं तो कोई क्या करे, कौन सुने। लेकिन फिर भी सच बोलने वाले तो हमेशा सच ही बोलेंगे।

सखियों, एक कहावत है, आपने सुनी ही होगी, कि हर समय झूठ का नहीं होता। कभी कभी सत्य का ऐसा समय आता है कि सबकी बोलती बंद हो जाती है। लेकिन कुछ लोग अपने साथ वाले भी हैं जो ये जानते हैं कि जिंदगी की कुछ सच्ची और कड़वी बातें हमेशा आगे बढ़ने में हमारी मदद करती हैं। कभी कभी सच हमारा चैन जरूर खो देता है कुछ पल के लिए, लेकिन फिर सच तो सच ही है और जीत भी अंत में सच की ही होती है। ईमानदारी, सच हमेशा सुकून देते हैं। कड़वा सच जिंदगी की कमियों का आईना दर्शाता है। हमारा आत्म सम्मान है सच को हमें पहचाने, क्योंकि ये हमें पहचान दिलाता है। समाज में हम कुछ अलग ही होते हैं जब हम सच बोलते हैं, और ऐसे लोग बड़ी शान के साथ जीते हैं, क्योंकि जिंदगी सच के साथ एक जंग है।

बहनों, कुछ लोग इतने मजबूत इरादों के होते हैं कि वो अपने अंतरात्मा की ही सुनते हैं, केवल जोश से भरे अपने इरादों के पक्के। वो हमेशा अपनी बात के पक्के होते हैं, अटल, क्योंकि वो अपने निर्णयों को हमेशा आत्मविश्वास के साथ लेते हैं, कोई हिचकिचाहट नहीं। उनके सोचने समझने की शक्ति बाकियों से अलग होती है। आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेने का अर्थ है खुद पर भरोसा, और उनका खुद पर बहुत भरोसा होता है। हर बात का सही विश्लेषण करना, बिना डरे आगे बढ़ना और अपनी बात को कह देना, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए केवल अपने अंतर्मन की बात को वो लोग सुनते हैं। आत्मविश्वास की जिंदगी उनकी भरी होती है, और चुनौतियाँ उनके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं जीवन में, क्योंकि वो चुनौतियाँ

लेते ही रहते हैं। जिंदगी की जीत में वही लोग शामिल होते हैं जिनके हौसले बुलंद हो। डरपोक व्यक्ति क्या आगे बढ़ेगा? एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि डर के आगे ही जीत है। तो इस जीत को पाना है तो भाई आगे तो बढ़ना होगा, और आगे व्यक्ति तभी बढ़ पाएगा तब उसके हौसले मजबूत होंगे, उसके इरादे मजबूत होंगे, उसका आत्मविश्वास मजबूत होगा, तभी आप जिंदगी की जंग में जीत पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। मंजिल पाना आसान नहीं है सखियों, अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए बहुत लड़ना पड़ता है, अपने अंदर मजबूत जज्बा बिठाना पड़ता है। और ऐसे लोग कितना भी संघर्ष कर लें, कितनी भी चुनौतियां स्वीकार कर लें, वो कभी डरते नहीं हैं और अपनी मंजिल पर यूं ही बेखौफ चलते रहते हैं, और अंत में जीत उन्हीं की होती है।

सखियों, गर्मी का मौसम है, अपने चेहरे का अपने शरीर का ध्यान रखें, जितना हो सके पानी पिएं, जूस पिएं, लस्सी पिएं और ठंडा पीते रहें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। और इस अंतिम खूबसूरत गीत के साथ ही अपनी सखी कृष्णा को दें विदा। अगले कार्यक्रम में हम करेंगे खूब बातें, ढेरों मुलाकातें। तब तक के लिए नमस्कार।

सखियों, गर्मी का मौसम है, अपने चेहरे का, अपने शरीर का ध्यान रखें, जितना हो सके पानी पिएं, जूस पिएं, लस्सी पिएं और ठंडा पीते रहें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। और इस अंतिम खूबसूरत गीत के साथ ही अपनी सखी कृष्णा को दें विदा। अगले कार्यक्रम में हम करेंगे खूब बातें, ढेरों मुलाकातें। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आपने कार्यक्रम सुना महिला जगत। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: Pradesh, Tamil Nadu, Lakshadweep, Puducherry and Karaikal during the day. The Met Department has also forecast thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Haryana, Chandigarh, Delhi, Punjab, Himachal Pradesh. News just in, Keir Starmer has resigned as Prime Minister of the United Kingdom. In a statement outside 10 Downing Street, he said every decision he has made in office has been about putting the country that he loves first. In the FIFA World Cup 2026, Egypt registered their first ever World Cup victory 3-1 over New Zealand in Vancouver this morning. Liverpool star Mohamed Salah scored his first goal of the tournament. With this win, Egypt took over the first place in Group G. Earlier, Cape Verde held Uruguay to a 2-2 draw in their Group H match in Florida today. Iran and Belgium also played out a goalless draw in their Group G clash in California last night. In today's fixtures, Argentina will take on Austria in Group J. The match will begin at 10:30 p.m. IST. In men's hockey, India defeated the Netherlands 3-2 in their last match of FIH Pro League Rotterdam leg yesterday. Jugraj Singh, Abhishek and Rajinder Singh scored the goals, helping India register their second win of the leg against the Dutch side. Stand-in captain Hardik Singh was named player of the match for his leadership and strong midfield performance. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% up in the afternoon session today. The Sensex rose 375 points to 77,178, while the Nifty advanced 108 points to 24,121 when reports last came in. In the broader market on the National Stock Exchange, mid-cap 100 index added 0.3%, while the small-cap 100 index was trading 0.5% up a short while ago. And now before we end the bulletin, the headlines once again. BJP government in West Bengal presents first full budget focusing on social welfare, infrastructure development and employment, announces a slew of women-centric schemes. BRICS National Security Advisors meeting begins in New Delhi to discuss emerging security challenges. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar arrives in Mongolia to hold meeting with his counterpart to deepen economic ties. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. And in FIFA World Cup, Egypt beat New Zealand 3-1 to secure first ever World Cup victory. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू, उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर मंगोलिया पहुंचे, आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर अपने समकक्ष से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जनकल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनमें शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए 50,000 पद और पुलिस विभाग में 20,000 नियुक्तियां शामिल हैं। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिसकर्मियों और एनवीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय ₹2,000 बढ़ाया गया है। कोलकाता क्षेत्र के लिए कल्याणी के पास एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का प्रस्ताव है। बजट में दो प्रमुख रक्षा केंद्रों के विस्तार और विकास में मदद के लिए हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन को 25 एकड़

0: और कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन को 37 एकड़ जमीन सौंपने का प्रस्ताव भी है। एक रिपोर्ट।
1: राज्य सरकार ने सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी शिक्षक और शिक्षा कर्मियों के लिए 20% महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। महंगाई भत्ता बढ़ के 38% हो जाएगा। यही सुविधा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि ये दर 1 अक्टूबर से लागू होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य पर कुल ऋण 8,15,891 करोड़ रुपए की है। इस कारण सामाजिक परियोजनाओं और वित्तीय शासन की बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है। बजट में अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। पार्श्व शिक्षक का वेतन 5,000 रुपए बढ़ाया गया है। आंगनवाड़ी कर्मी और आशा कर्मियों के लिए मासिक मानदेय में 5,000 रुपए की वृद्धि की गई है। चंदीपन दासगुप्ता के साथ काश्मीर नाहर, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
0: तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADMK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका जताई कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने परियोजना के विरोध में अपना रुख दोहराते हुए कहा कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने मेकेदातु जल न्यायाधिकरण के गठन की मांग से जुड़े विधानसभा के सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का भी उल्लेख किया। ओडिशा में विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने मार्च में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजू जनता दल, BJD और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि दलबदल विरोधी कानून के अंतर्गत याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां और सबूतों का मानक अभाव था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की बैठक चल रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कर रहे हैं। बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। बैठक का मुख्य विषय वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा जोखिमों में नई तकनीकों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने देश के विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की अहम भूमिका पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज CISF के मुख्यालय के इमारत के भूमि पूजन और ई उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि CISF के जवान देश की तरक्की को सुरक्षित रखने वाले आर्थिक सैनिक के तौर पर काम करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बत्सिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर वहां के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ

0: चर्चा करेंगे। वे बृहस्पतिवार को जेजू में शांति और समृद्धि के लिए जेजू फोरम पर मुख्य भाषण भी देंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में 2 और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में 2 महिला और 1 बच्चा भी शामिल है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और 2 मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपये का इनाम था। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज शाम 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। डॉक्टर मुरुगन कल देवास जिले की कन्नौज तहसील के डोकाकोई जाएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टार्मर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक बयान में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी फैसले किए उनमें देश को सबसे पहले रखने की बात ही मुख्य रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर में 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 375 अंक बढ़कर 77,178 पर, जबकि निफ्टी 108 अंक बढ़कर 24,121 पर कारोबार कर रहा था। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में नाजुक संघर्ष विराम को बढ़ाने तथा तनाव को कम करने पर केंद्रित पहले दौर की वार्ता के समापन की खबर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए जाने के बाद ये गिरावट आई है। ताइवान की सेना ने 5 दिवसीय तत्काल युद्ध तत्परता अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में सैन्य बल तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकें। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास के जरिए सैन्य इकाइयों की शांतिकाल से युद्धकालीन संचालन में तेजी से बदलाव करने की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। ये अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब हाल के वर्षों में चीन ने ताइवान के आसपास अपना सैन्य अभ्यास और गतिविधियां बढ़ा दी हैं। फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकुवर में न्यूजीलैंड पर इस विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा।

0: मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और कार्यकाल में भी दिन के दौरान ऐसी स्थिति रहेगी। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में कल तक लू चलने की संभावना है। हरियाणा के राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल से खुदाई में मिले मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है। ये प्रक्रिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की गई है। करीब 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कंकालों के अध्ययन से सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक लेख साझा किया। इस लेख में कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने, न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाने और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की सरकार की कोशिशों का उल्लेख किया गया है। अपने लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि न्यायिक संस्थान एक पुल की तरह काम करते हैं जो हर हितधारक को न्याय की व्यापक खोज और सामूहिक भलाई के साथ विश्वास, अपनापन और जुड़ाव की भावना विकसित करने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

श्रोताओं, अभी आपने लाल पत्थर फिल्म का ये गीत सुना, आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की। प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर की आवाज़ में। इस गीत को हमने फिल्म दस्तक से लिया है।

बात एक रात की। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ थी हेमंत कुमार की। फिल्म संगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म है चंपाकली।

एक सपेरा एक लुटेरा। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, स्वर मोहम्मद रफ़ी का था। प्रोग्राम की अगली पेशकश मुकेश की आवाज़ में, फिल्म है साथी।

दिल ने फिर याद किया। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ थी लता मंगेशकर की। और लीजिए प्रोग्राम के आखिर में मुबारक बेगम को सुनिए, फिल्म का नाम है हमारी याद आएगी।

श्रोताओ, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में उर्दू सर्विस हमारे दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी।

सामीन आदाब, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। दोपहर के 3 बजे हैं, हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात का आगाज होता है।

मन नसीम खान ने। 4 बजे से आप लुत्फ ले सकेंगे फिल्मी नगमों का। फिल्मी नगमों का प्रोग्राम जारी रहेगा शाम 4:50 तक। 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 5 बजे हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पज़ीर हो जाएंगी। तो सामने था एक मुख्तसर तारुफ हमारे यहाँ से नशर होने वाले उन प्रोग्रामों का जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

आप हमें सुन सकते हैं मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। सामिन, आपको बता दें कुछ देर बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी। 3:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। दिन में 3:30 हम पेश करेंगे कहकशा प्रोग्राम के तहत किस्मत फिल्म की कहानी और नगमे, जिसे तरतीब दिया है जनाब

0: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 3:05 हुए हैं, खबरें नशर होंगी।
1: अब आप अर्जुमंद अली खान से खबरें सुनिए। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मुशीरों की मीटिंग नई दिल्ली में हो रही है, जिसमें उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर खारजा एस जयशंकर मंगोलिया के अपने हम मनसब के साथ इकतसादी राबतों को मजीद मुस्तहकम बनाने के मामले पर बातचीत करने वाले हैं। कतर में कुदरती गैस की बरामद से मुतालिक बुनियादी ढांचे के अहम मरकज में धमाका होने से 54 अफराद जख्मी हो गए हैं। और फीफा वर्ल्ड कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर वर्ल्ड कप में अव्वलीन कामयाबी हासिल की है। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मुशीरों की 2 रोजा मीटिंग आज से नई दिल्ली में हो रही है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल इस मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। इसमें ब्रिक्स के 11 मेंबर मुल्कों के सिक्योरिटी सरबराह शिरकत कर रहे हैं। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका और मुत्तहदा अरब अमारात शामिल हैं। इस मीटिंग के दौरान ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीर और वफूद के सरबराह आज दुनिया को दरपेश गैर रिवायती सिक्योरिटी चैलेंजों के मौजू पर तबादला ख्याल करेंगे। वो उभरते हुए सिक्योरिटी खतरात के ताल्लुक से नई टेक्नोलॉजियों के रोल के साथ साथ कौमी सिक्योरिटी चैलेंजों की तेजी के साथ बदलती हुई नौईयत पर भी गौर खोज करेंगे। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीर और वफूद के सरबराह दहशतगर्दी से निमटने और सिक्योरिटी से मुतालिक ब्रिक्स के मुश्तरका वर्किंग ग्रुपों की हालिया मीटिंगों के नतीजों का जायजा भी लेंगे, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मवासलाती टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का मामला भी जेर गौर आया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग के बैनुल अक्वामी दिन की अजीम कामयाबी इस हकीकत की अक्कासी करती है कि योग से न सिर्फ दुनिया भर में करोड़ों लोगों को जिस्मानी तंदुरुस्ती बरकरार रखने में मदद मिल रही है, बल्कि इससे उन्हें एतमाद के साथ मुस्बत जिंदगी जीने की तरगीब भी हासिल हो रही है। सोशल मीडिया पोस्ट पर एक संस्कृत सुभाषितम शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि योग जहन को पूरी तरह सुकून और तस्कीन देने का अहम वसीला है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया कबीले के अरकान से मुलाकात की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके रोल

0: जा टकराई थी। कतर के कुदरती गैस के अहम बरामदाती मरकज पर एक धमाके में कम से कम 54 अफराद जख्मी हो गए जबकि दीगर 18 लापता हैं। सरकारी खबरों के मुताबिक कल रात रास लाफान सनती इलाके में धमाका हुआ जो तवानाई की दुनिया के सबसे अहम मराकज में से एक है। यह धमाका इलाकाई कशीदगी से मुतालिक इससे पहले की रुकावटों के बाद यहां कामकाज को बहाल करने की कोशिशों के दौरान हुआ। ताइवान की फौज ने आज से 5 रोजा फौजी मशकें शुरू कर दी हैं ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि अगर चीन अपनी फौजी सरगर्मियों को भरपूर फौजी हमले की शक्ल देता है तो उसके सिपाही तेजी के साथ जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार रहें। ताइवान की कौमी दिफा की वजारत की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक इन फौजी मशकों का मकसद और ज्यादा तेजी के साथ मुकाबला करने की सलाहियत को मुस्तहकम करना है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज सुबह वैंकूवर में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 1-3 से हराकर वर्ल्ड कप में अपनी अव्वलीन कामयाबी हासिल की है। लिवरपूल के सरकर्दा खिलाड़ी मोहम्मद साले ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ ही मिस्र की टीम ग्रुप जी में सरफहरिस्त आ गई है। आज के मैचों में ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे शुरू होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मुशीरों की मीटिंग नई दिल्ली में हो रही है जिसमें उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर खारजा एस जयशंकर मंगोलिया के अपने हम मनसब के साथ इक्तसादी राबतों को मजीद मुस्तहकम बनाने के मामले पर बातचीत करने वाले हैं। कतर में कुदरती गैस की बरामद से मुतालिक बुनियादी ढांचे के एक अहम मरकज में धमाका होने से 54 अफराद जख्मी हो गए हैं और फीफा वर्ल्ड कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर वर्ल्ड कप में अव्वलीन कामयाबी हासिल की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमों पर अपनी प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। प्रोग्राम की पहली पेशकश उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। तेरे नाम फिल्म का नगमा, नगमा निगार समीर, मौसीकार हिमेश रेशमिया।

श्रेया घोषाल और सोनू निगम की आवाजों में आप सुन रहे थे जावेद अख्तर का लिखा है गीत, जिसे मौसीकी सजाया था नू मलिक ने। फिल्म थी मैं हूं ना। इस नगमे के साथ ही आज का फिल्मी नगमों का ये प्रोग्राम मेरी पसंद अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत प्रोग्राम कहकशां। आज इस प्रोग्राम में सुनिए किस्मत फिल्म की कहानी और नगमे, जिसे तरतीब दिया है जनाब मोहम्मद नसीम खान ने।

शेखर यानी अदाकार अशोक कुमार एक खूबरू नौजवान है। चोरी चकारी फरेब धोखाबाजी उसका महबूब मशगला है। आज 2 साल की सजा पूरी करके वो जेल से रिहा हुआ है, लेकिन उसके माथे पर कोई शिकन नहीं है और मुस्कुराहट उसके लबों पर खेल रही है। जेल से बाहर आकर सबसे पहले उसने बांके नामी एक शख्स की जेब काटी और उसके हाथ लगा एक बटुआ जिसमें एक घड़ी थी। दरअसल बांके भी एक जेब कतरा था और उसने भी किसी बूढ़े शख्स की जेब काटी थी। घड़ी बेचने की गरज से जब शेखर एक खुश मिजाज दुकानदार डेविड यानी अदाकार डेविड की दुकान पर पहुंचा तो वहां उसकी मुलाकात बांके से हुई और उसे इल्म हो गया कि शेखर उससे भी बड़ा फरेबी है। खैर, डेविड की मदाखलत की वजह से शेखर और बांके ने घड़ी बेचकर रकम को आधा आधा बांटने का इरादा कर लिया, लेकिन ऐन वक्त पर वो बूढ़ा शख्स भी वहां आ पहुंचा जिसकी घड़ी चोरी हुई थी। उसने डेविड को अपनी रुदात सुनाई। शेखर भी उनकी बातें सुन रहा था।

इसी दौरान शेखर को अंदाजा हुआ कि ये बूढ़ा शख्स उसी थिएटर में प्रोग्राम देखने जा रहा है जहां वो खुद जाने वाला है। तो वो उस शख्स को अपने साथ थिएटर में ले गया जहां उस शख्स की बेटी रानी यानी अदाकारा मुमताज शांति ने एक खूबसूरत आइटम पेश किया।

शो के दौरान इस बूढ़े ने शेखर को बताया कि एक जमाना था वो इस थिएटर का मालिक हुआ करता था, मगर हालात ने ऐसी करवट ली थी कि आज उसका नौकर रंजीत यानी अदाकार मुबारक इस थिएटर का मालिक बन बैठा है। मजीद उसने बताया कि जब रानी बच्ची थी तो वो उसे इस कदर लजाया करता था कि वो थककर चूर हो जाया करती थी, लेकिन वो रानी के थकने की परवाह भी नहीं करता था। नतीजा ये हुआ कि रानी की एक टांग खराब हो गई और वो लंगड़ा कर चलने लगी। यही वजह थी

वो अपनी बेटी से शर्मिंदा था और काफी अरसे से रानी और उसकी छोटी बहन लैला यानी अदाकारा स्नेहलता से अलहदगी अख्तियार करके गुमनाम से जिंदगी गुजार रहा था। शो के दौरान रानी अपने वालिद को तमाशबीन में देख चुकी थी। जैसे ही शो खत्म हुआ रानी ने चाहा कि वो अपने वालिद से मुलाकात करे, लेकिन तब तक वो वहां से गायब हो चुके थे। रानी ने शेखर से अपने वालिद के बारे में पूछा, मगर वो उसकी कोई मदद ना कर सका। रानी शेखर को अपने वालिद का दोस्त समझ बैठी थी। एक दिन शेखर ने थिएटर के मालिक रंजीत की बीवी का बेशकीमत हार गायब कर दिया। पुलिस को उस पर शक हो गया। पुलिस की जद से बचते बचाते वो इत्तेफाकन रानी के ही मकान में घुस गया। जब रानी ने उसे देखा तो उसने शेखर को अपने वालिद का दोस्त समझते हुए उसका इस्तकबाल किया। शेखर के पांव में मोच आ चुकी थी और वो बारिश में काफी भीग चुका था। रानी ने उसकी मरहम पट्टी की और बहुत ज्यादा रात हो जाने की वजह से उसे अपने घर में रोक लिया। रानी ने अपनी लाडली और चहेती बहन लैला को सुलाने के लिए एक लोरी सुनाई।

जब सुबह हुई तो दरवाजे पर मकान मालिक के मुंशी ने दरवाजे पर दस्तक दी। शेखर ने दरवाजा खोला, इसी दौरान रानी भी आ गई। मुंशी ने अपने कर्जे का तकाजा किया। रानी ने उसे यकीन दिलाया कि वो बहुत जल्द कर्जा अदा कर देगी।

मुंशी ने रानी को एक हफ्ते में कर्जा अदा करने की वार्निंग दी और वापस चला गया। शेखर को अंदाजा हुआ कि रानी बड़ी कशमकश की जिंदगी गुजार रही है। उसने रानी के रूबरू उसी के मकान में किराएदार की हैसियत से रहने की पेशकश रखी, जिसे बिलाखिर रानी ने कबूल कर लिया। इस बहाने से शेखर ने रानी की मदद करना शुरू कर दी। उधर रंजीत की बीवी के कीमती हार के चोरी के सिलसिले में तहकीकात कर रहे इंस्पेक्टर यानी अदाकार शाहनवाज ने उनके घर जाकर इत्तला दी कि पुलिस अभी तक हार के चोर का सुराग लगाने में नाकाम है। इसी दौरान इंस्पेक्टर की निगाह मेज पर गई जहां एक थाली में खाना सजा हुआ था, मगर उसे खाने वाला कोई मौजूद न नजर आया। इंस्पेक्टर ने इसकी वजह मालूम की थी तो उसे मिसेज रंजीत से पता चला कि उनके दो बेटे हैं मोहन और मदन, जिसमें से मोहन यानी अदाकार कनु रॉय उनके साथ है, जबकि दूसरा बेटा मदन बचपन में नाराज होकर घर से फरार हो गया था और आज तक लापता है। लेकिन फिर भी दिल न जाने क्यों कहता है कि एक दिन मदन जरूर वापस आएगा। एक दिन शेखर को पता चला कि रंजीत का बेटा मोहन लैला से शादी करना चाहता है और लैला बहुत जल्द शादी से पहले ही मां बन जाएगी। उधर मुंशी ने मकान को नीलाम करने की धमकी दी। शेखर ने हाथ की सफाई दिखाई और बड़ी चालाकी से मुंशी जी की जेब काटकर अच्छी खासी रकम उड़ा ली। मुंशी जी को शेखर पर शक तो था, लेकिन सबूत कोई मौजूद न था, इसलिए वो हाथ मलते रह गए। शेखर रुपया लेकर रानी के घर पहुंचा तो वो अपनी किशन कन्हैया से अपनी कश्ती किनारे लगाने की फरियाद कर रही थी।

शेखर ने रानी का कर्ज चुका दिया। रानी ने शेखर का शुक्रिया अदा किया और उसके दिल में शेखर के लिए एक नरम जज्बा पैदा हो गया। शेखर भी दिल ही दिल में रानी से मोहब्बत करता था, मगर उसने अभी तक अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था। शेखर ने रानी से वादा किया कि वो उसके पैर का इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से कराएगा। एक रोज शेखर ने रानी के एक पुराने फोटोग्राफ में उसे वही हार पहने हुए देखा जो कुछ अरसे पहले उसने रंजीत की बीवी के गले से चुरा कर डेविड को बेचा था। अगले ही रोज वो डेविड की दुकान पर पहुंचा और वो हार वापस अपने कब्जे में ले लिया और कुछ घंटों बाद ही वो हार रानी के गले में था। दरअसल ये हार रानी का ही था, मगर हालात बदतर हो जाने की वजह से रंजीत ने उसे बेच दिया था।

अब शेखर ने रंजीत की तिजोरी साफ करने का मंसूबा बनाया। वो चाहता था कि अगर उसके पास 2000 रुपए की रकम हो तो किसी अच्छे डॉक्टर से रानी के पांव का ऑपरेशन करा सकेगा। शेखर के मंसूबे के मुताबिक बांके ने रंजीत के यहाँ नौकरी कर ली। बांके ने तिजोरी का नंबर हासिल करके शेखर को दे दिया। शेखर ने तिजोरी तो खोल ली, लेकिन न जाने क्यों आज उसका जमीर उसे गलत काम करने से मना कर रहा था, और इसकी वजह थी रानी से उसकी मोहब्बत। उधर रानी शेखर की जानिब से पेश किए गए बेश कीमत हार को पहनकर थिएटर पहुंची, जबकि शेखर ने उसे मना किया था कि वो हार पहनकर घर से बाहर ना जाए। आखिर वही हुआ जिसका डर था। रंजीत ने जब वो हार रानी के गले में देखा तो फौरन पुलिस को फोन कर दिया। इंस्पेक्टर ने रानी से इंक्वायरी की और उसे गिरफ्तार करने का इरादा किया, लेकिन इससे पहले शेखर वहां पहुंच गया और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। जिस वक्त पुलिस की जीप उसे ले जा रही थी, वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया और चोरी छुपे डेविड के पास पहुंचा और उससे 2000 रुपए का कर्ज मांगा, लेकिन डेविड ने उसे यह रकम नहीं दी। मजबूरन उसे फिर चोरी का सहारा लेना पड़ा। वो बांकी की मदद से रंजीत की तिजोरी से 2000 रुपए ले गया और डॉक्टर से दरख्वास्त की कि वो रानी को हरगिज ना बताए कि यह रकम शेखर ने अदा की है। इधर मोहन को एक जरूरी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। मोहन के जाने के बाद रानी को भी पता लग गया कि लैला मोहन के बच्चे की मां बनने वाली है। वो बहुत परेशान हो गई और नाउमीदी का दामन उसने थाम लिया। उधर मोहन की मां ने एक दिन मौका पाकर रंजीत के रूबरू लैला और मोहन की शादी की बात रखी तो रंजीत ने पहले इस शादी से साफ इनकार कर दिया, लेकिन बाद में 10,000 रुपए की रकम बतौर जहेज मांगी। लैला को जब इस बात का इल्म हुआ तो वो जबरदस्त जहनी कशमकश का शिकार हो गई और उदासी के बादल उसके दिलो दिमाग पर छा गए।

नाउमीद ने लैला को खुदकुशी का रास्ता अपनाने पर मजबूर किया, लेकिन ऐन वक्त पर उसके वालिद ने उसे खुदकुशी करने से रोक लिया। उधर जब मोहन वापस लौटा तो उसे सारी हकीकत का इल्म हुआ। लैला को लेकर रंजीत और मोहन में तीखी तकरार हुई और बिलाखिर

मोहन ने घर छोड़ दिया। रंजीत के घर से जो रकम शेखर ने चोरी की थी, उसी सिलसिले में इंस्पेक्टर ने रंजीत के ठिकाने पर छापा मारा। यहां से एक लॉकेट बरामद हुआ। ये लॉकेट रंजीत के बिछड़े हुए बेटे मदन का ही था। रंजीत ने इंस्पेक्टर से कहा कि वो जल्द अज जल्द शेखर का पता लगाए, क्योंकि शायद उसी से पता चल सकता है कि मदन कहाँ है। इंस्पेक्टर ने रंजीत को राय दी कि वो रानी को दोबारा थिएटर में काम करने पर आमादा कर ले, क्योंकि शेखर कहीं भी हो रानी का प्रोग्राम देखने जरूर आएगा। रंजीत अपनी इस गरज की खातिर रानी से मिला और उसे अच्छी रकम की पेशकश की। रानी ने उसकी पेशकश कबूल तो कर ली, मगर इसके एवज एक कागज पर दस्तखत करवा लिए। इस कागज में लिखा था कि वो शेखर पर चल रहे सारे केस वापस ले लेगा और लैला और मोहन की शादी भी कर देगा।

जब शेखर को रानी के प्रोग्राम का इल्म हुआ तो वो भेस बदलकर थिएटर में पहुंचा, लेकिन इंस्पेक्टर ने उसे पहचान लिया और गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान इंस्पेक्टर की नजर शेखर के हाथ पर खुदे हुए मदन के नाम पर गई। वो ताज्जुब में रह गया। रंजीत की खुशी का कोई ठिकाना न रहा, उसकी आंखें नम हो गई। शेखर ने अपने बाप रंजीत से कहा कि मैं एक आवारा चोर

हूं और न ही मैं आपका बेटा कहलाने के लायक हूं। रंजीत ने उसे अपने गले से लगा लिया। इसी दौरान रानी वहां आ पहुंची और रंजीत के दस्तखत किए हुए कागजात इंस्पेक्टर साहब के हवाले कर दिए। रानी की सारी शर्तें रंजीत ने तस्लीम कर ली। उसने रानी और लैला को अपने गले से लगा लिया और इस तरह किस्मत ने अपनी मेहरबानियों के दरवाजे शेखर, रानी, लैला और रंजीत वगैरह पर खोल दिए।

सामने भी आप सुन रहे थे कहकशा प्रोग्राम के तहत किस्मत फिल्म की कहानी और नगमे, जिसे तरतीब दिया था जनाब मोहम्मद वसीम खान ने। पेश कर रहे थे एस एम शफीक। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमे, फिल्म मौसीकी के आज के प्रोग्राम में सामईन हम आपको सुनवाएंगे कुछ ऐसी फिल्मी गजलें जो न सिर्फ अपने ज़माने में मशहूर रहीं बल्कि जिनकी वजह से उन फिल्मों को भी शोहरत हासिल हुई। प्रोग्राम की पहली पेशकश तीन देवियां फिल्म का ये नगमा या ये गज़ल मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, नगमा निगार मजरू, मौसीकार एस डी बर्मन।

लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे मदन मोहन की मौसीकी से जी गज़ल फिल्म थी अकेली मत जाइयो, कलाम मजरूह का था। और सामिल जब सुनिए आशा भोसले की आवाज़ में मुराद जान फिल्म की गज़ल, कलाम शायर याद का है, मौसीकार हैं खय्याम।

दस्तक फिल्म की गजल आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के बाज में, फूल मजरू के थे, मौसीकी थी मदन मोहन की। आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश आप तमाम सामईन के लिए पाल की फिल्म की ये गजल मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, नगमनिगार शकील बदायूं, मौसीकार नौशाद।

0: अच्छे हालात हो गई।
1: इस नगर के साथ ही आज का फिल्म मौसीकी का प्रोग्राम अब खत्म होता है। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 4:50 हुए हैं, खबरें नशर होंगी।
2: यह आकाशवाणी है, अब आप मोहम्मद आजम खान से खबरें सुनिए। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मशीरों की मीटिंग नई दिल्ली में हो रही है, जिसमें उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर खारजा अजय शंकर ने उलान बतार में मंगोलिया के अपने मनसब के साथ इकतसादी रबतों को मजीद मुस्तकम बनाने के मामले पर बातचीत की। कैर स्ट्रेमर ने बरतानिया के वजीर अजम के अहदे से अपने इस्तीफे का ऐलान किया है। कतर में कुदरती गैस के बरामद से मुतालिक बुनियादी ढांचे के अहम मरकज में धमाका होने से 54 अफराद जख्मी हो गए। और फीफा वर्ल्ड कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हरा कर वर्ल्ड कप में अव्वलीन कामयाबी हासिल की है। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मशीरों की दो रोज़ा मीटिंग आज से नई दिल्ली में हो रही है। कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवाल इस मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। इसमें ब्रिक्स के 11 मेंबर मुल्कों के सिक्योरिटी सरबराह शिरकत कर रहे हैं। इनमें भारत, ब्राज़ील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका और मुत्तहिदा अरब अमीरात शामिल हैं। इस मीटिंग के दौरान ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मशीर और वफूद के सरबराह आज दुनिया को दरपेश गैर रिवायती सिक्योरिटी चैलेंजों के मौजू पर तबादला ख्याल करेंगे। वो उभरते हुए सिक्योरिटी खतरात के ताल्लुक से नई टेक्नोलॉजियों के रोल के साथ साथ कौमी सिक्योरिटी चैलेंजों की तेजी के साथ बढ़ती हुई नौयत पर भी गौर खोज करेंगे। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मशीर और वफूद के सरबराह दहशतगर्दी से निपटने सिक्योरिटी से मुतालिक ब्रिक्स के मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की हालिया मीटिंगों के नतीजों का जायजा भी लेंगे, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मवासलाती टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का मामला भी जेर गौर आया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक मजबूत समुद्री सलाहियत किसी मुल्क के इक्तिसादी दिफाई तौर पर मौसर होने का फैसला कुन उनसर होती है और भारत इसके लिए तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि समुद्री सलाहियतों का हामिल कोई मुल्क मजबूत होता है और इक्तिसादी और दिफाई तौर पर ज़्यादा मौसर होता है। वज़ीर आज़म ने राजधानी मुल्क में तैयार किए गए जंगी जहाज देवनागरी, जायजा लेने वाले जहाज संतोषधक और गहरे पानी में सरगर्मी अंजाम देने वाले आबदोशिकन बहरी जहाज अग्रे को कल बहरिया में शामिल करते हुए कही। इन जहाज़ों को बहरिया के जंगी जहाज़ों तैयार करने वाले ब्यूरो ने डिज़ाइन किया है और इनकी तामीर गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने की है। इन बहरी जहाज़ों का मकसद जंगी सरगर्मी मुस्तकम बनाना, समुंदर के जायजे लेना, आबदोशिकन तैयारियों की कार्रवाई अंजाम देना है। मगरबी बंगाल में बीजेपी सरकार ने अपना पहला मुकम्मल बजट पेश किया, जिसमें समाजी बहबूद, बुनियादी ढांचे के फरोग और रोजगार पर तवज्जो मरकूज की गई। खवातीन के मखसूस कई स्कीमों का ऐलान भी किया गया। रियासत सरकार के मुलाजमीन के महंगाई भत्ते में 20% का इजाफा किया गया है। रियासत के वजीर खजाना स्वपन दास गुप्ता ने शुभेंदु अधिकारी सरकार के पहले बजट में ऐलान किया। इस तरह मजमू महंगाई भत्ता 38% हो जाएगा। इसका इतलाक 1 अक्टूबर से होगा। उन्होंने ये भी कहा कि रियासी सरकार समाजी बहबूद के सभी मौजूदा स्कीमें जारी रखेगी। वजीर खजाना ने ऐलान भी किया कि रियासी सरकार के

स्कूल हो, और सरकार के इमदाद से चलने वाले स्कूलों में लड़कियों को 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी। जनाब स्वपन दास गुप्ता ने असेंबली में ऐलान भी किया कि सरकार मुख्तलिफ खाली अहदों के लिए 1 लाख अफराद की भर्ती करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि रियासी सरकार खातून उम्मीदवारों के लिए 33% खाली अहदे रिजर्व करेगी। रियासत के वजीर खजाना ने MLA के मकामी एरिया तरक्याती फंड को 70 लाख रुपये सालाना से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि रियासती पुलिस फोर्स में 20,000 सीटों पर तकर्री की जाएगी। शुमाली बंगाल में एम्स अस्पताल और कैंसर अस्पताल कायम किया जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर अजय शंकर 2 मुल्कों के सरकारी दौरे के पहले मरहल मंगोलिया गए हुए हैं। उन्होंने उलान बातार में मंगोलिया के अपने मनसब से बातचीत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि इस तबादले ख्याल से भारत और मंगोलिया के दरमियान कलीदी साझेदारी की गर्मजोशी, कुव्वत और मुस्तकबिल के अक्कासी होती है। दोनों रहनुमाओं ने तरक्याती प्रोजेक्टों, सलाही साजी, सकाफत, तालीम, सिक्योरिटी और कसीर मुल्की फोरमों में बाहमी इश्तराक की पेशरफ का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान तरफेन ने कानकनी माहौलियात के लिए साजगार तवानाई, ज़रई प्रोसेसिंग के शोबों में दस्तियाब मौक़ों के बारे में बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर अपने दौरे के दूसरे मरहले में बुध को 2 दिन के दौरे पर जुनूबी कोरिया जाएंगे। वो अपने मनसब छोहवांग के साथ तबादला ख्याल करेंगे। जुमेरात को जीजू के मकाम पर अमन और खुशहाली से मुतालिक जीजू फोरम में कलीदी खुतबा पेश करेंगे। मूड़े हादसे से मुतालिक पार्लियामानी कायमा कमेटी ने जम्मू कश्मीर लद्दाख का 4 दिन का मुतालियाती दौरा शुरू कर दिया। इसका मकसद कलीदी सरहदी सिक्योरिटी और खारजा पॉलिसी मामला का जायजा लेना है। मेंबर पार्लियामेंट शशि थरूर इस कमेटी के चेयरपर्सन हैं। हमारे नामा निगार ने बताया कि कमेटी सरहदी बंदोबस्त और सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी सूरतहाल का बरसरे मौका जायजा लेने के लिए इस महीने की 25 तारीख तक जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह का दौरा करेगी। मस्कूरा पैनल भारत के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से हालिया वाक़ियात, दरियाए सिंध से मुतालिक आबी माहदे की मुअत्तली और बैन अलाक़वामी सरहद नीस कंट्रोल लाइन पर सरहद पार की दहशत से लाख खतरात का जायजा लेगा। बरतानिया के वज़ीर आज़म खैर स्ट्रेमर ने वज़ीर आज़म और लेबर पार्टी के रहनुमा की हैसियत से अपने इस्तीफे का ऐलान किया है। उन्होंने अपनी पार्टी में बढ़ते हुए अंदरूनी दबाव के तनाजुर में कदम उठाया है। उन्होंने 2 साल पहले डाउनिंग स्ट्रीट पर अपनी आमद को अपनी ज़िंदगी का सबसे फ़ख्रिया लम्हा करार दिया और कहा कि करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदलने के मकसद से सियासत में आए थे। जनाब स्टारमर ने कहा कि सितंबर में पार्लियामेंट के इजलास से कबल नए लीडर की जिम्मेदारी संभालने तक वो अपने अहदे पर काम करते रहेंगे। कतर के कुदरती गैस के अहम आमदनी बरामदादी मरकज़ पर एक धमाके में कम से कम 54 अफराद जख्मी हो गए जबकि दीगर 18 लापता हैं। सरकारी खबरों के मुताबिक कल रात रास लफान सनदी इलाके में धमाका हुआ जो तवानाई की दुनिया के सबसे अहम मराकज़ में से एक है। ये धमाका इलाकाई कशीदगी से मुतालिक इससे पहले की रुकावटों के बाद यहाँ कामकाज के बहाल करने की कोशिश के दौरान हुआ। इस वाक़े के बाद बर्जन गैस सप्लाई मरकज में बड़े पैमाने पर आग लग गई जिसके बाद हंगामी टीमें जायवार हादसा पहुंच गईं। ताइवान की फौज ने आज से 5 रोज़ा फौजी मशकें शुरू कर दी हैं ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि अगर चीन अपनी फौजी सरगर्मियों का भरपूर फौजी हमले की शक्ल देता है तो उसके सिपाही तेजी के साथ जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार रहें। ताइवान के कौमी दिफा की वजारत की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक इन फौजी मशकों का मकसद और ज़्यादा तेज़ी के साथ मुकाबला करने की सलाहियत को मुस्तहकम बनाना है। दूसरी तरफ चीन ने हालिया बरसों में ताइवान के अतराफ अपनी फौजी मशकों में इजाफा कर दिया और इसकी सतह भी बढ़ा दी है। भारत के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने 14 जुलाई से शुरू होने वाले इंग्लैंड दौरे के लिए भारत की 15 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया। 1 रोज़ा बैन अलाक़वामी मैचों के लिए विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह जैसे सीनियर खिलाड़ियों की भारतीय टीम में वापसी हुई है। शुभमन गिल भारतीय टीम का कप्तान होंगे जबकि नायब कप्तान शरियास अय्यर होंगे। बेंगलुरु के एयर मार्शल अमित सिंह बख्शी हॉकी स्टेडियम में कल से 7वां एयरफोर्स अर्जुन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट शुरू हो रहा है जो अगले महीने की 3 तारीख से जारी रहेगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज सुबह वैनकोवर में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 1-3 3 गोल से हरा कर वर्ल्ड कप में अपनी अव्वलीन कामयाबी हासिल की। लिवरपूल के सरकर्दा खिलाड़ी मोहम्मद सवाले ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। जीत के साथ ही मिस्र की टीम ग्रुप जी में सरफहरिस्त।

0: आ गई है। आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मुशीरों की मीटिंग नई दिल्ली में हो रही है, जिसमें उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर खारजा एस जयशंकर ने उलान बतार में मंगोलिया के अपने हमनसब के साथ इकतसादी रबतों को मजीद मुस्तकम बनाने के मामले पर बातचीत की है। खैर स्ट्रामर बरतानिया के वजीर आजम के अहदे से अपने इस्तीफे का ऐलान किया है। कतर में कुदरती गैस की बरामद से मुतालिक बुनियादी ढांचे के अहम मरकज में धमाका होने से 54 अफराद जख्मी हो गए। और फीफा वर्ल्ड कप में मेसी ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हरा कर वर्ल्ड कप में अव्वलीन कामयाबी हासिल की है। आकाशवाणी से खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1073 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामिन शाम के 5 बजे चाहते हैं यहाँ हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात।

0: से खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1073 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामिन शाम के 5 बजे चाहते हैं यहाँ हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं।
2: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 5 बजे हैं। समय है युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युवाणी का।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना रेडियो साथी करण वर्मा, लेकर हाजिर हूं आप सभी युवाओं के लिए आपका अपना कार्यक्रम युववाणी। श्रोताओं, युववाणी कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे पद्म पुरस्कारों की, राजस्थान की प्रमुख नदियों की, विज्ञान के चमत्कारों की, मांड गायिका गौरी देवी की और साथ ही बात करेंगे आज के इतिहास की। तो साथियों, चर्चा विषयों को शुरू करने से पहले युववाणी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सन 1999 में बनी फिल्म ये है मुंबई मेरी जान के इस गीत से, कुमार शानू की आवाज़ में।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: दोस्तों, आइए अब बात करते हैं पद्म पुरस्कारों की। श्रोताओं, हमारी भारत सरकार द्वारा देश के नागरिकों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं और उपलब्धियों के लिए दिए जाने वाले प्रमुख नागरिक सम्मानों में पद्म पुरस्कार महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा, खेल, समाज सेवा, सार्वजनिक कार्य और व्यापार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में की गई थी। मित्रों, पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं, जैसे पद्म विभूषण, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, ये विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण, ये पुरस्कार उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। पद्मश्री, ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाने वाला सम्मान है। साथियों, वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों की सूची में राजस्थान की 4 विभूतियों को शामिल किया गया है। इनमें पीयूष पांडे को मरणोपरांत और अन्य 3 व्यक्तियों को पद्मश्री से नवाजा गया है, जिनमें प्रथम हैं गफरुद्दीन मेवाती जोगी। भरतपुर जिले के भपंग वादक और पांडून के कड़ाके साधक 62 वर्षीय गफरुद्दीन मेवाती जोगी ने 6 दशक से अधिक समय तक विलुप्त प्राय लोक कला को जीवित रखा और उसे वैश्विक पहचान दिलाई। वे करीब 2500 से अधिक दोहे कंठस्थ रखने वाले कलाकार हैं। इस महत्व

पूर्ण योगदान के कारण इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। तगाराम भील। दोस्तों, जैसलमेर जिले के अलगोजा वादक 66 वर्षीय तगाराम भील ने लोक संगीत की सदियों पुरानी परंपरा के एक प्रमुख वाद्य अलगोजा की मधुर स्वर लहरियों को देश दुनिया तक पहुंचाया। इसीलिए इन्हें इस उपलब्धि के लिए पद्मश्री से नवाजा गया। स्वामी ब्रह्मादेव। श्री गंगानगर के स्वामी ब्रह्मादेव श्री गंगानगर में स्थापित श्री जगदम्बा अंध विद्यालय और धर्मार्थ नेत्र चिकित्सालय के संस्थापक हैं। ये वर्ष 1990 के दशक से गरीब, असहाय और दृष्टिहीन लोगों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। इनका कार्य शिक्षा, चिकित्सा और मानव सेवा से जुड़ा है। इसीलिए इन्हें वर्ष 2026 में पद्मश्री से नवाजा गया। तो मित्रों, चर्चा और भी करेंगे। आइए पहले चलते हैं संगीत की दुनिया में और सुनते हैं फिल्म इम्तिहान का ये गीत कुमार शानू की आवाज़ में।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: दोस्तों, आइए अब बात करते हैं विज्ञान के चमत्कारों की। श्रोताओं, विज्ञान आज के युग की सबसे बड़ी शक्ति है। यह हमारे मानव जीवन को सरल, सुखद और उन्नत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विज्ञान ने ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं जिनकी कल्पना पहले असंभव लगती थी। आज विज्ञान के कारण ही मनुष्य ने प्रकृति की अनेक शक्तियों पर नियंत्रण भी प्राप्त कर लिया है। साथियों, विज्ञान के चमत्कार हमारे दैनिक जीवन में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं, जैसे बिजली, पंखा, टेलीविज़न, मोबाइल फोन और कंप्यूटर जैसे उपकरणों ने हमारे जीवन को बहुत आसान बना दिया है। संचार के क्षेत्र में भी विज्ञान ने क्रांति ला दी है। इस चमत्कार के कारण ही अब हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से कुछ ही क्षणों में बात कर सकते हैं। मित्रों, परिवहन के क्षेत्र में भी विज्ञान का अद्वितीय योगदान है। पहले जहां एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने

कई दिन लग जाते थे, वहीं आज रेल, कार और हवाई जहाज के माध्यम से ये दूरी कुछ ही घंटों में तय हो जाती है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भी मनुष्य ने बड़ी सफलताएं प्राप्त की है, जैसे चंद्रमा और मंगल ग्रह तक अपनी पहुंच बनाना। चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने कई असाध्य रोगों का इलाज संभव कर दिया है। नई नई दवाइयां और तकनीकें विकसित हुई है, जिससे मनुष्य की आयु बढ़ी है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार आया है। दोस्तों, विज्ञान के लाभ के साथ साथ इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं। परमाणु बम, प्रदूषण और पर्यावरण को नुकसान विज्ञान के गलत उपयोग के उदाहरण हैं। इसीलिए आवश्यक है कि विज्ञान का उपयोग मानव कल्याण के लिए ही किया जाना चाहिए। तो श्रोताओं, चर्चा तो चलती रहेगी, अब समय एक गीत का है। लीजिए अब सुनिए फिल्म आराधना का ये गीत।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: दोस्तों, आइए अब बात करते हैं मांड गायिका गवरी देवी की। श्रोताओं, राजस्थान अपनी समृद्ध लोक संस्कृति, परंपराओं और संगीत के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ की लोक गायन शैलियों में मांड गायन का विशेष स्थान है। मांड राजस्थान की एक मधुर और भावपूर्ण गायन शैली है, जिसमें प्रेम, वीरता, विरह और जीवन की भावनाओं को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। इस लोक कला को प्रसिद्ध बनाने वाली महान गायिकाओं में गवरी देवी का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। साथियों, गवरी देवी हमारे राज्य राजस्थान की प्रसिद्ध लोक गायिका थी। इन्हें बचपन से ही संगीत में गहरी रुचि थी। इन्होंने अपनी मेहनत, अभ्यास और प्रतिभा के बल पर मांड गायन में विशेष पहचान बनाई। इनकी आवाज में मिठास और भावनाओं की गहराई थी, जिसके कारण श्रोता इनके गीतों से जुड़ जाते थे। गवरी देवी ने पारंपरिक मांड शैली को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके गायन में राजस्थान की संस्कृति, लोक जीवन और परंपराओं की झलक भी दिखाई देती थी। ये अपने गीतों के माध्यम से राजस्थान की सुंदरता और भावनाओं को लोगों तक पहुंचाती थी। मित्रों, गवरी देवी को उनके लोक संगीत में योगदान के लिए कई सम्मानों से सम्मानित किया गया। ये कलाकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनी। इनका जीवन ये संदेश देता है कि अपनी संस्कृति और कला के प्रति समर्पण से व्यक्ति महान पहचान बना सकता है। वास्तव में मांड गायिका गवरी देवी राजस्थान की अमूल्य धरोहर थी। इनका योगदान लोक संगीत के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। इन्होंने अपनी कला से राजस्थान की संस्कृति को गौरवान्वित किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए लोक संगीत की एक मजबूत परंपरा छोड़ी। गवरी देवी का नाम भारतीय लोक संगीत में सदैव सम्मान के साथ लिया जाएगा। तो श्रोताओं, बातें और भी करेंगे, आइए एक बार फिर चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और सुनते हैं फिल्म फना का ये गीत।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: दोस्तों, आइए अब बात करते हैं हमारे राज्य राजस्थान की प्रमुख

नदियों की, जैसे घग्गर नदी। श्रोताओं, इस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ी से होता है। हमारे राज्य में इसका प्रवेश उत्तर दिशा से टिबी नामक स्थान पर होता है। हमारे राज्य में इसके बहाव क्षेत्र को नाली व पाकिस्तान में हकरा कहा जाता है। ये हमारे देश की आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। इस नदी को मृत नदी, सोतर नदी, नट नदी और सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है। बाणगंगा नदी, साथियों इसे रूठित नदी, अर्जुन की गंगा और ताला नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी के किनारे बैराट सभ्यता विकसित है। ये नदी बैराट की पहाड़ियों से निकलती है और आगरा के निकट यमुना में मिल जाती है। इस नदी पर जयपुर में जमुआ रामगढ़ और भरतपुर में लालपुर बांध बना हुआ है। काकनी नदी, दोस्तों इसे मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम जैसलमेर के कोटरी गांव से होता है। ये हमारे राज्य की सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी मानी जाती है। ये नदी जैसलमेर में प्रसिद्ध भुज झील का निर्माण भी करती है। ये हमारे राज्य की आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। चंबल नदी, मित्रों इसका उद्गम मध्य प्रदेश के महू के निकट जानापाव पहाड़ी से होता है। ये हमारे राज्य में चौरासी गढ़ के निकट से प्रवेश करती है। ये तीन राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहती है। इसे चर्मणवती, कामधेनु और नित्यवाही नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 1051 किलोमीटर है। इस नदी पर कुल चार बांध बने हैं। ये नदी हमारे राज्य में अवनालिका अपरदन सबसे अधिक करती है। ये हमारे राज्य की बाहु क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। इस नदी पर ही कोटा जिले में हैंगिंग ब्रिज का निर्माण भी किया गया है। तो साथियों, अन्य नदियों को जानने से पहले आइए एक बार फिर चलते हैं रंगमंच की दुनिया में और सुनते हैं फिल्म टू स्टेटस का ये गीत।

मित्रों, हम बात कर रहे थे हमारे राज्य की प्रमुख नदियों की, जैसे बनास नदी। श्रोताओं, ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसे वर्णाशा, वशिष्ठी व वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलकर स्वाई माधोपुर जिले के रामेश्वर घाट के निकट चंबल में मिल जाती है। इसी नदी पर टोंक जिले में बिसलपुर बांध भी बना है, जो हमारे राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। ये हमारे राज्य का एकमात्र कंक्रीट से बना बांध है। बेडच नदी। दोस्तों, ये नदी गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है और भीलवाड़ा जिले के बिंगोद के पास बनास में मिल जाती है। इस नदी को आयड़ नदी के नाम से भी जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ जिले में अपावास गांव के निकट इस नदी पर घोसुंडा बांध भी बना हुआ है। लूणी नदी। साथियों, ये नदी पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। ये अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है और इसके उद्गम स्थल पर इसको सागरमती, पुष्कर के निकट साकरी, जालोर में रेल या नाड़ा, फिर सरस्वती और बाद में लूणी कहते हैं। इसका जल बालोतरा तक मीठा व बाद में खारा होता है। इसे मीठी खारी नदी व मरुस्थल की गंगा भी कहा जाता है। कालिदास ने इस नदी को अंतः सलीला भी कहा है। जवाई नदी। श्रोताओं, ये नदी पाली जिले से निकलती है। इस नदी पर सुमेरपुर पाली में जवाई बांध बना है, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। इस बांध को सई बांध उदयपुर से जलापूर्ति की जाती है। तो दोस्तों, बातें और भी करेंगे। आइए अब चलते हैं संगीत की दुनिया में और सुनते हैं फिल्म जीत का ये गीत।

दोस्तों, आइए अब बात करते हैं टुडेज हिस्ट्री यानी आज के इतिहास की। श्रोताओं, आज ही के दिन सन 1633 में महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली को रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा अपने इस दृष्टिकोण को वापस लेने के लिए मजबूर किया गया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। 22 जून के दिन ही सन 1939 में स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी। आज ही के दिन सन 2005 में पूरा इराक विश्व धरोहर सूची में शामिल भी हुआ था। मित्रों, 22 जून के दिन ही सन 2007 में सुनीता विलियम्स अपनी टीम के साथ धरती पर लौटी थी। आज ही के दिन सन 1900 में भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी गणेश घोष का जन्म भी हुआ था। 22 जून के दिन ही सन 1932 में भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता और खलनायक अमरीश पुरी का जन्म हुआ था। तो साथियों, युववाणी कार्यक्रम के आखिर में आइए अब चलते चलते सुनते हैं फिल्म राजा का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युगवाणी, हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरत कर से मीडियम पे 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर बोल रहे हैं। संध्या के 6 बजे हैं। लीजिए हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय सुनिए।

पहले सुनिए हमारे आज के दिन प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। संध्या 7 बजे ग्रामीण परिवार अपना कार्यक्रम सुनेंगे चौपाल। इस कार्यक्रम में आज विभिन्न खेतीबाड़ी से संबंधित और अन्य समसामयिक चर्चाओं के अलावा डॉक्टर लोकेश जैन की वार्ता होगी ग्वार की उन्नत खेती। इसके अलावा नशा, जीवन का नाश, खेत में कंपोस्ट खाद की उपयोगिता, सिंचाई पानी की बचत और मौसम तथा बाजार भाव। गीत और भजन रोजाना की तरह इस कार्यक्रम में आप सुनी पाएंगे। संध्या 7:45 पर कुछ फिल्में, गाने और रात 8 बजे फिल्म संगीत का ही हमारा कार्यक्रम एक ही फिल्म से आप सुनेंगे। रात को 10:30 पर कुछ और फिल्मी गाने आपके लिए होंगे। इसके अलावा रात 9:15 पर सुगम संगीत कार्यक्रम में चंद गजलें आपके लिए प्रसारित की जाएगी। आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रात 10:00 कार्यक्रम होगा खेल जगत।

लीजिए अब सुनिए कल के दिन प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य मुख्य कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। सवेरे 6:10 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, तत्पश्चात 6:45 पर आप चिंतन सुनेंगे। किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम होगा खेतीना वास्ते सवेरे 7:10 पर। जानकारी का विषय रहेगा असली नकली खाद की पहचान। संध्या 7:20 पर रामचरितमानस का सस्वर पाठ मानस गान आप सुनेंगे। कल आप सुनेंगे भाग संख्या 283 का पाठ।

कल सवेरे 9:10 पर राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल आप सुनेंगे। कलाकार रहेंगी सुलोचना खमीर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सवेरे 9:30 पर और थीम पर आधारित कार्यक्रम गा मेरे मन गा सवेरे 10 बजे आप सुनेंगे।

रात 10 बजे होगा। ये दोनों कार्यक्रम श्रीपाल सारस्वत पेश करेंगे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। समय है सराय।

कल के दिन प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों में एक ही शीर्षक से कार्यक्रम होगा दिन में 12:05 पर, खेत खलियान कार्यक्रम दिन में 12:50 पर, और महिलाएं अपना कार्यक्रम सुनेंगी घर आंगन दिन में 1:05 पर। युवा श्रोताओं के लिए युवाणी कार्यक्रम संध्या 5 बजे होगा। युवाणी में कल यूथ आउटरीच कार्यक्रम की विजेता का रिकॉर्डेड कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम पेश करेंगी अंकिता सिहाग। चौपाल कार्यक्रम में संध्या 7 बजे चर्चाओं के अलावा राजस्थानी लोकगीत लोक भजन आप सुनेंगे। गोरबंद कार्यक्रम कल रात 9:15 पर और गीत गंगा का प्रसारण

थबदा हाल भला तू के जाने, हाल भला तू के जाने किंज दिल ते सजना बीती है। हाल भला तू के जाने किंज दिल ते सजना बीती है। वंसी दी तान सुनाई ना मुकी रात तेरे दर मेडी है। वंसी दी तान सुनाई ना मुकी रात तेरे दर मेडी है। झट मूँह वाला के खिसक गयो असा सबर दी घुट्टी पीती है। झट मूँह वाला के खिसक गयो असा सबर दी घुट्टी पीती है। ए दिल तेडा, ए दिल तेडा साड़ी जान तेरी जिंदड़ी ना तेडे कीती है। चित चोर सजन मेडा सांवल सा, चित चोर सजन मेडा सांवल सा तेरे नाम दी घुट्टी पीती है। राती बेराती बह बह के, राती बेराती बह बह के तेरे नाम दी माला कीती ए। सुन ताने मंदे लोकां दे असा आह ना हिक वी कीती ए। सुन ताने मंदे लोकां दे असा आह ना हिक वी कीती ए। मेरे

0: यह आकाशवाणी सूरतगढ़ है। संध्या के 6:30 हुए हैं। अब आप आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: क्या जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
2: आरबीआई कहता है
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने हर नागरिक तक न्याय की पहुंच अधिक सुलभ और मजबूत करने के लिए दिशा 2.0 को मंजूरी दी। इस योजना को 5 साल के लिए लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नीति आयोग के सदस्य केवी राजू के साथ बैठक कर जिला आधारित विकास मॉडल पर चर्चा की। राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी पर विधेयक बनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने कहा, कोटा, बीकानेर और जोधपुर प्रसूता मामले अलग अलग हैं, इन्हें एक दूसरे से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने दिशा 2.0 योजना को मंजूरी दे दी है। ये कार्यक्रम इस साल 1 अप्रैल से 31 मार्च 2031 तक 5 साल तक की अवधि के लिए नए रूप में लागू किया जाएगा। 255 करोड़ रुपए की वित्तीय परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य हर नागरिक तक न्याय की पहुंच सुलभ और मजबूत बनाना है। ये देश के 16 सतत विकास लक्ष्यों की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाती है। इसे विकसित भारत 2047 के विजन से भी जोड़ा गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अनुसार दिशा 2.0 में प्रौद्योगिकी सक्षम न्याय वितरण के लिए विधि संजीवनी नाम का नया घटक पेश किया गया है। टेली लॉ के जरिए ग्राम पंचायत स्तर पर वीएलई की ओर से 2.5 लाख सामान्य सेवा केंद्रों के नेटवर्क से सभी लोगों को मुकदमों से पहले मुफ्त कानूनी सलाह दी जाएगी। साथ ही कानूनी जागरूकता और साक्षरता के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन अभियान चलाए जाएंगे। नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की आज बैठक हो रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कर रहे हैं। इसमें समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग ले रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां बैठक का मुख्य विषय है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा जोखिमों में नई तकनीक की भूमिका पर चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर केवी राजू की मौजूदगी में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री निवास पर हुई इस बैठक में विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करने के लिए जिला आधारित विकास मॉडल पर चर्चा की गई। इसके तहत हर जिले में आकांक्षी उपखंडों को जोड़ते हुए स्थानीय आवश्यकताओं और संसाधनों के अनुरूप विकास योजनाएं बनाने की बात कही गई। इससे आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार बढ़ सकेगी, साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार और निवेश के अवसर मिलेंगे। वन मंत्री संजय शर्मा ने सीएसआर निवेश से संरक्षित वन क्षेत्रों में विकास पर जोर दिया है। श्री शर्मा आज सवाईमाधोपुर में राज्य स्तरीय सीएसआर कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वन विभाग और कॉरपोरेट क्षेत्र की साझेदारी से वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता और इको टूरिज्म पर अच्छा काम किया जा सकता है। 2 दिन के इस कॉन्क्लेव में राज्य के संरक्षित वन क्षेत्रों में सीएसआर के माध्यम से किए जाने वाले कामों पर चर्चा की जा रही है। राजस्थान एटीएस ने जयपुर से जैश ए मोहम्मद से कथित रूप से जुड़ी एक महिला को गिरफ्तार किया है। मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर पकड़ी गई बबीता धाकड़ उर्फ खदीजा नाम की ये महिला सवाईमाधोपुर जिले की मूल निवासी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार ये लंबे समय से देश विरोधी नेटवर्क के लिए काम कर रही थी। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि UAPA एक्ट के तहत गिरफ्तार कर आरोपी महिला को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 27 जून तक रिमांड पर भेज दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने आज जयपुर में समान नागरिक संहिता यूसीसी को लेकर प्रेस वार्ता की। श्री पटेल ने कहा कि इससे समानता की भावना को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही भेदभाव को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा

0: कि राज्य सरकार ने यूसीसी लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए विधेयक लाने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है।
1: राजस्थान सरकार नागरिक संहिता कानून बनाने हेतु एक विशेषज्ञों की कमेटी का गठन किया है। उसमें माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई सेवा निवृत्त उच्चतम न्यायालय की न्यायाधिपति रही है, वो हमारी इस कमेटी की अध्यक्ष रहेगी और इस कमेटी का गठन विधिवत पूर्व में ही किया जा चुका है और उनसे अपेक्षा की गई बहुत जल्दी से जल्दी इस कानून पर सभी तरह का मंथन कर ये राजस्थान समान नागरिक संहिता बना करके पेश करें।
0: वहीं श्री बेढम ने कहा कि यूसीसी संविधान के अनुरूप है, ये लैंगिक समानता की दिशा में भी अहम है।
2: भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति वो महिला हो या पुरुष हो उनको समान नागरिक संहिता लागू हो जिससे सभी वर्गों सभी धर्मों और सभी लोगों को एक कानून मिलेगा तो एक जैसी सुविधाएं व्यवस्थाएं उनके अधिकार सुनिश्चित हो। समान नागरिक संहिता यूसीसी राजस्थान के लिए लागू हो इसके लिए विधेयक बनाने के लिए कमेटी का गठन किया है।
0: चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने कहा है कि जोधपुर के पावटा सैटेलाइट अस्पताल में प्रसूताओं के उपचार में पूरी गंभीरता बढ़ती जा रही है, विशेषज्ञों की देखरेख में उनका इलाज किया जा रहा है। मीडिया से बातचीत में चिकित्सा मंत्री ने कहा कि कोटा बीकानेर और जोधपुर के मामले अलग अलग हैं, इन्हें एक दूसरे से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।
3: इंजेक्टेबल्स जो अभी जोधपुर के अंदर मार्केट से जो ये ला रहे हैं जो 25% अलाउड है उसकी जांच करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसका जो है हम उस पे कड़ी निगरानी रख रहे हैं क्योंकि ब्लीडिंग और इंजेक्टेबल्स और थोड़ा डिहाइड्रेशन जो गर्मी पड़ रही है और जो ये दो तीन चीजें ही हैं। तो हमारी डॉक्टर्स की टीम, मैंने जयपुर में भी गायनेकोलॉजिस्ट को और इनको बुलाया, डॉक्टर्स को बुला के हमने बैठ के बात करी तो सब पॉइंटर्स जिन्हीं पे आ रहे हैं ये बहुत गंभीर विषय है जिसका एम्स की टीम ने भी जांच कर ली और हम भी जांच।
0: प्रसूताओं के स्वास्थ्य को लेकर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर बीएस जोधा और अन्य डॉक्टरों के साथ बैठक की। मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज अपने आवास पर जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने लोगों की परिवेदनाएं सुनी और उचित समाधान का आश्वासन दिया। मीडिया से बातचीत में श्री दिलावर ने कहा कि नए शैक्षणिक सत्र के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जुलाई के पहले सप्ताह तक सभी विद्यालयों में शिक्षक लगाने के प्रयास किए जाएंगे।
4: 1 जुलाई को ही कोशिश करेंगे कि हम सबको शिक्षक मिल जाएं और 1 जुलाई को नहीं तो कम से कम 10 जुलाई तक तो सबको शिक्षक मिल जाएंगे और किसी प्रकार की समस्या न होगी। हमारा प्रयास ये रहेगा कि सभी विद्यालयों में समान रूप से शिक्षक हो जाएं।
0: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष हनुमान सिंह राठौड़ ने आज अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने बोर्ड के 41वें मुखिया के रूप में कमान संभाली। बोर्ड प्रशासक शक्ति सिंह राठौड़ ने उन्हें चार्ज सौंपा। श्री राठौड़ ने मीडिया से बातचीत में विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए नई शिक्षा नीति के समुचित क्रियान्वयन पर जोर देने की बात कही।
5: इस समय 2 प्रकार की योजनाएं हैं, कि हमारे राजस्थान के परिवेश के अनुसार विद्यार्थियों का शैक्षिक उन्नयन किस प्रकार से हो, दूसरा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा ये विद्यार्थी काल से किस प्रकार उनके अंदर और प्रेषित की जाए कि वो विद्यार्थी आगे चलकर अपने देश के लिए अपने समाज के लिए हितकारक नागरिक के रूप में वो निकल कर आए, तो केवल परीक्षा परिणाम नहीं तो साथ में उनका भौतिक शैक्षिक आध्यात्मिक ये सब प्रकार का उन्नयन कैसा हो इस प्रकार का प्रयत्न सबके सहयोग से करेंगे।
0: राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्य पद पर नियुक्त हुए डॉक्टर संतोष आनंद ने निष्पक्ष परीक्षा को अपनी पहली प्राथमिकता बताया है। श्री आनंद वर्तमान में भीलवाड़ा के माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में काम कर रहे हैं। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि वे जल्दी ही आरपीएससी सदस्य के रूप में पदभार संभालेंगे।
6: प्राथमिकता ये है कि राजस्थान भर के जितने बच्चे मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उनको अपनी मेहनत के अनुरूप और उनकी योग्यता के अनुरूप उनका स्थान मिले, ये हमारी सबसे प्राथमिकता रहेगी। समय पर कैलेंडर हमने जारी कर चुकी है, आरपीएससी कैलेंडर के अनुसार सारे काम हो रहे हैं, इसमें कोई इफ और बट और कोई प्रश्न चिन्ह नहीं।
0: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 के अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिकाएं ऑनलाइन देखने और डाउनलोड करने का मौका दिया है। आयोग सचिव ने बताया कि इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी 6 जुलाई से 27 जुलाई तक आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक

0: एमएल गर्ग ने आज राज्य के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास से भेंट की। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए सावंत भी मौजूद रहे। भेंट में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। सीकर जिले के रामगढ़ सेठान क्षेत्र में आज सुबह एक सड़क हादसे में दो लोगों की मृत्यु हो गई, वहीं एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। रामगढ़ सेठान थानाधिकारी प्रकाश चंद्र ने बताया कि दुर्घटना सड़क किनारे खड़े ट्रोली और तेज रफ्तार ट्रेलर के बीच टक्कर से हुई। घायल व्यक्ति को चूरू रेफर किया गया है। उधर श्रीगंगानगर के सत्यम नगर में एक निर्माणाधीन भवन में करंट लगने से आज दो श्रमिकों की मृत्यु हो गई। आज विश्व ऊंट दिवस है। ये दिन दुनिया के कई हिस्सों में आजीविका के लिए ऊंटों के महत्व को बताता है। रेगिस्तान का जहाज कहा जाने वाला ये जीव शुष्क क्षेत्रों का महत्वपूर्ण पशुधन है और भारत का गर्व माना जाता है। सहन शक्ति और सेवा का प्रतीक ऊंट लाखों लोगों के जीवन का सहारा है। ये कई दिनों और हफ्तों तक बहुत ही कम पानी के साथ जीवित रह सकता है और इसीलिए इसे रेगिस्तानी यात्रा के लिए आदर्श माना जाता है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ऊंट को संस्कृति और परंपराओं का वाहक बताते हुए लोगों से इसे अपना आदर्श साथी मानने का आग्रह किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने हर नागरिक तक न्याय की पहुंच अधिक सुलभ और मजबूत करने के लिए दिशा 2.0 को मंजूरी दी। इस योजना को 5 साल के लिए लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नीति आयोग के सदस्य केवी राजू के साथ बैठक कर जिला आधारित विकास मॉडल पर चर्चा की। राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी पर विधेयक बनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने कहा, कोटा, बीकानेर और जोधपुर प्रसूता मामले अलग अलग हैं, इन्हें एक दूसरे से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से भरतपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख शिव कुमार वशिष्ठ ने तैयार किया है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भरतपुर में जिला स्तरीय समारोह विश्वप्रिय शास्त्री पार्क में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री सुरेश सिंह रावत मुख्य अतिथि रहे। इसके अलावा ब्लॉक और पंचायत स्तर पर भी योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान विभिन्न योगासन और प्राणायाम कराए गए। कार्यक्रम में विभिन्न जनप्रतिनिधियों के साथ आम जन ने भाग लिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर के बंद बारेठा पहुंचकर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने बंद बारेठा की पाल का निरीक्षण किया और परियोजना के विस्तार कार्यों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने बरसात के दौरान जल भराव की समस्या से निपटने के लिए बेहतर योजना बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई कर लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के निर्देश दिए। सहकारिता विभाग की शासन सचिव और जिला प्रभारी सचिव आनंदी ने भरतपुर का दौरा कर अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने बजट घोषणाओं के कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुँचाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागों के बीच समन्वय के साथ गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान देने को कहा। संभागीय आयुक्त नलिनी काठोतिया ने संभाग स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक आयोजित की। बैठक में बरसात से पहले सड़कों की मरम्मत, विभागीय समन्वय और उद्योगों तथा आमजन से जुड़ी समस्याओं के समाधान पर चर्चा की गई। उन्होंने विद्युत संबंधी शिकायतों का समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। विश्व पर्यावरण दिवस पर निर्वाचन विभाग की ओर से एक पेड़ लोकतंत्र के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके तहत सरकारी और निजी संस्थानों, कार्यालयों तथा सार्वजनिक स्थानों पर पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में भरतपुर को पायलट परियोजना में शामिल किया गया है। स्किल डेवलपमेंट फॉर यू कार्यक्रम के तहत युवाओं की क्षमता और स्थानीय जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारत सरकार के कौशल विकास मंत्रालय के सलाहकार डॉक्टर आई बी सुब्बा राव ने अधिकारियों के साथ बैठक कर वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने युवाओं का डाटा तैयार कर उनकी रुचि और स्थानीय रोजगार की संभावनाओं के अनुसार प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। महिला और बाल विकास विभाग की ओर से ब्लॉक स्तर पर नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम आयोजित किए गए। ग्राम पंचायतों में विकास और जन कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में सैन्य और प्रशासनिक अधिकारियों की समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आपदा प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और विभिन्न विभागों के बीच

0: समन्वय पर चर्चा की गई। आमजन को राहत देने के लिए जिले में ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में पट्टे, नामांतरण, निर्माण स्वीकृति, उपयोग परिवर्तन, प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना सहित अनेक कार्य किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर और शहर में वार्ड स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं। जल संसाधन मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री सुरेश सिंह रावत ने वैर उपखंड के सरसेना गांव और भरतपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय में आयोजित सेवा शिविरों का निरीक्षण किया। सूचना और जनसंपर्क कार्यालय में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं तथा उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। प्रदर्शनी में किसान कल्याण, आयुष्मान भारत, पक्के आवास, सैन्य सुविधाओं और अन्य योजनाओं से संबंधित जानकारी चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित की गई। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग की ओर से जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। महात्मा गांधी वेटनरी कॉलेज में आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 500 युवाओं, विद्यार्थियों और किसानों ने भाग लिया। कृषि वैज्ञानिकों ने मिट्टी स्वास्थ्य, जैविक खाद, जल संरक्षण और फसल विविधीकरण से संबंधित जानकारी दी तथा किसानों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने शहर में जल निकासी व्यवस्था से जुड़े कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने मुख्य ड्रेन के निर्माण कार्य की प्रगति और गुणवत्ता की समीक्षा की तथा बरसात से पहले जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। उन्होंने भरतपुर अचनेरा फोरलेन सड़क चौड़ी करने के काम का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। इसी के साथ भरतपुर जिले की चिट्ठी समाप्त होती है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है सिंझा बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहली खास समाचार, केंद्र सरकार हर नागरिक तई न्याय रिपूक बत्तीवू बत्ती सुलभ करावण सारू 2.0 ने मंजूरी दी। योजना ने 5 साल माए लागू करी जायला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नीति आयोग रा सदस्य केवी राजू रे साथ बैठक करने जिला आधारित विकास मॉडल माथे चर्चा करी। राज्य सरकार समान नागरिक संहिता UCC माथे विधेयक बनावण ने उच्च स्तरीय समिति बनाई। और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर कयो कोटा बीकानेर और जोधपुर प्रसूता मामला न्यारा न्यारा है आने एक दूजाऊ जोड़ने नहीं देखा जावना चाहिए।

समाचार नरे साथ है मैं शंभु सिंह और अब समाचार विगतवार। केंद्र सरकार दिशा 2.0 योजना ने मंजूरी दे दी है। वो कार्यक्रम इन साल पहली अप्रैल 31 मार्च 2031 ताई 5 साल तैयारी अवधि रह सारू नुआ रूप में लागू करो जाएगा। 255 करोड़ रुपया रा वित्तीय परिवहन वाली ई योजना रो मकसद हर रहवासी ताई न्याय री पहुँच सुलभ और मजबूत बनावनो है। आ देश रा 16 सतत विकास लक्ष्यों की प्रतिबद्धता ने आगे बढ़ावे है। इनने विकसित भारत 2047 रा विजन हुई जोड़ी जा है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मुजब दिशा 2.0 माए प्रौद्योगिकी सक्षम न्याय वितरण सारू विधि संजीवनी नाम रो नुओ घटक पेश करी जो है। टेली लोरी मार्फत ग्राम पंचायत थर माथे VLE कानियों 2.5 लाख सामान्य सेवा केंद्रा रा नेटवर्क रू सगड़ा लोगों ने मुकदमा माए पहला मुफ्त कानूनी सलाह दी जाएगा। साथ ही कानूनी जागरूकता और साक्षरता सारू ऑनलाइन और ऑफलाइन अभियान चलाया जाएगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स रा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA री आज बैठक हुई। दो दिन री ई बैठक री सदारत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कर रिया है। इनमें समूह 11 सदस्य देशों रा सुरक्षा प्रमुख हिस्सों ले रिया है। आ देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिणी अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात भेड़ा है। अबार माए गैर पारंपरिक हिफाजती चुनौतियां बैठक रो खास मुद्दों है। इनमाए राष्ट्रीय हिफाजत रा खतरा ने तेजी बदलता स्वरूप और उभरता सुरक्षा जोखिमा माए नई तकनीक री भूमिका माथे चर्चा करी जावे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज नीति आयोग रा सदस्य प्रोफेसर KV राजूरी मौजूदगी माए अहलकारा रे साथ मीटिंग करी। मुख्यमंत्री रेवास माते हुई ई बैठक माए विकसित राजस्थान रा संकल्प ने पूरो करण सारू जिला आधारित

0: विकास मॉडल माथे चर्चा करी जी। इन रे तहत हर जिला में आकांक्षी उपखंडा ने जोड़ता स्थानीय जरूरत और संसाधन मुजब विकास योजना में बनाने की बात कही जी। आमाय माली गतिविधियां री रफ्तार बद सकेला, साथ ही स्थानीय थरमाथे रोजगार और निवेश रा मौका मिलेला। जंगलात महकमा रा मंत्री संजय शर्मा CSR निवेश ऊँ संरक्षित वन हल्का माए विकास माथे जोड़ दियो है। श्री शर्मा आज सवाई माधोपुर माए राज्य थर रा CSR कॉन्क्लेव रा उद्घाटन सत्र माए बोल रहा हा। वना कहो के जंगलात महकमो और कॉरपोरेट हलकारी साझेदारियों, वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता और इको टूरिज्म माथे चोखो काम करियो जा सके है। दो दिन रा ई कॉन्क्लेव माए राज्य द्वारा संरक्षित वन हल्का माए CSR री मार्फत करिया जावन वाला काम माथे चर्चा करी जावे। राजस्थान ETS जयपुर जैश ए मोहम्मद री कथित रूप जुड़ी एक महिला ने गिरफ्तार किया है। मिलिट्री इंटेलिजेंस री सूचना माथे पकड़ी जी बबीता धाकड़ उर्फ खदीजा नामरी आ महिला सवाई माधोपुर जिला री मूल रहवासी है। शुरुआती जानकारी मुजब आ लांबा बगतों देश विरोधी नेटवर्क साथे काम कर रही। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी बतायो के UAPA एक्ट रे तहत गिरफ्तार करी जी आरोपी महिला ने अदालत में पेश करी जा, जेठे उन्हें 27 जून तक रिमांड सारू भेज दी जा है। ए समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम आज जयपुर में समान नागरिक संहिता UCC ने लेर प्रेस वार्ता करी। श्री पटेल कहो कि इन माए समानतारी भावना ने बढ़ावो मिलेला और साथ ही भेदभाव ने कम करण माए मदद मिलेला। राज्य सरकार UCC लागू करण री दिशा में कदम बढ़ावता विधेयक लावण सारू ऊंचा थर्री कमेटी बनाई है।
1: राजस्थान सरकार नागरिक संहिता कानून बनाने हेतु एक विशेषज्ञों की कमेटी का गठन किया। उसमें माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय की न्यायाधिपति रही है, वो हमारी इस कमेटी की अध्यक्ष रहेगी। और इस कमेटी का गठन विधिवत पूर्व में ही किया जा चुका है और उनसे अपेक्षा की गई कि बहुत जल्दी से जल्दी इस कानून पर सभी तरह का मंथन कर ये राजस्थान समान नागरिक संहिता बना करके पेश करें।
0: श्री बेढम कहो कि UCC संविधान मुजब है और लैंगिक समानता री दिशा में अहम है।
2: भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति वो महिला हो या पुरुष हो, उनको समान नागरिक संहिता लागू हो जिससे सभी वर्गों, सभी धर्मों और सभी लोगों को एक कानून मिलेगा तो एक जैसी सुविधाएं, व्यवस्थाएं, उनके अधिकार सुनिश्चित हो। समान नागरिक संहिता UCC राजस्थान के लिए लागू हो, इसके लिए विधेयक बनाने के लिए कमेटी का गठन किया।
0: चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर कहो है कि जोधपुर रा पावटा सैटेलाइट अस्पताल माए प्रसूतावां रा इलाज माए पूरी गंभीरता बढ़ती जा रही है। विशेषज्ञ री देखरेख माए वारो इलाज करियो जावे। मीडिया साथे बतल माए चिकित्सा मंत्री कहो के कोटा, बीकानेर और जोधपुर रा मामला न्यारा न्यारा है, आने एक दूजाऊ जोड़ने नहीं देखा जावना चाहिए।
3: इंजेक्टेबल जो अभी जोधपुर के अंदर मार्केट से जो ये ला रहे हैं, जो 25% अलाउड है, उसकी जांच करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसका जो है हम उसपे कड़ी निगरानी रख रहे हैं क्योंकि ब्लीडिंग और इंजेक्टेबल्स और थोड़ा डिहाइड्रेशन, जो गर्मी पड़ रही है और जो ये दो तीन चीजें ही हैं, तो हमारी डॉक्टर्स की टीम, मैंने जयपुर में भी गायनाकोलॉजिस्ट को और इनको बुलाया, डॉक्टर्स को बुला के हमने बैठ के बात करी, तो सब पॉइंटर्स जिन्हीं पे आ रहे हैं ये बहुत गंभीर विषय है जिसका
0: प्रसूतावारा स्वास्थ्य ने लेर जिला कलेक्टर अशोक रंजन, मेडिकल कॉलेज रा प्राचार्य डॉक्टर BS जोधा और दूजा डॉक्टरों रे साथ मीटिंग करी। मामला री जांच सारू कमेटी बनाई जी है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज आपरा रहवास माते जन सुनवाई करी। ई दौरान वणा लोगा री फरियादा सुनी और वाजिब निपटारा रा आश्वासन दिया। मीडिया साथे बतलमाए श्री दिलावर कहो के नुआ शैक्षणिक सत्र सारू जरूरी तैयारियां करी जा रही है। वना कहो के जुलाई रा पहला हफ्ता ताई सगली स्कूला माए शिक्षक लगावन री कोशिश करी जावे।
4: एक जुलाई को ही कोशिश करेंगे कि हम सबको शिक्षक मिल जाएं और एक जुलाई को नहीं तो कम से कम 10 जुलाई तक तो सबको शिक्षक मिल जाएंगे और किसी प्रकार की समस्या न होगी। हमारा प्रयास ये रहेगा कि सभी विद्यालयों में समान रूप से शिक्षक हो जाएं।
0: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रा नुआ अध्यक्ष हनुमान सिंह राठौड़ आज अध्यक्ष रा

0: दौ संभाली लियो। वणा बोर्ड रा 41वा मुखिया रा रूप में कमान संभाली। बोर्ड रा प्रशासक शक्ति सिंह राठौड़ वाने कामकाज सौंपियो। श्री राठौड़ मीडिया साथ बतलमाए पढ़ेसरा रा समग्र विकास सारू नवी शिक्षा नीति रा वाजिब क्रियान्वयन माथे जोर देवन री बात कही।
1: इस समय दो प्रकार की योजनाएं हैं कि हमारे राजस्थान के परिवेश के अनुसार विद्यार्थियों का शैक्षिक उन्नयन किस प्रकार से हो। दूसरा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा ये विद्यार्थी काल से किस प्रकार उनके अंदर और प्रेषित की जाए कि वो विद्यार्थी आगे चलकर अपने देश के लिए अपने समाज के लिए हितकारक नागरिक के रूप में वो निकल कर आए। तो केवल परीक्षा परिणाम नहीं तो साथ में उनका भौतिक शैक्षिक आध्यात्मिक ये सब प्रकार का उन्नयन कैसा हो, इस प्रकार का प्रयत्न सबके सहयोग से करेंगे।
0: राजस्थान लोक सेवा आयोग माय सदस्य ओदा माते नियुक्त हुआ डॉक्टर संतोष आनंद निष्पक्ष परीक्षा ने पहली प्राथमिकता बताया है। श्री आनंद अबार माय भीलवाड़ा रा माणिकीलाल वर्मा राजकीय कॉलेज रा प्राचार्य रूप माय काम कर रिया है। खबर नवीसा साथे बतलमाय वणा कयो के वे बेगाई आरपीएससी सदस्य रा रूप माय ओ दो संभाल लेवेला।
2: प्राथमिकता ये ही के राजस्थान भर के जितने बच्चे मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उनको अपनी मेहनत के अनुरूप और उनकी योग्यता के अनुरूप उनका स्थान मिले, ये हमारी सबसे प्राथमिकता रहेगी। समय पर कैलेंडर हमने जारी कर चुकी है, आरपीएससी कैलेंडर के अनुसार सारे काम हो रहे हैं, इसमें कोई इफ और बट और कोई प्रश्न चिन्ह नहीं।
0: बीएसएफ रा महानिरीक्षक एमएल गर्ग आज राज्य रा मुख्य सचिव वी श्रीनिवास रे साथे मिलिया। ई दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर सामंती मौजूद रिया। ई मुलाकात में न्यारा न्यारा मुद्दा माथे चर्चा करी जी। सीकर जिला रा रामगढ़ सेठान हल्का में आज सवारा एक सड़क हादसा में दो लोगों की मौत वेगी वठे एक दूजो घायल वे गयो। रामगढ़ सेठान थाना अधिकारी प्रकाश चंद्र बतायो के हादसों सड़क रे किनारे खड़ा ट्रोला रे तेज रफ्तार ट्रेलर बीच टक्कर वियो, घायल ने चूरू रेफर करी जा है। उठने श्री गंगानगर रा सत्यम नगर माए एक नुआ बन रहा भवन माए करंट लागणु दो लोगों की मौत वेगी। अरबे मौसम राज्य में लाड़ला कुछ दिनों चल रही प्री मानसून गतिविधियों लोगों ने हीट वेव और करड़ी गर्मियों आराम मिल रियो है। एक रे पछे एक लगातार सक्रिय वेरिया पश्चिमी विक्षोभों कई जिला में आंधी बिरखारो दौर बनियोड़ो है। आज ही प्रदेश रा कई हल्का में मौसम रो मिजाज बदलियो रियो। मौसम महकमा मुजब आंधी बिरखारी गतिविधियां जयपुर अजमेर और भरतपुर संभाग में 26 जून तई बनी रहने की आस है। इस दौरान कठे कठे धूल भरी आंधी ही चल सके है। दूजी कानी बीकानेर और जोधपुर संभाग में मौसम साफ रहने की आस है, फिर वहीं कुछ थोड़ा बादल छाए जा रह सके है। न अबे आखिर में खास समाचार आप एक कर फिर सुन ले रहो। केंद्र सरकार हर रहवासी ताई न्यायरी पूग बत्तियों बत्ती सरल और मजबूत करण सारू दिशा 2.0 ने मंजूरी दी। योजना ने 5 साल सारू लागू करी जायला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नीति आयोग रा सदस्य केवी राजू रे साथ मीटिंग करने जिला आधारित विकास मॉडल माथे चर्चा करी। राज्य सरकार समान नागरिक संहिता UCC माथे विधेयक बनावन सारू ऊंचा तरी समिति बनाई। और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर कहो है के कोटा बीकानेर और जोधपुर प्रसूता मामला न्यारा न्यारा है अने एक दूजाओं जोड़ने नी देखा जावना चाहिए जे। एंड रे साथ ही प्रादेशिक समाचारों ओबुलिट नठे पूरो वियो। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 7 बजा चाहते हैं। ये समय है ग्रामीण परिवारों के कार्यक्रम चौपाल का।

चौपाल कार्यक्रम सुनिए सगला किसान परिवारों ने सज्जन भाई की घनी घनी और मोकली मोकली राम राम। किसान भाइयों आपां देखा कि दिनों दिन खर्चा जिका है वह घना होता जान लग रहा है और कमाई जिकी है वह या इं कह लें कि बचत जिकी है वह कम होने लग रही है। पर कई बार आप देखा कि वह बचत भी कोई ऊल फेल कामों में लग जाए तो भी वो बहुत दुख हो है। देखो पीसो कमाणो बहुत ही दोरो है और मेहनतों कमाएड़ो पीसो और उल फेल कामा में लाग जाए कोई गलत काम में लाग जाए तो देखो बहुत ही अच्छी बात को नहीं है बिल्कुल भी। और बाकी देखो आज आप बात करा आप देखा कि भांत भांत का जिका गलत काम है या कई गलत आचरण करन लाग जाए या कोई गलत आदत लाग जाए तो बात करा आप नशे की। नशे सु देखो आप देखा कि कई जिका टावरिया है वह गलत संगति छूँ या कोई और वजह छूँ नशांगी गलत आदतम पड़ जाए तो भी छूँ क्या है कि देखो शरीर खराब हो ही हुआ है और सागे सागे पीछे टक्का को भी नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। और आज के टाइम गया एक बहुत ही गंभीर जिकी

0: किसान भाइयों, सुने अभी आपा भजन। गायकार हा धर्मपाल भारती और खूब भजन सुनायो भाई, गेरी गेरी बिरखा। और बाकी बिरखा का दिन है और बिरखा कटे कटे तो बहुत अच्छी हुई है और बिरखा होगी यार। बात करें खेती पाती की तो देखो आपा बुआई जटे जटे कर सका। मैं भाई किसान भाई आ गए आपने जिका है, खास कर गया आपने जिका टिब्बा क्षेत्र का किसान भाई है, तो आ गया ग्वार की बुआई को टेम आने लाग रही है, तो अच्छी नमी हुआ है तो आपा ग्वार की बुआई आपा कर सका हाँ। और ग्वार की खेती खातर बिंगी उन्नत खेती खातर बिंगी अच्छी अच्छी किस्म कितना भी मैं आपा खाद उर्वरक देवा कितना भी मैं पानी लाग सी, तो इन सगली जानकारी खातर आपा अभी आप सुन छा वार्ता। और गंगानगर से डाक दर्जी है लोकेश जैन जी, तो बांकनु आप लेवा ग्वार की उन्नत खेती के बारे में जानकारी। आओ सुना लियो सुनो सा।
1: नमस्कार। गंवार की उन्नत खेती। गंवार एक महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय फलीदार फसल है जिसे बीज, हरे चारे, हरी खाद, गोंद और सब्जी के लिए उगाया जाता है। इसका चारा और दाना दोनों ही पौष्टिक होते हैं। इसके दाने में 15-18% प्रोटीन, 25-30% रेशा, खनिज, वसा और भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यह अपनी सूखारोधी क्षमता और मिट्टी को सुधारने वाले गुणों के लिए जानी जाती है। सूखा सहने की क्षमता के कारण यह वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए चारे की एक बहुत ही कीमती फसल है। गंवार पशुओं के लिए एक बहुत ही पौष्टिक फलीदार चारा है। इसकी सूखी फलियां और छिलके को पशु बड़े चाव से खाते हैं। दलहनी फसल होने के कारण यह राइजोबियम जीवाणुओं द्वारा वायुमंडलीय नत्रजन को मृदा में स्थिरीकरण करने की क्षमता रखती है, जिससे मृदा की गुणवत्ता व उत्पादकता बढ़ती है। दुनिया भर में भारत में गंवार सबसे बड़ा उत्पादक देश है और राजस्थान राज्य देश के कुल गंवार का लगभग 70% उत्पादन करता है। इसके अलावा गंवार हरियाणा, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र आदि राज्यों में उगाई जाती है। गंवार के इष्टतम विकास के लिए गर्म व शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। गंवार की खेती को कम बारिश वाले क्षेत्रों में जहां औसतन 300 से 400 मिलीमीटर बारिश होती है, वहां सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। बीज के बेहतर अंकुरण के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे अच्छा रहता है। इसमें फूल व फलियां बनते समय शुष्क वातावरण और कम नमी की आवश्यकता होती है। खेत का चुनाव। गंवार की खेती सभी प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है। अच्छी जल निकास वाली मध्यम से हल्की रेतीली दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 7 से 8 के बीच में हो, इसके लिए बहुत उपयुक्त होती है। जिसमें पानी भरा रहता हो वहां गंवार नहीं बोना चाहिए। गंवार की खेती सिंचित, असिंचित और दोनों ही परिस्थितियों में की जा सकती है। वर्षा के बाद 1-2 जुताई एवं सुहागा लगाकर खेत तैयार कर लेना चाहिए ताकि घास फूस नष्ट हो जाए। गंवार की उन्नत किस्मों में कर्ण गंवार 1, यह किस्म 2018 में अधिसूचित की गई थी तथा दाने व चारे के लिए उपयुक्त है। यह किस्म कम अवधि 82 से 92 दिन में पक जाती है। इसकी बीज दर 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर एवं औसत उपज लगभग 11 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है। यह किस्म जीवाणुओं, पर्ण, झुलसा रोग, जड़ गलन रोग के प्रति सहनशील है तथा इसमें कीट एवं पतंगों का प्रकोप भी कम होता है। कर्ण गंवार 14 वर्ष 2022 में अधिसूचित यह किस्म विशेष रूप से राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए विकसित की गई है। यह किस्म 90 से 95 दिन में पक जाती है और इसकी उपज क्षमता लगभग 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। यह किस्म बैक्टीरियल ब्लाइट और अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट आदि रोगों के प्रति सहनशील है। इसमें सूखा सहन करने की भी क्षमता पाई जाती है। RGC 1033 यह 95 से 105 दिन में पककर तैयार होने वाली किस्म है। इसका पौधा शाखादार व पत्तियां खुरदरी, पत्तियों के सिर कम कटाव वाले होते हैं। यह किस्म का पौधा 113 सेंटीमीटर तक ऊंचा होता है। फूल हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। फली के दानों का उभार स्पष्ट दिखाई देता है। इसके दाने सलेटी रंग के मध्यम मोटे होते हैं तथा इसकी औसत पैदावार 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक है। HG2-20 यह किस्म का पौधा मध्यम ऊंचाई अधिक शाखाओं वाला होता है, जिसमें फूल 40

से 50 दिन में बनते हैं। इसके पकने की अवधि 120 दिन की है तथा औसत उपज 12 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। RGC 1002 यह 80 से 90 दिन में पककर तैयार होने वाली अति शुष्क व कम वर्षा व पानी के अच्छे निकास वाली मिट्टी के लिए तथा गंवार पैदा करने वाले संपूर्ण क्षेत्र के लिए उपयुक्त किस्म है। इसका पौधा अत्यधिक शाखादार व पत्तियों के किनारे दांतेदार होते हैं। इसकी फली 4.5 से 5 सेंटीमीटर लंबी होती है। 100 दानों का वजन 3.1 से 3.5 ग्राम तक तथा औसत पैदावार 10 से 13 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। HG 365 इस किस्म का पौधा छोटा होता है। यह एक शीघ्र पकने वाली किस्म है। यह किस्म 85 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है तथा इसकी औसत उपज 12 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। इसके दानों में गोंद की मात्रा 30% तक पाई जाती है। बीज की मात्रा एवं बुआई की विधि। बुआई की परिस्थितियों के अनुसार 16 से 20 किलो बीज प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें। गंवार की बुआई बीज सह उर्वरक ड्रिल या दो पोरों से करनी चाहिए और कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। नहरी सिंचित क्षेत्र के लिए गंवार में ज्योमिति कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर पर बिजाई करें और बीज की दर 12 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपयोग लें। बीज को 4 से 6 सेंटीमीटर से ज्यादा गहरा नहीं बोना चाहिए। बीज उपचार। बेहतर जड़ ग्रंथियों के निर्माण के लिए राइजोबियम और फास्फोरस गोलक जीवाणु पाउडर के 3 पैकेट 1 हेक्टेयर क्षेत्र के बीज को बुआई से पूर्व उपचार कर बोने से नत्रजन व फास्फोरस उर्वरकों की बचत की जा सकती है। अन्य दलहनी फसलों की भांति गवार को भी राइजोबियम जीवाणु कल्चर से उपचारित कर बुआई करने से पैदावार में बढ़ोतरी पाई गई है। बीज को कैप्टान या थायरम से 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। खाद एवं उर्वरक। सिंचित क्षेत्रों में बुआई से पहले गंवार के लिए 20 किलो नत्रजन तथा 40 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर ड्रिल करना चाहिए। बारानी गंवार में फास्फोरस की मात्रा आदि प्रयोग करनी चाहिए। सिंचाई। यदि वर्षा का वितरण समान रूप से हुआ है तो फसल को किसी भी प्रकार की सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, अन्यथा 1 या 2 बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ सकती है। बुवाई के 3 या 4 सप्ताह बाद अच्छी वर्षा न हो तो प्रथम सिंचाई 25 से 30 दिन बाद अर्थात फसल की बढ़वार के समय करनी चाहिए। दूसरी सिंचाई अगस्त के 3रे सप्ताह या 60 से 65 दिन की फसल में फलियों में दाना बनते समय करनी चाहिए। निराई गुड़ाई। यदि खेत में खरपतवार हो तो निराई गुड़ाई करना आवश्यक है। ये क्रिया फसल की 1 माह की अवस्था में पूर्ण रूप से संपन्न कर देनी चाहिए। गंवार की फसल में वार्षिक घास और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के प्रभावी नियंत्रण हेतु फेंडामेथालीन 30% EC 750 ग्राम बुआई के 1 से 3 दिन बाद परंतु अंकुरण से पूर्व 400 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर की दर से घोलकर छिड़काव करें। कीट नियंत्रण। गंवार की फसल में प्राय तेला सफेद मक्की तथा चेपा नामक कीट नुकसान पहुंचाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए डाइमेथोएट 30 EC 1000 मिलीलीटर या मिथाइल डेमेटोन 25 EC 1000 मिलीलीटर या मेलाथियोन 50 EC 1200 मिलीलीटर या थायामेथोक्सोम 25 WG 50 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव या भुरकाव प्रति हेक्टेयर की दर से करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार भुरकाव को 15 से 20 दिन बाद दोहराया जा सकता है। कीटों से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कीटनाशकों का इस्तेमाल करने के साथ साथ खेती से जुड़े अन्य शस्य तकनीकों को भी अपनाना चाहिए। सितंबर अक्टूबर के महीने में फसल पर कैटरपिलर नामक कीट का हमला होता है। यह कीट के अंडों के गुच्छे और झुंड में रहने वाले छोटे छोटे लारवा को इकट्ठा करके नष्ट कर देने से इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। रोग नियंत्रण। जीवाणु झुलसा रोग। गंवार में जीवाणु झुलसा रोग अर्थात बैक्टीरियल ब्लाइट की रोकथाम के लिए 10 लीटर पानी में 5 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन का घोल बनाकर बीज को 10 से 15 मिनट तक भिगोकर उपचारित कर बोना चाहिए या खड़ी फसल में 100 लीटर पानी में 20 ग्राम

0: स्टेप्टोसाइक्लिन व कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 200 ग्राम के हिसाब से घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। पत्ती झुलसा रोग, इस रोग के प्रकोप होने पर 100 लीटर पानी में स्टेप्टोसाइक्लिन 5 ग्राम या प्लांटोमाइसिन 50 ग्राम या एग्रीमाइसिन 30 ग्राम के हिसाब से छिड़काव करें। झुलसा रोग रोकथाम हेतु जाइनेप या मेनकोजेब का 0.2% का छिड़काव जुलाई या अगस्त के महीने में करें। जल्द गलन नियंत्रण, गंवार में जल्द गलन की जटिल समस्या के नियंत्रण के लिए बीजों को कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। ट्राइकोडर्मा विरिडी या ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम 2.5 किलो को 100 किलो गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर के दर से उपयोग से 15 दिन पहले भिगो कर छाया में रखें। इसे बिजाई के समय भूमि में देने से इस रोग का प्रभावी नियंत्रण पाया गया है। गंवार में जड़ गलन नियंत्रण के लिए बीज को ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम जैव उर्वरक से 10 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें तथा ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम प्रति हेक्टेयर 200 किलो गोबर की खाद में मिलाकर भी बुआई के समय भूमि में मिला दें। तना गलन, जड़ गलन, चारकोल गलन रोग ग्रसित खेत में मई जून माह में बुआई के करीब एक माह पूर्व सरसों के अवशेष 2.5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालकर पानी लगा दें। गंवार के बीज को बुआई से पूर्व बेसिसलस थ्यूरिनजेंसिस 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीज उपचार भी कर सकते हैं। कटाई एवं घाई, बुआई की परिस्थिति के अनुसार फसल अक्टूबर के अंत से नवंबर तक पकती है। पूरी पकने पर कटाई करके फसल को सुखाने के लिए खेत में छोड़ दें तथा कटी हुई फसल खलिहान में लाकर सुखा लें। वर्षा हो जाने पर फसल अच्छी तरह से न सूखने पर दाना काला पड़ सकता है, इसके लिए फसल को सूखने से सावधानी बरतनी चाहिए। यदि फसल का उपयोग हरी खाद के लिए करना है तो फूल आने की शुरुआत में ही इसे मिट्टी में मिला देना चाहिए, जबकि यदि अनाज के लिए कटाई करनी हो तो फसल को पूरी तरह पक जाने पर कटाई करनी चाहिए। इस प्रकार इन उन्नत शस्य तकनीकियों को यदि हम गंवार की फसल के लिए काम में लेते हैं तो हम लगभग 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गंवार के दाने की उपज प्राप्त कर सकते हैं और लगभग इतनी ही मात्रा में चारे की उपज प्राप्त हो जाती है। धन्यवाद।
1: किसान भाइयों, अभी आप सुनी जानकारी डाकधर जी लोकेश जैन छू, और देखो बहुत ही अच्छी जानकारी दी है वहाँ ग्वार की, अच्छी अच्छी आपने किस्मों के बारे में बतायो और सागे सागे जिका भी कोई कीट है रोग है वंगे प्रकोप छू आप किया रोकथाम बंगे आप कर सका हाँ तो सगली जानकारी बांधी। और किसान भाइयों आप देखा कि फसल चाहे आप कोई भी आप फसल की बुआई करा तो भी मैं देखो दो चीज़ें बहुत ही जरूरी है, एक तो पानी और दूसरा जिका भी खाद उर का आप देवा। और आप देखा कि दिनों दिन रासायनिक जिकी खादा हैं बंग उपयोग जो है वो बहुत ज़्यादा होने लग गयो, तो भी चूँकि है अपने जमीन की जिकी ताकत है वह धीरे धीरे घटन लग गई, और इन खातर आपने रासायनिक खादा की जगह आप कंपोस्ट खाद जिकी है वह काम में लेवा तो वह आपने ज़्यादा फायदेमंद रहे। देखो एक तो वह किसान भाइयों सस्ती है और सागे सागे वह पर्यावरण मित्र भी है, तो भी चूँकि कि आपने जो आसा पासा को जो वातावरण है या फिर आपने या केस कहाँ कि आपने जमीन को जो स्वास्थ्य है और सागे सागे मिन खाँगे स्वास्थ्य खातर भी वह बहुत ही बढ़िया रहे, क्योंकि रासायनिक जिका खाद उर कहे वह मिन खाँगो जो स्वास्थ्य है बिंग ऊपर भी बंगो असर पड़े है। तो यही करके ज़्यादा ज़्यादा आप रासायनिक खादा की जगह कंपोस्ट खाद है बिन आपन काम में लेना चाहिए, तो जिकी जमीन ने पोषण ज़्यादा देवे और खेती जिकी है बिंग में टिकाऊपन भी ज़्यादा रहे। कंपोस्ट खाद की बात करें किसान भाइयों तो आपने जहाँ पशुओं को मलमूत्र है गोबर है बाकी फसलों का अवशेष है सुकेड़ी कोई पत्तियां हैं घास फूस है या खरपतवार है या फिर आपने घरे जिको कचरो हो जी कोई सब्जी का छिलका हो गया तो आँचू आ सगला जिका है पोषक तत्व जिका है कंपोस्ट खाद में आँचू बने तो आँचू आप खाद जिकी है वह तैयार कर सका हाँ। और इचू जमीन की जिकी ताकत है वह तो ज़्यादा हो ही हुआ है और आप इन्हें नियमित रूप से आप इन्हें काम में लेवा तो जमीन के माँ जिका जैविक कार्बन पदार्थ हो है। देखो माटी जिकी है बिंग माँ जैविक कार्बन और अकार्बनिक जिका पदार्थ है वह दो तरह से माटी बने पर जिका जैविक कार्बन हो आप इन्हें कार्बनिक पदार्थ भी बोल दें तो आ चूँकि माटी जिकी बनतर है वह एक तो नरम हो जाए और माटी सागे सागे भुरभुरी हो जाए। और इनको एक और फायदा है किसान भाइयों कि जमीन के माँ पानी रोकने की जिकी क्षमता है बा कंपोस्ट खाद छूँ

किसान भाइयों, सुनो भी आपा गीत और गायो हो शहनाज खान और बंगे साथी जी का। किसान भाइयों, अभी आपा बात करा हा कि आपने खेत गया में आपा कंपोस्ट खाद जी की है ज़्यादा ज़्यादा काम में लेवा, और खेती बाड़ी खातर पानी और खाद उर क्या दो जरूरी चीज़ें हैं। और बात करा पानी की, तो पानी देखो बहुत ही अमूल्य वरदान है, और खेती बाड़ी में पानी बिना तो देखो खेती बाड़ी आप बिल्कुल ही कौन कर सका। पर आप देखने लाग रहे हैं कि दिनों दिन पानी जी को है वो कम होने लाग रहे है, तो यही करके पानी की बचत करनी बहुत ही जरूरी है। और कई जगह प्रगतिशील किसान भाई है, अब तो बात ने समझ है और वह तो नई नई तकनीक अपना रखी है पानी खातर, जिका छूँ वह बिना समझदारी छूँ पानी काम में लेवे और भी कम पानी छूँ ज़्यादा और अच्छी पैदावार लेवे। तो यही करके आप खेत गए में पानी जिको है बिल्कुल ही समझदारी से आप देवा, जितनी जरूरत हो है भी तो ही आप पानी अपने खेत में देना चाहिए। देखो ज़्यादा पानी भी खेत में आपने फसल खातर नुकसानदायक है। ज़्यादा पानी चूंकि एक तो देखो पानी तो आपने खराब हो ही हुआ है, और सागे सागे जिका जमीन में पोषक तत्व हुए बंग और रिसाव हो जाए जमीन का माँ नीचे जी, चूंकि फसलों में कई बार आप देखा कि रोगों प्रकोप भी बहुत ज़्यादा हो जाए। यही करके टेमो टेम जरूरत के अनुसार ही आपने सही टाइम पर आपने पानी की बारी जी की अब खेत में देनी चाहिए। और सागे सागे पानी बचाने खातर किसान भाइयों नई नई तकनीक है, जियाँ टपकाली सिंचाई विधि है या फुहारा सिंचाई विधि है।

भी अपन काम में लेनी चाहिए और यह बहुत ही कामयाब जी तकनीक है, कामयाब विधि है। तो इसमें आपा क्या कि पौधा जड़ा ताई आप पानी सीधो पानी आप मांग में देस कहाँ, और इत रही फुहरा पद्धति में भी आप फुहरा इसमें आप पूरा खेत का माँ जिया बिरखा हुआ बिया या बनावटी बिरखा इतने आप पानी जो को खेत में आप देस कहाँ। और जी अभी आप बात करी कंपोस्ट खाद की, तो कंपोस्ट खाद और जिका जैविक पदार्थ है बनने भी अपन ज़्यादा ज़्यादा काम में लेवा। तो बीच हूँ माटी का माँ जिकी जल धारण करने की क्षमता है, पानी रोकने की जिकी क्षमता है वह ज़्यादा हुए, तो बीच हूँ अच्छा टाइम तई लंबे टाइम तई खेत के माँ पानी का माँ पानी की जिकी मात्रा है नमी की मात्रा है वह बनी रहे। और ज़्यादा नमी होने से फसलों ने टाइमो टाइम नमी मिलती रहे तो फसलों की बढ़वार भी अच्छी हुआ है और बाद में पैदावार भी जिकी है अच्छी हुआ है, और बारी बारी आपने खेत के माँ पानी भी कौन देना पड़े, तो इनको देखो बहुत सारा फायदा है। और सागे सागे किसान भाइयों आप देखा कि पानी वाष्पीकरण से भी पानी जो है उड़ जाए, तो इनमें भी यह तकनीक जी की है बहुत ही कामयाब है। तो किसान भाइयों आज के टाइम ने देखता हूँ, यहाँ देखो आपने खेत के माँ सगला जी का काम है वे नई नई जी की तकनीक है बांगी जानकारी लेके बना अपन काम में लेना चाहिए, तो भी उसको फायदा हुआ और दूसरों जितनी आपने जरूरत हुआ। अब आप देखा कि जी की आप सिंचाई पद्धति जी को खुल्लो आप पानी खेत में लगावा, तो बिंग माँ कई बार क्या है कि आपने फसल में कम पानी की जरूरत हुआ अपन आप कई बार पानी भर के लगा दें, तो देखो बिंगो फायदा अपन कम हो और नुकसान बिंगो ज़्यादा हुआ और सागे सागे पानी जी को है वो भी खराब हुआ। तो इन करके पानी की आपने ज़्यादा से ज़्यादा बचत करनी चाहिए। देखो पानी जी की पानी की तो एक एक बूंद भी जी की अनमोल है, तो ये करके आप पानी बचावा और खेती बचावा और बीच में आगे अपनों आने वाला टाइम है बिना भी आप बचावा, तो ये करके समझदारी से खेत का माँ पानी जी को बचा के और बिना अपन काम में लेना चाहिए, और कम पानी का माँ ज़्यादा फसल आपने पकानी चाहिए जिसमें कि अपनी पैदावार जी की है ज़्यादा हो। तो किसान भाई और बातचीत भी आप करांगा पर पहले सुना है गीत लियो सुनो सा।

किसान भाइयों, सुनियो अभी आपा गीत और गाइडो हो सीमा मिश्रा और मांगे साथियांगो। किसान भाइयों, बाजार भाव और मौसम वाली पानड़ी भी पुगती होगी है, तो पहली बात करा बाजार भावांगी। सूरतगढ़ मंडी के बाजार भावांगी बात करा तो चिणा बिक्या 5401 रुपया और सरसों का भाव रहा 6829 रुपया और ऊंचा में 7287 रुपया और ग्वार बिक्यो 5522 रुपया। गंगानगर मंडी की बात करें किसान भाइयों, तो गंगानगर मंडी में सरसों बिकी 5700 लेगे और 7373 रुपया। चिणा का भाव उगड़िया 5000 और ऊंचा में 5360 रुपया और कणक गई बिकी 2451 2586 रुपया। ग्वार का भाव रहा 5390 रुपया। जो बिकिया 2161 रुपया और जोई बिकी 3515 रुपया। किसान भाइयों, मौसम की बात करें तो मौसम आने वाले 2-3 दिनांग में साफ सुथरो रहेसी, पर कठे कठे ही बादलवाई और थोड़ी बहुत आंधी की संभावना भी जताई है। तो किसान भाइयों, आज गो कार्यक्रम इतो ही। तो अब सज्जन भाई ने दो थे आज्ञा। राम राम सा राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज पर बोल रहे हैं। आइए सुने फिल्म संगीत।

आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुने। इस गाने के लिए आवाजें दी लता मंगेशकर और भूपेंद्र कुमार ने। गाना एक बार फिर से गुलजार का, धुन बनाई राहुल देव बर्मन ने और फिल्म का नाम है सितारा।

अभी आपने लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की आवाज़ों में गुलजार का गाना सुना। आइए गुलजार का ही गीत सुने आवाज़ें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात के ठीक 8 बजे हैं। समय है फिल्म संगीत के ही कार्यक्रम का, जिसे आप एक ही फिल्म से के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हमने जो फिल्म सुनी वो इसलिए चुनी क्योंकि दिन आज एलवी प्रसाद यानी अकिनेनी लक्ष्मीवर प्रसाद राव का। ये वो नाम जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लिए विभिन्न क्षेत्रों में बड़ा काम किया। बड़ा नाम एलवी प्रसाद, आप निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, इंडस्ट्री के बड़े व्यक्तित्व। आज चूंकि दिन

आपकी पुण्यतिथि का, इसलिए आपके डायरेक्शन प्रोडक्शन में बनी फिल्म बेटी बेटी के गाने हम आपको सुनवाएंगे। आइए आगाज करें प्रोग्राम का इस प्यारे से गाने के साथ।

गाना आपने सुना। दोस्तों, एलवी प्रसाद एक ऐसे फिल्मकार जिन्होंने अभिनय से शुरुआत की, संघर्ष से गुजरे और फिर निर्देशन की दुनिया में अपना एक मुकाम बनाया। उन्हें सिनेमा के सबसे बड़े सम्मानों में से एक दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1994 को उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके करियर की दोस्तों एक दिलचस्प बात ये कि उनका निर्देशन बनने का सफर किसी प्लानिंग के तहत शुरू नहीं हुआ, बल्कि एक फिल्म के दौरान बने हालात ने उन्हें निर्देशक की कुर्सी तक पहुंचा दिया। बहरहाल, आपकी फिल्म बेटी बेटी के गाने आप सुन रहे हैं कार्यक्रम में। आइए, मोहम्मद रफी का गाया ये गाना सुने। इस फिल्म के गाने हसरत लिखे, धुन शंकर जयकिशन ने बनाई।

दोस्तों दिन आज एलवी प्रसाद का सुबहतें उन्हीं की। आप बचपन से ही काफ़ी समझदार थी, लेकिन पढ़ाई में उनका ज़्यादा मन नहीं लगता था। उन्हें नाटक, अभिनय और फिल्मों की दुनिया अपनी ओर खींचती थी। कम उम्र में ही उन्होंने अभिनय और रंगमंच की तरफ रुचि दिखाना शुरू कर दिया। परिवार की आर्थिक हालत इतनी अच्छी नहीं थी, पिता कर्ज में डूबे थे और परिवार को मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। यहां से एलवी प्रसाद ने फिल्मी दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और मुंबई पहुंच गए। यहां उन्हें वीनस फिल्म कंपनी में काम मिला, बाद में इंपीरियल फिल्म कंपनी का हिस्सा बने, जहां उन्हें अभिनय का मौका मिला। सन 1931 में उन्होंने भारत की पहली बोलती फिल्म आलमारा में काम किया। इसके बाद वे पहली तमिल तेलुगु द्विभाषी फिल्म कालिदास और पहली तेलुगु फिल्म भक्त प्रह्लाद में भी नजर आए। फिल्मों में काम करते करते आपकी दिलचस्पी जो थी वो बढ़ गई निर्देशन की तरफ, और आपने सहायक निर्देशक के तौर पर काम करना शुरू किया। इसी दौरान 1943 में उन्होंने फिल्म गृह प्रवेशम में सहायक निर्देशक की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन फिल्म के निर्माण के दौरान परिस्थितियां ऐसी बनी कि एलबी प्रसाद को ही निर्देशन की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। आइए सुने गाना इस फिल्म का मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में।

अभी आपने गाना सुना मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में, हसरत जयपुरी की बोल, शंकर जयकिशन की मौसिकी। दोस्तों, बात एलवी प्रसाद की और उन्हीं की फिल्म के गाने आप इस वक्त आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से प्रसारित

कार्यक्रम एक ही फिल्म से के तहत सुन रहे हैं। बात करेंगे लेकिन पहले शैलेंद्र का ये गाना मोहम्मद रफी की आवाज़ में आपके लिए।

दोस्तों, एलवी प्रसाद के प्रसाद प्रोडक्शन ने बहुत सारी यादगार फिल्में हिंदी की भी हमें दी। इसके अलावा आपने तमिल और तेलुगु में भी बहुत बड़ा काम किया। हिंदी में आपने बेटी बेटे, मिलन, खिलौना, ससुराल, एक दूजे के लिए, जीने की राह और भी बहुत सारी ऐसी फिल्में जिनका संगीत बेमिसाल, बकमाल। आइए, बेटी बेटे फिल्म का ये भक्ति से भरा गाना सुनते हैं।

लीजिए दोस्तों, आज के इस आयोजन का ये आखिरी गाना सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और याद करें ऐसे महान फिल्मकार को जिन्होंने ऐसी नायाब फिल्में हमारे लिए बनाई।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से और फ्रांस का सामना इराक से होगा। अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। ISSF जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप में प्रीतम केंद्रे ने स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। फ्रेंच पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन, जीते स्वर्ण पदक। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कैलिफोर्निया के फुलटन में कल से शुरू। FIH प्रो लीग में भारत ने नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया और विश्व मुक्केबाजी कप में ज्योति ने जीता एकमात्र स्वर्ण पदक।

कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सबसे लोकप्रिय टूर्नामेंट्स में से एक फीफा विश्व कप से, जहां हर दिन रोमांचक मुकाबले खेले जा रहे हैं। फीफा विश्व कप फुटबॉल के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना और ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ग्रुप आई में

0: फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। सुनते हैं इन मुकाबलों पर एक खास रिपोर्ट।
1: फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत दर्ज करते हुए इतिहास रच दिया। मिस्र के मोहम्मद सलाह ने शानदार प्रदर्शन किया और अपने देश की ओर से सर्वाधिक गोल करने के करीब पहुंच गए हैं। सलाह ने कल न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप में 3-1 की जीत में अपना 68वां अंतर्राष्ट्रीय गोल किया, जो अब मिस्र के मौजूदा कोच होसाम हसन के करियर रिकॉर्ड से सिर्फ एक गोल कम है। यह विश्व कप में उनका तीसरा गोल था। इससे पहले 2018 में रूस में खेले गए विश्व कप में उन्होंने 2 गोल किए थे।
2: Salah scores for Egypt. A World Cup in which the brightest stars have shone. Stamenic first time. Egypt secure their first ever win at the World Cup. And they do so by beating New Zealand by 3-1.
1: प्रतियोगिता में पहली बार विश्व कप में हिस्सा ले रही काबो वर्डे का शानदार सफर जारी है। ग्रुप एच में काबो वर्डे ने 2 बार की चैंपियन उरुग्वे के साथ 2-2 से मुकाबला ड्रॉ किया। इससे पहले काबो वर्डे ने स्पेन को भी अपने पहले मैच में ड्रॉ पर रोका था। लगातार दूसरे ड्रॉ के साथ ही काबो वर्डे ने टूर्नामेंट में दूसरा अंक भी हासिल कर लिया है और टीम राउंड ऑफ 32 में पहुंचने की रेस में बनी हुई है। मैच की शुरुआत से ही काबो वर्डे का दबदबा देखने को मिला। टीम ने मैच के 21वें मिनट में उरुग्वे के खिलाफ 1-0 से बढ़त बनाई। टेल्मो अरकाजो की फ्री किक को केविन पिना ने शानदार गोल में तब्दील किया। यह काबो वर्डे का विश्व कप इतिहास का पहला गोल भी रहा। हाफ टाइम से पहले ही स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। उरुग्वे की ओर से मैच का पहला गोल मैक्सी अरुजो ने किया। इसके बाद स्टॉपेज टाइम में उरुग्वे ने मैच में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली। टीम के लिए दूसरा गोल अगस्टन केनोबियो ने किया। काबो वर्डे के लिए 60वें मिनट में फरेला ने गोल करते हुए 2-2 से स्कोर को बराबर कर दिया। इसके बाद किसी भी टीम को सफलता हाथ नहीं लगी और मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा।
2: Oh, it's a little bit wayward. There's a chance and a goal for 2-2. Cabo Verde are level in the match.
1: ग्रुप जी में बेल्जियम और ईरान के बीच मुकाबला गोल रहे ड्रॉ पर खत्म हुआ। लॉस एंजलिस स्टेडियम में दोनों टीमों ने जीत के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन शानदार गोलकीपिंग और मजबूत डिफेंस के कारण कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। इस ड्रॉ के साथ ही बेल्जियम और ईरान को अभी भी इस विश्व कप में अपनी पहली जीत का इंतजार है। टीम के अनुभवी मिडफील्डर केविन डी ब्रुइन ने शुरुआती मिनट में ही लंबी दूरी से शॉट लगाया, लेकिन गेंद गोल पोस्ट के बाहर चली गई। इसके बाद डी ब्रुइन और लिएंड्रो ट्रोडार्स ने मिलकर कुछ अच्छे मौके बनाए, लेकिन ईरान के गोलकीपर अलीरेजा बेरानवंद ने शानदार बचाव करते हुए बेल्जियम को बढ़त लेने से रोक दिया। हाफ टाइम तक स्कोर 0-0 ही रहा। निर्धारित समय के बाद मिले 5 अतिरिक्त मिनटों में भी कोई गोल नहीं हुआ और मुकाबला 0-0 की बराबरी पर खत्म हुआ।
2: And it's an instinct, I think, just to reach out in panic. Another fine save from Barron. It's a shutout at the Los Angeles Stadium.
1: ग्रुप एच मुकाबले में स्पेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सऊदी अरब को 4-0 से करारी शिकस्त दी। स्पेन की इस जीत में युवा खिलाड़ी लामिल यामल और स्ट्राइकर मिकेल ओयारजाबल ने अहम भूमिका निभाई। यामल ने 1 गोल किया जबकि ओयारजाबल ने 2 गोल दागे। स्पेन का पहला गोल 10वें मिनट में यामल ने किया। टूर्नामेंट में यह उनका पहला गोल था। मैच के 30वें मिनट में स्पेन की बढ़त को एमेरिक लोपोर्ट ने दोगुना कर दिया। इसके सिर्फ 3 मिनट बाद स्पेन ने एक और शानदार टीम गोल किया। डेनी ओल्मो ने मौका बनाते हुए गेंद ओयार जाबल के पास की, जिन्होंने शानदार वॉली लगाकर अपना दूसरा और स्पेन के लिए मैच का तीसरा गोल किया। पहले हाफ में 3-0 की बढ़त लेने के बाद स्पेन पूरी तरह नियंत्रण में था। दूसरे हाफ में सऊदी गोलकीपर ने उनके शॉट को रोक लिया, लेकिन गेंद की दिशा सऊदी खिलाड़ी हसन अतलामबख्ती से टकराकर बदल गई और अपने ही गोल में चली गई। इसके बाद भी स्पेन ने सऊदी अरब के डिफेंस पर लगातार दबाव बनाए रखा और मैच को 4-0 से अपने नाम किया। इस जीत के साथ स्पेन के 2 मैचों में 4 पॉइंट हो गए हैं और टीम ग्रुप में पहले स्थान पर पहुंच
0: और अब रुक कर लेते हैं निशानेबाजी की ओर, जहां भारत का दबदबा जारी है। जर्मनी के सोहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। चैंपियनशिप में ये भारत का 5वां स्वर्ण पदक है। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। और अब बात मुक्केबाजी पर। चीन के गुयांग में विश्व मुक्केबाजी

0: कप में कल ज्योति ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
1: ज्योति ने 48 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में उज्बेकिस्तान की फरजानो फजिलोवा को 5-0 से हराया। भारत ने फाइनल में मजबूत प्रदर्शन करते हुए 3 रजत पदक भी जीते। 51 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में मीनाक्षी को चीन की वु यू के हाथों 0-5 से हारने के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। 57 किलोग्राम वर्ग में प्राची ने भी रजत पदक जीता। टूर्नामेंट में शानदार सफर के बाद भी वो अपने टाइटल मुकाबले में उज्बेकिस्तान की निगीना उक्तामोवो के हाथों 0-5 से हार गयी। पुरुष वर्ग के 70 किलोग्राम में दीपक ने रजत पदक हासिल किया। फाइनल में दीपक को कजाकिस्तान के अबलाई खान जुसुपोव से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में जुगनू और निखिल ने कांस्य पदक अपने नाम किए, जिससे पदकों की संख्या 6 हो गई। इनमें 1 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। इससे पहले भारतीय टीम का अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मजबूत प्रतिद्वंदियों के खिलाफ अभियान सफल रहा। महिला टीम ने 5 मुक्केबाजों के साथ 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर शानदार नेतृत्व किया। ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन, मौजूदा एशियाई चैंपियन प्रीति पवार, साक्षी और प्रिया ने स्वर्ण, जबकि परवीन ने रजत पदक अपने नाम किया। लवलीन निगम, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब बात माइंड गेम शतरंज पर। तमिलनाडु के शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी इनियान पा ने मुंबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुए 361 ग्लोबल शतरंज महोत्सव के मास्टर वर्ग का खिताब जीत लिया है। सुनते हैं मुंबई से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
2: Inian Pa of Tamil Nadu, the top seed, lived up to his billing, dominating proceedings from start to finish to emerge champion in the Masters category of the 361 Global Chess Festival, which concluded at the World Trade Center in Mumbai. Already in sight of the title after the penultimate round, the composed 24-year-old national champion settled for a quick and short draw against Ajay Santosh Parvathareddy to claim one of the biggest chess titles in the country in his debut appearance and the winner's purse of Rs. 8 lakh. The Erode-based GM Inian amassed 7.5 points to emerge champion, maintaining an unbeaten stint, conceding only 3 draws. Boris Savchenko had to settle for a draw against Akash Sharadchandra Dalvi and finished second with 6.5 points. Nitin Babu clinched the Challengers category and Madhvendra Pratap Sharma triumphed in the Junior Masters category. Both Nitin and Madhvendra have directly qualified to play the Masters category in the 10th season scheduled for next year. For SportsCan, this is S. Kishore from Mumbai.
0: और अब रुख करते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर। फ्रेंच पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के कृष्णा नागर, तुलसीमती मुरुगेसन, नित्याश्री, सुमति सिवन और नितेश कुमार ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किए। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
3: टोक्यो पैरालंपिक चैंपियन कृष्णा ने पुरुषों के सिंगल्स एसएच 6 फाइनल में चार्ल्स नोक्स को 21-19, 21-11 से हराया। कृष्णा ने अपने खाते में 2 कांस्य पदक भी जोड़े। महिलाओं की सिंगल्स एसयू 5 स्पर्धा में तुलसीमती ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि नित्याश्री महिलाओं की सिंगल्स एसएच 6 स्पर्धा में विजेता बनी। वहीं नितेश कुमार ने पुरुषों के सिंगल्स एसएल 3 स्पर्धा में भारत के लिए एक और स्वर्ण पदक जीता। नवीन शिव कुमार पुरुषों के सिंगल्स एसएल 4 स्पर्धा में उप विजेता रहे। मानसी जोशी और तुलसीमती मुरुगेसन ने महिलाओं की डबल्स एसएल 3 एसयू 5 स्पर्धा में रजत पदक जीता। प्रमोद भगत और मनीषा रामदास ने भी मिक्स डबल्स एसएल 3 एसयू 5 वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। भारत के कांस्य पदक विजेताओं में पुरुषों के सिंगल्स डब्ल्यूएच 1 में प्रेम कुमार आले, महिलाओं के सिंगल्स डब्ल्यूएच 2 में अल्फिया जेम्स, पुरुषों के सिंगल्स एसएल 3 में प्रमोद शामिल थे। प्रमोद और सुकांत कदम ने पुरुषों के डबल्स में भी कांस्य पदक जीता। पुरुष सिंगल्स एसएल 4 में सूर्यकांत यादव, पुरुष सिंगल्स एसयू 5 में ऋतिक रघुपति और महिला सिंगल्स एसयू 5 में मनीषा रामदास ने भी कांस्य पदक जीते। डबल्स डब्ल्यूएच 1 डब्ल्यूएच 2 स्पर्धा के महिला वर्ग में रुचि त्रिवेदी और पोलैंड की नतालिया ग्रजिब ने कांस्य पदक जीता। इसी स्पर्धा के मिक्स्ड वर्ग में अबू हुवैद और पल्लवी कलुवेहल्ली ने तीसरा स्थान हासिल किया। एसएल 3 एसयू 5 स्पर्धा के महिला डबल्स में संजना कुमारी और शांतिया विश्वनाथन और मिक्स्ड डबल्स में नितेश और तुलसीमती मुरुगेसन ने कांस्य पदक जीता। अर्जुन शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: उधर यूएस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट कल से कैलिफोर्निया के फुलटन में आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का नेतृत्व करेंगे। आइए जानते हैं किन खिलाड़ियों पर रहेंगी नजर।
4: पुरुष सिंगल्स में विश्व रैंकिंग में 14वें स्थान पर काबिज लक्ष्य सेन को दूसरी वरीयता दी गई है और पहले दौर में उनका मुकाबला बेल्जियम के जूलियन कैरागी से होगा। इस महीने की शुरुआत में इंडोनेशिया ओपन में पहले दौर में बाहर होने के बाद लक्ष्य वापसी करने के लिए किसी तरह की कसर नहीं छोड़ेंगे।

0: श्रीकांत पुरुष सिंगल्स में अपना पहला मैच चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू के खिलाफ खेलेंगे। सानिध दयानंद जापान के चौथी वरीयता प्राप्त युदाई ओकीमोतो के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। एस शंकर मुथुस्वामी सुब्रमण्यन ने भी मुख्य ड्रॉ में जगह बना ली है और उनका मुकाबला क्वालिफायर से होगा। महिला वर्ग में कुल 7 भारतीय खिलाड़ी सिंगल्स में चुनौती पेश करेंगे। महिला सिंगल्स में 5वीं वरीयता प्राप्त तन्वी शर्मा और 6ठी वरीयता प्राप्त देविका सिहाग अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। 17 वर्षीय तन्वी जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेंगी, जबकि देविका का सामना पेरू की इनेस लुसिया कैस्टिलो सालाजार से होगा। विश्व रैंकिंग में 91 स्थान पर काबिज अनमोल खरब पहले दौर में बुल्गारिया की कालोयाना नलम्बतोबा से भिड़ेंगी। रक्षिता श्री एस का सामना पहले दौर में क्वालिफायर से होगा। अगर वह आगे बढ़ती है तो अगले दौर में उन्हें कनाडा की शीर्ष वरीयता प्राप्त मिशेल ली का सामना करना पड़ सकता है। श्रियांशी वल्ली शेट्टी अपना पहला मैच कनाडा की राहेल चान के खिलाफ खेलेंगी। तान्या हेमंत का सामना जापान की तीसरी वरीयता प्राप्त रिको गुंजी से, जबकि आकर्षी कश्यप का मुकाबला चीनी ताइपे की तुंग सियो टोंग से होगा। महिला डबल्स में भारत की ओर से त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ही चुनौती पेश करेंगी। उनका पहला मुकाबला स्पेन की पाउला लोफेज और लुसिया रोड्रिगेज से होगा। पुरुष डबल्स के ड्रॉ में कोई भी भारतीय जोड़ी शामिल नहीं है। मिक्स डबल्स में 7वीं वरीयता प्राप्त ध्रुव रावत और मनीषा के इंडोनेशिया के विरावन एहसान आदम और सेरेना कानी के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेंगे। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात रिले चैंपियनशिप पर। चीन के शांघाई में आयोजित एशियन रिले चैंपियनशिप में भारत ने शानदार प्रदर्शन कर कई पदक अपने नाम किए। प्रतियोगिता में टीम ने महिलाओं के 4x100 मीटर रिले में स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले भारत ने 4x400 मीटर मिक्स्ड रिले में रजत और 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले में कांस्य पदक हासिल किया। इससे पहले 4x400 मीटर मिक्स्ड रिले में भारत दूसरे और कजाकिस्तान तीसरे स्थान पर रही। अब बात हॉकी की। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल FIH प्रो लीग रोटरडैम लेक के अपने आखिरी मैच में नीदरलैंड को 3-2 से हराया। कार्यवाहक कप्तान हार्दिक सिंह को उनकी शानदार कप्तानी और मिडफील्ड में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और अब बात क्रिकेट पर। महिला आईसीसी T20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने कल भारत को 6 विकेट से हराया। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 158 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका ने 159 रन के लक्ष्य को 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। मेरिजन कैप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा की। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में प्रीतम केंद्रे ने स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण आग की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर 16 से 18 वर्ष के छात्र थे। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई। 4 छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें लखनऊ के KGMC अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
3: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, SDRF और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान

0: जाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राज्य के डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी।
1: घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। प्रमुख सचिव गृह डीजीपी मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए हैं कि घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटे, इसकी कड़ी कार्रवाई करें।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
2: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सके।
0: अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम ग्रेट पावर इंडिया नेशन फर्स्ट को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
4: निभाया देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं। साथियों, यहां हमारे साथी सिद्धर बैंबू जी बैठे हैं। जब हमारे उद्यमी नेशन फर्स्ट की भावना के साथ चलते हैं, जब वो देश की आवश्यकताओं को समझते हुए अपने लक्ष्य बनाते हैं, तो संस्थाएं भी बनती हैं और देश भी समृद्ध होता है। सिद्धार्थ बैंबू जी ने क्या काम किया है, शायद यहां बातों में कितना निकला होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं फ्रांस में विवाटेक में गया था। करीब 1.5-2 लाख नौजवान वहां होंगे। चलने के लिए भी मैं और फ्रांस के राष्ट्रपति अलग अलग स्टॉल पे जा रहे थे, देखने के लिए भी नौजवानों ने क्या काम किया है। तो हम जोहो के स्टॉल पे गए, मैं हैरान था जी और गर्व होता था कि जोहो के स्टॉल पर यूरोप के नौजवानों की जो भीड़ लगी थी और वो समझना चाहते हैं कि ये क्या है दुनिया में नई चीज। भारत में शायद उतनी चर्चा नहीं होगी जितनी मैंने वहां फ्रांस में देखी।
3: शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
5: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।
6: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इनमें बागुआपाला बुद्धापंक, हरिदासपुर पारादीप, खुर्दा रोड बलंगीर, नौपाड़ा गुनुपुर, लांजीगढ़ रोड जूनागढ़ और बोबिल्ली सालूर शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना से पूर्वी तट रेलवे द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले ओडिशा और पड़ोसी क्षेत्रों के प्रमुख खंडों पर यात्री और मालगाड़ी दोनों के संचालन को लाभ होने की उम्मीद है। यह भीड़ भाड़ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर कवच का विस्तार करने के उद्देश्य से जारी रेलवे के अभियान को मजबूती भी प्रदान करेगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
3: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन

0: कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है।
1: वित्त मंत्री डॉक्टर शपन दासगुप्ता ने आज 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का राज्य बजट प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे विकसित भारत के साथ विकसित बंगाल के निर्माण का बजट बताया। बजट में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 18% से बढ़ाकर 38% करने की घोषणा की गई। महिला सुरक्षा के लिए सभी थानों में नारी सहायता डेस्क और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड बनाया जाएगा। दार्जिलिंग और गंगा सागर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। काश्मीर नहार, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के उलानबतार में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले साल श्री उखना की भारत यात्रा ने भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान की थी। उन्होंने मुलाकात के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इससे पहले दिन में विदेश मंत्री ने उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बचनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक से इतर नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गादिर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया की राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसा से भी मुलाकात की। श्री डोभाल ने ब्राजील के बहुपक्षीय और राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोजेंडे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने ब्रिक्स ढांचे के तहत भारत और ब्राजील के बीच सहयोग का स्वागत किया। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में CISF के जवानों का बड़ा योगदान होता है। नई दिल्ली में आज CISF के नए मुख्यालय भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने ये बात कही। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल एम पंचोले की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NEFED के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। मृतकों में CPI के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewzOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। इस्तीफे का बयान देने से

0: पहले स्टार्मर अपनी पत्नी के साथ 10 टाउनिंग स्ट्रीट के बाहर निकले, जहां लोगों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया और तालियां बजाई। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता, तब तक वे पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken,
2: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: कतर के औद्योगिक क्षेत्र रस लाफान में आज हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई, इनमें कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। कतर के ऊर्जा मंत्री साद बिन श्रीदा अलकाबी ने बताया कि कल शाम बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति संयंत्र में विस्फोट के कारण लगी आग में 66 लोग घायल हो गए। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक हासिल किए। भारत 5 स्वर्ण 1 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 291 अंक बढ़कर 77,094 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 90 अंक बढ़त के साथ 24,103 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 35 पैसे कमजोर होकर ₹94.68 पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में आग की घटना में 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के साथ ही भरोसेमंद विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में प्रीतम केंद्रे के स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दोस्तों, गज़ल आपने सुनी कुंवर महेंद्र सिंह बेदी शहर की। इसी गज़ल का एक शेर है कि पुराने वक्तों के लोग खुश हैं मगर तरक्की पसंद खामोश। पुराने वक्तों के लोग खुश हैं मगर तरक्की पसंद खामोश। तेरी गज़ल ने किया है बरपा शहर अभी इनकलाब आता। ये कार्यक्रम सुगम संगीत आपने आकाशवाणी की कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुना। हम अपने सुनने वालों को बता दें, आज रात 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आप हमारे कार्यक्रम एफएम पर 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, डीआरएम पर 909 किलोहर्ट्ज पर और इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात के 9:30 हुआ चाहते हैं। थोड़ी देर में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। कृपया थोड़ी देर इंतजार करें।

0: नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। रोजगार केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, सम्मान और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला भी है। जब युवाओं को अवसर मिलते हैं तो न केवल उनका भविष्य संवरता है, बल्कि देश की प्रगति को भी नई गति मिलती है। इसी सोच के साथ सरकार ने रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और युवाओं को औपचारिक रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से पिछले वर्ष प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की। पिछले सप्ताह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। ये योजना विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। क्या है ये योजना, इससे युवाओं, कर्मचारियों और नियोक्ताओं को क्या लाभ होगा, इन्हीं सब महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आज हम तलाशेंगे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में। हमारा विषय है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर। इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा और क्षेत्रीय आयुक्त प्रणित जोशी। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
1: नमस्कार
0: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं। आप हमारे स्टूडियो नंबर 011, जो दिल्ली का कोड है, उसके बाद 2331-0481 या 2371-7117 या 2371-7106 और 2331-4444 पर फोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044।

0: इस पर आप प्रश्न भेज सकते हैं, और ट्विटर हैंडल है @AIRNewsAlerts पर #AskAIR के जरिए आपके जो भी सवाल हैं और शंकाएं हैं पूछ सकते हैं। तो आगाज़ करते हैं कार्यक्रम का। सबसे पहले पूर्णेंदु जी, आपसे जानना चाहूँगी कि PM विकसित भारत रोजगार योजना क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी?
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना एक ऐसी योजना है जो कि यहाँ हमारे फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, वर्कफोर्स को फॉर्मलाइज करने के लिए, सोशल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए और फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट को इनकरेज करने के लिए एक सरकार ने एक इंसेंटिव स्कीम जारी की है। ये इंसेंटिव स्कीम इनफैक्ट 1 जुलाई 2025 से शुरू होकर अभी अगले 2 साल के लिए रहेगी, और इस इंसेंटिव स्कीम में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई दोनों को इंसेंटिव दे रही है भारत सरकार, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जो भी जनरेट हो रहा है उसको एक बढ़ावा मिले और जो एम्प्लॉयज़ किसी भी एम्प्लॉयर के साथ जुड़ रहे हैं वो वहाँ पे कुछ 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट बनी रहे।
0: जी प्रणत जी, आपसे जानना चाहूँगी कि EPFO बहुत मेजर रोल निभा रहा है, क्या है, अपने श्रोताओं को इस बारे में बताएं।
2: हाँ, सो ये स्कीम जो है भारत सरकार ने इसकी जिम्मेदारी EPFO को सौंपा है। तो EPFO इंडिया एंड वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारे यहाँ जो फॉर्मल एम्प्लॉयज़ है, लगभग 8 करोड़ फॉर्मल एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ कवर्ड है। तो ये स्कीम में जो भी बेनिफिट्स हैं वो EPFO के थ्रू हम देने की प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें कोई द बेस्ट पार्ट इज़ इसमें कोई एडिशनल कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट नहीं है आइदर फॉर एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स। डायरेक्टली EPFO एनरोलमेंट से ही सारे बेनिफिट्स हम लोग ऑटोमेटिकली सिस्टम कैलकुलेट करके इनको दी जाएगी।
0: ये तो एक तरह से मध्यस्थता का काम कर रहा है EPFO, नियोक्ता और जो कर्मचारी के बीच में। हमारे पहले श्रोता जुड़ गए हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से, रमा शंकर वाजपेयी जी।
3: नमस्कार,
0: सवाल पूछें अपना।
3: हाँ, विकसित भारत के अंतर प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत कितने लोगों को रोजगार मिला और किस तरह का रोजगार मिला?
2: हाँ रमाशंकर जी, ये स्कीम 1 अगस्त 2025 से शुरू हुआ है। तो अभी तक लगभग 70 लाख युवा फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय, जो पहली बार फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में आए हैं, लगभग 70 लाख से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े हैं। इसमें लगभग 13.29 लाख तक का बेनिफिट अभी हमने उनको, इन्होंने 6 महीने कंप्लीट कर चुके हैं। तो इनका पहला किस्त का जो बेनिफिट है हमने उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से उनके डायरेक्टली बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिए।
0: जी पूर्णेंदु जी, आपने इंसेंटिव्स की बात की थी, तो इंसेंटिव्स जो, अगर मैं सबसे पहले कर्मचारी जो पहली बार जो नौकरी पाने वाले हैं तो उनको क्या मिलता है, किस तरह से मिलता है, ये बताएं।
1: कर्मचारियों के लिए जो यहाँ पे बेनिफिट मिलती है इस स्कीम में वो है जो पहले 6 महीने तक अगर कोई भी कर्मचारी किसी भी संस्थान को ज्वाइन करने के बाद वहाँ रह जाता है तो उनका जो एवरेज वेज होता है उसका आधा, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 15,000 रुपये, तो ये पूरा बेनिफिट हो गया। पहले 6 महीने में उनको 7,500 रुपये तक मिलते हैं और अगले 6 महीने तक अगर वो एक हमारे यहाँ पे वो लिटरेसी कोर्स उनको करना पड़ता है, 6 महीने के बाद अगर उन्होंने वो कंप्लीट कर लिया और लगातार वहीं एम्प्लॉयड रह गए तो उनको 12 महीने के बाद 15,000 रुपये तक की राशि दी जाती है।
0: तो 6 महीने के बाद और फिर 6 महीने
1: दो बार में दिया
0: जी
1: जाता
0: जी है। आगे भी चर्चा करते हैं, पहले अपने श्रोता का सवाल पूछ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला से हैं राकेश जी।
4: जी नमस्कार।
0: नमस्कार
4: जी, तो मेरा एक प्रश्न ये है कि जो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है तो इसमें हमें क्या क्या प्रावधान रखना पड़ता है और इसके लिए हमें फॉर्म किस तरह से भरना पड़ता है, ये मेरा प्रश्न है।
1: राकेश जी, आपको कोई भी फॉर्म नहीं भरना पड़ता, आपको केवल EPFO के साथ जुड़ना पड़ता है। EPFO के साथ जुड़ने के लिए जो EPFO में कवरेज के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपकी कंपनी जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, जो भी संस्थान हो जहाँ आप काम कर रहे हैं वो अगर EPF में कवर्ड हैं, और जो बिल्कुल नए लोग अगर आ रहे हैं उस कंपनी में जो 1 अगस्त 2025 के पहले कहीं भी हमारे EPFO से जुड़े हुए नहीं थे तो वैसे लोगों के लिए एक इंसेंटिव है। और इसलिए इसमें कोई अलग से आपको कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर EPF में आप किसी भी एम्प्लॉई का कंप्लायंस हो रहा है तो वैसे लोगों को ऑटोमेटिकली इसका बेनिफिट मिल जाता है।
0: जी अगर हम नियोक्ता की बात करें तो उनको इस योजना से क्या लाभ मिलेगा और जो इसमें उनको भाग लेने के लिए

0: कैसे प्रोत्साहित किया जा रहा है, और ख़ासकर जैसे अगर कोई कंपनी है, अगर वो हाल फिलहाल में ज्वाइन किया, उसने ईपीएफओ में रजिस्टर किया है, या स्टार्टअप है नया, तो उन सब के लिए क्या प्रावधान है?
1: कंपनी के लिए दो तीन चीज़ें आवश्यक हैं।
0: जी
1: पहला, अगर वो ईपीएफओ में कवर्ड नहीं है तो पहला तो उनका कवरेज ज़रूरत होगी यहाँ
0: जी
1: ईपीएफओ में। साथ ही उनके जितने भी एम्प्लॉई हैं, जो नए एम्प्लॉई आके ज्वाइन कर रहे हैं उनके बेसिस पे, और जो पुराने एम्प्लॉई जो भी हैं जो कहीं और से आके उनके यहाँ जुड़ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं फर्स्ट टाइमर एंड रीज्वाइनिंग, तो
0: जी
1: दोनों के नंबर को जोड़ा जाता है। और जो इंसेंटिव है, अगर 10,000 रुपये तक की सैलरी है एम्प्लॉई की तो उसमें 1,000 रुपये, अगर 20,000 रुपये तक की सैलरी है 10 से 20 हज़ार तो 2,000 रुपये, और अगर 20,000 से लेकर और 1,00,000 रुपये तक की अगर सैलरी है तो 3,000 रुपये का इंसेंटिव एम्प्लॉयर को मिलता है। और ये एम्प्लॉयर को ये प्रत्येक महीने जैसे मिलता जाएगा, अभी पहले 6 महीने किसी का सस्टेंड एम्प्लॉयमेंट हुआ, फिर अगले महीने भी किसी न किसी का 6 महीने होगा, तो वैसे उनको बेनिफिट मिलता
0: ये भी
1: रहेगा।
0: डीबीटी के थ्रू ही?
1: ये सारे बेनिफिट एम्प्लॉयर को डीबीटी के थ्रू मिलेगा। जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो केवल एक ही होती है, एक ईपीएफ में कवर्ड हो, दूसरा उनका जो पैन डिटेल्स है वो हम लेते हैं उनके, क्योंकि हम पैन से जो लिंक्ड उनका बैंक अकाउंट होते हैं उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होती है। डीबीटी एम्प्लॉयज़ के लिए होती है।
0: जी हरिद्वार से जुड़े हैं रवि जी।
2: हाँ जी, नमस्कार मैम जी।
0: नमस्कार, स्वागत है
2: जी
0: कार्यक्रम में।
2: हाँ जी, थैंक यू। और महानुभव विशेषज्ञ को भी नमस्कार
1: नमस्कार
2: जी। सर मैं जानना चाहता हूँ, सर ये प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना है सर, इसके लिए जो ये एक युवा है वो मतलब क्या क्वालिफिकेशन होकर मतलब इस योजना का हिस्सा बन सकता है, मतलब इस योजना से लाभ उठा सकते हैं? इसमें एक युवा की क्या मतलब क्वालिफिकेशन होती है,
0: जी,
2: क्या
0: पात्रता क्या होनी
2: होती है?
0: चाहिए, प्रणी चाहिए आप बताएं।
3: रवि जी, इसमें जैसे कि पूर्णेंदु जी भी पहले बताया कि इसमें कोई एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ईपीएफओ के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो अगर पहली बार आपके संस्था में आप ज्वाइन कर रहे हैं, पहली नौकरी में ज्वाइन कर रहे हैं, कोई युवा अगर कोई ज्वाइन कर रहे हैं, तो इनको फेशियल ऑथेंटिकेशन के माध्यम से उमंग ऐप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस ऐप में उनको एक नंबर दिया जाएगा, उसको हम लोग यूएएन कहते हैं। और उसके बाद 6 महीने अगर उसी संस्था के साथ आप जुड़े हैं और आपका जो जो ग्रॉस वेजेस है आपके, आपका जो सैलरी है वो 1,00,000 से कम होना चाहिए, उनके लिए एक स्कीम है। तो 6 महीने के बाद आपको पहला किस्त 7,500 तक दिया जाएगा, और उसके बाद एडिशनल 6 मंथ्स के बाद आपको दूसरा किस्त दिया जाएगा।
0: जब हम एम्प्लॉयज़ की बात आगे कंटिन्यू रखते हैं, जैसे मैंने पूछा कोई नया अगर स्टार्टअप आया है और 50 से कम अगर उसके एम्प्लॉयज़ हैं या 50 से ज़्यादा हैं, तो उन सब के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं अलग अलग कि मिनिमम आपके पास अगर आपको इतने रखने होंगे, ईपीएफओ में रजिस्टर होना होगा, तभी आप इसका लाभ ले सकते हैं?
1: जी, एक स्कीम की सबसे प्राइमरी कंडीशंस में से एक ये है कि आपने एडिशनल एम्प्लॉयमेंट उस संस्थान ने कितना जनरेट किया है।
0: जी,
1: तो उसने अगर किसी के पास 50 से कम एम्प्लॉई हैं, अगर उन्होंने मिनिमम 2 भी एम्प्लॉई को जनरेट कर दिया, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अगर नया आ गया, और अगर 50 से ज़्यादा उस संस्थान के सदस्य हैं, तो वैसे केसेस में 5 उनको कम से कम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होगा, तभी वो इसके लिए पात्रता के भागी होंगे। लेकिन साथ में एक और चीज़ बता दूँ आपको कि जहाँ पे एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर का जो टोटल हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हमारे ईसीआर पे, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न होता है। तो न केवल ये कितना उसका थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा, 2 आदमी होंगे या 5 आदमी होंगे, बल्कि इन लोगों के लिए कंप्लायंस भी रिक्वायर्ड होगा 6 महीने के लिए।
0: हाँ,
1: तो लगातार अगर कंप्लायंस आएगी 6 महीने, तभी ईपीएफओ को पता चलेगा कि ये एम्प्लॉय इनके साथ जुड़े हुए थे, उनका वेज कितना था और कितने रुपए के इंसेंटिव के हकदार हैं। जो थ्रेशोल्ड का एक और दूसरा भी कंपोनेंट है हमारा, कि जो नेट एम्प्लॉयमेंट है कितना जनरेट हुआ, उसका हम लोगों ने एक रखा हुआ है, जो जो एक पर्टिकुलर पीरियड हमने माना हुआ है, राइट। एक पीरियड है कि अगर अगस्त के पहले, अगस्त 2025 के पहले अगर कोई भी इस संस्थान हमारे साथ जुड़ी हुई थी, तो उसको हम तभी मानते हैं, उसके पिछले 12 महीने का एवरेज देखते हैं कि कितने लोग थे, और वहां से फिर उसका वो एवरेज हो गया बेसलाइन जिसे हम कहते हैं। तो बेसलाइन से कितना बढ़ रहा है, अगर अगस्त 2025 के बाद कोई भी संस्थान है तो उसका बेसलाइन होगा हमारा वो 20 रहेगा मिनिमम, वहां पे एवरेज हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, तो उस बेसलाइन के बाद फिर हम उसको आगे काउंट करते हैं।
0: छोटी छोटी चीजें देखी जाएंगी और तभी

0: सेंटर के आप पात्र
1: जी
0: बनेंगे। बिहार से जुड़े हैं हिमांशु जी।
2: बिहार से जुड़े हैं हिमाचल, बिहार से जुड़े हैं
0: हिमांशु जी,
2: हिमाचल।
0: आप आवाज़ सुन पा रहे हैं? आपसे अनुरोध है कि
2: जी
0: अपने जो आपका रेडियो है सेट है उसकी आवाज़ कम कर दें।
2: उसकी आवाज़ कम कर दें।
3: मैडम कर दिया, मैंने
0: जी,
3: कर दिया कर दिया कर
0: सवाल
3: दिया कर
0: पूछिए।
3: दिया। मैडम मेरा ये सवाल था कि क्या मैं अभी भी एम्प्लॉयमेंट में हूँ एनआईसी मुजफ्फरपुर में, ठीक है,
0: जी
3: लेकिन थर्ड पार्टी जो मुझे पेमेंट कर रही है, तो ये जो एम्प्लॉयमेंट के ये मेरा जो है ईपीएफ नहीं कट रहा है मैम, तो क्या हम लोग लेकिन पहले से जो कंपनी हमारी थी उनके द्वारा मेरा जो ईपीएफ कटा हुआ है, तो क्या हम लोग इसमें इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है?
0: जी पुणेंद्र जी,
4: हाँ, इसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपको बिल्कुल नए एम्प्लॉई होना पड़ेगा। आप चूंकि पहले से ईपीएफ से जुड़े हुए हैं, तो जो एम्प्लॉयज़ को जो बेनिफिट मिलती है उसमें आप हकदार नहीं होते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयर है अगर आप कहीं भी और दूसरी जगह पे ज्वाइन करते हैं तो उसको एज रीज्वाइनी हम लोग उन आपके जो भी यहाँ पे ज्वाइन करने के हिसाब से एम्प्लॉयर को इंसेंटिव मिलेगा।
0: महाराष्ट्र के ठाणे से जुड़े हैं गुरुनाथ जी। हेलो,
5: हाँ जी मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार,
5: मैं गुरुनाथ बोल रहा हूँ ठाणे महाराष्ट्र।
0: जी जी,
5: हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन है जैसे ईपीएफओ में जो नई कंपनियां होती है जैसे ज्वाइंट होते हैं, लेकिन एम्प्लॉय का पैसा तो कटता है, तो कभी कभी ये देखा गया है कि सही तरीके से पैसा वहाँ पे जमा नहीं हो पाया है, फ्रॉड कभी कभी फ्रॉड भी देखा जाता है, गड़बड़ी देखी जाती है उसमें, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। और सही मतलब जो पैसा सैलरी से कट जाता है एम्प्लॉयज का जिस कंपनी से, तो वो जमा हुआ है कि नहीं ये जो ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये कैसे चेक करें? थैंक यू
0: जी। प्रणीत जी,
6: गुरुनाथ जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जो एम्प्लॉयज से जो एम्प्लॉयर पैसे काटता है पीएफ जमा करने के लिए, अगर वो एम्प्लॉयर पीएफ जमा नहीं करता है तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा एंड उस एम्प्लॉयर को एक क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर उनको जेल भी भेजा जा सकता है। तो अभी इसमें ये सवाल है कि इसमें आप कैसे चेक कर सकते हैं, तो आपका जो पासबुक है आप अपने पासबुक में आप चेक कर सकते हैं हर महीने की जो आपका अमाउंट कट रहा है वो सही से जमा हो रहा है नहीं है, एंड उसमें पासबुक में आपको ये भी दिखेगा कि आपका इंटरेस्ट कितना जमा हुआ है और टोटल कितना अमाउंट है, तो आपके लॉगिन या फिर आप उमंग ऐप से भी आपका पासबुक आप देख सकते हैं इसमें।
0: जी, बिहार के सासाराम से जुड़े हैं अमित उपाध्याय जी।
7: जी नमस्कार, मेरा ये सवाल था, सभी विशेषज्ञों को मेरा नमस्कार, कि जैसे कि हम लोग जो अभी 2025 से जो अभी लागू हुआ है 1 अगस्त, उससे पहले जितने भी जैसे कि अलग अलग कंपनी में जो लोग जॉब करते हैं या बीच में कहीं छूट जाता है, तो कैसे वो मालूम चलेगा कि उनका पीएफ जो जो कटता है या पीएफ का जो इतना संभाग उनमें रहता है क्रेडिट, तो कैसे मालूम चलेगा कि वो कट रहा है कहाँ कैसे?
4: अमित जी, अमित जी नमस्कार। आपको एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया गया होगा, आपने जहाँ कहीं भी काम किया होगा, तो अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के थ्रू आप एम्प्लॉई पोर्टल पे जाके ईपीएफओ के आप लॉगिन कर लें। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो जो भी आपका आधार लिंक्ड फ़ोन नंबर है उसके उसके थ्रू ओटीपी से आप रीसेट कर सकते हैं, और जितने जगह पर भी आपने काम किया होगा जो यूएएन से लिंक्ड होगा वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स दिख जाएंगे आपके अपने पोर्टल पे ही, आपके पासबुक में भी वो दिखने चाहिए, और जहाँ जहाँ से भी आपने काम किया है अगर आपने ट्रांसफ़र नहीं करवाया है तो आप उसको एक जगह पे ट्रांसफ़र करवा लें ताकि आपके लिए बाद में सुविधा होगी।
0: जी हाँ, जैसे अब कई लोगों की शंकाएं हैं, कई जो होते हैं जो कर्मचारी हैं उनको ईपीएफ खाते यूएएन नंबर जो अन्य सुविधाएं उनके बारे में जानकारी नहीं होती, तो उस लिहाज से आप क्या बताना चाहेंगे कि किन किन बातों का ध्यान रखना है जब आप कोई ज्वाइन कर रहे हैं, आपको क्या कदम उठाने हैं?
4: अभी हाँ प्रणीत,
6: सो जब भी कोई अभी जो हमने अगस्त 2025 से एक प्रावधान किया है, पहले ये होता था कि जहाँ पे जिस संस्था में कोई ज्वाइन करते हैं कोई एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉयर खुद वो उनका यूएएन जनरेट करते थे, तो अभी हमने वो हक सिटीजन को ही दिया है, एम्प्लॉय को ही दिया है, जो खुद अपने उमंग ऐप से जो आधार ऑथेंटिकेशन करके वो खुद अपना यूएएन जनरेट करेंगे और फिर वो एम्प्लॉयर को देंगे, तो उससे जो उसको बेसिक तो उनके हाथ में है कि उनका ईपीएफओ का अकाउंट बना नहीं है, बना है या नहीं है, अभी एम्प्लॉयर के हाथ में नहीं है, तो उसके बाद उनको ये देखना है कि उनका हर महीने पासबुक उनको चेक करना है कि हमें

0: पिछा वो हर महीने उनका एवरी मंथ डिपॉजिट हो रहा है नहीं हो रहा है।
1: जी, ओडिशा से जुड़े हैं देशदीप दास जी। दास जी आप आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो दास जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है?
2: जी नमस्ते।
1: नमस्ते
2: शर्मा जी और अरोरा जी, नमस्ते।
1: जी
3: नमस्ते
2: जी। मेरा सवाल है, क्या नियोक्ता को अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा और योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक है?
3: नियोक्ता को अलग से मैं नहीं कहूँगा कि रजिस्ट्रेशन करना है, उनके पोर्टल पे जाकर और आपको केवल नियोक्ता को अपना पैन देना होता है और जो एक बैंक अकाउंट उनका देना होता है जो पैन लिंक्ड होता है, उसी को हम इनफैक्ट इस स्कीम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन मान सकते हैं। सेपरेट रजिस्ट्रेशन बस उसी तरह का होता है। उसके बाद नियोक्ता का जो भी बेनिफिट होता है, बिकॉज पैन के साथ हम इसको लिंक करते हैं, तो अगर मान लीजिए एक ही पैन के साथ बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, तो हम उन सबों को पैन एग्रीगेट करके जो बेनिफिट देते हैं वो पैन लिंक्ड बैंक अकाउंट में देते हैं। तो बेसिकली आपको पैन टैन का डिटेल्स होगा, नियोक्ता का जीएसटी नंबर आप दे सकते हैं वहाँ पे, और साथ में बैंक अकाउंट नंबर जो कि पैन के साथ लिंक्ड हो वो एम्प्लॉयर पोर्टल पे ही देना होता है। उसके लिए आपको और कहीं अलग रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है।
1: और इन्होंने दस्तावेज के बारे में पूछा था,
3: और कोई दस्तावेज नहीं
1: चाहिए, जरूरत नहीं है, बार बार बता रहे हैं आपको इस कार्यक्रम के जरिए। ये जो योजना है, अगर आप फॉर्मल नौकरी के हिसाब से, रोजगार सृजन के हिसाब से बात करें, तो बहुत बड़ी 99,000 करोड़ रुपए से इसका आउटले है। मेजर अगर बात करें जो असंगठित क्षेत्र से जो आते हैं लोग, उनको संगठित क्षेत्र में लेकर जाना, तो उनके लिए योजना किस तरह से आप लाभकारी होते देखते हैं?
3: इसमें दो तीन तरह से हम इसको देख सकते हैं। सबसे पहला, जो एम्प्लॉयज़ पहली बात की 6 महीने तक को रहेंगे एक जगह, तभी उनको बेनिफिट मिलेगा, तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि वहाँ रुकें। एम्प्लॉयर के लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि कोशिश करें कि उनके एम्प्लॉय वहीं पर रह जाएं। एम्प्लॉय को एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। आपको पता होगा कि जैसे नए एम्प्लॉय अगर कोई भी ज्वाइन करते हैं तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो यहाँ एक ऐसी स्कीम है जहाँ पे एम्प्लॉयर को भी फ़ायदा हो रहा है, एम्प्लॉई को भी फ़ायदा हो रहा है। जनरली अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जनरली एक कॉन्सेप्ट था इंडिया में कि अगर एम्प्लॉयर हैं तो एम्प्लॉई के अगेंस्ट हैं, एम्प्लॉई हैं तो एम्प्लॉयर के अगेंस्ट हैं। यहाँ इन दोनों को साथ में लेकर चलने की बात हो रही है।
1: और ये होता था कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, भाई आप हमें नौकरी पे रखोगे तभी एक्सपीरियंस मिलेगा,
3: और जब तक नौकरी में आएंगे नहीं तब तक एक्सपीरियंस होगा नहीं। तो एक बहुत अच्छी स्कीम है जहां उनको एक्सपीरियंस गेन करने के लिए भी सरकार प्रोत्साहित कर रही है और एम्प्लॉयर को भी प्रोत्साहित कर रही है कि आप ऐसे लोगों को रखेंगे और सस्टेन करें वहाँ 6 महीने 1 साल के लिए, तो आपको भी इंसेंटिव मिलेगा।
1: जी, दिल्ली से जुड़े हैं धर्मवीर जी।
4: नमस्कार मैडम, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर नमस्कार।
3: नमस्कार
4: सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, तो कुछ जो एम्प्लॉयर होते हैं जो उनकी एज लिमिट निकल जाती है, तो क्या सरकार को चाहिए नहीं कि उनकी एज लिमिट को थोड़ा बढ़ा के रखना चाहिए, जिसको जरूरत है वो ही इसमें भी आ सके, और इसमें जो एम्प्लॉयर है वो कितनी इसकी सैलरी इसको डिसाइड कर सकता है?
0: तो इसमें दो पार्ट आपने पूछा है, एक तो एज का पूछा है। तो स्कीम तो जनरली युवा एम्प्लॉयज़ को प्रोत्साहन मिलता है, बट ऐसा कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। तो अगर कोई 40 साल में भी पहली बार संगठित क्षेत्र में नौकरी पा रहा है तो वो इस बेनिफिट के लिए एलिजिबिलिटी है। एंड दूसरा
1: सैलरी का पूछा है।
0: सैलरी, हाँ, तो इसमें मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये था कि जो हाई अर्निंग हाई इनकम ग्रुप है तो उनको ये बेनिफिट ना दिया जाए। तो 1 लाख से जो नीचे उनका जिसका ग्रॉस सैलरी है वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है।
1: अक्सर हम देखते हैं कि जैसे लोगों को सामाजिक सुरक्षा के बारे में जानकारी नहीं होती, तो इस योजना के जरिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज को किस तरह मजबूत किया जा रहा है?
0: तो इसमें जो सामाजिक सुरक्षा EPFO हम लोग 3 स्कीम चलाते हैं, तो जो भी ये PMVBRY के तहत हमसे जुड़ते हैं तो उनको ये 3 स्कीम के बेनिफिट मिलते हैं। तो इनमें से प्रोविडेंट फंड है जो कि आपके लाइफ टाइम अर्निंग्स को वेरी गुड इंटरेस्ट रेट के साथ हम लोग रिटर्न करते हैं, और इसमें बहुत सारे पार्शल विड्रॉल्स के प्रावधान हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पेंशन एक बहुत बड़ा चीज़ है इसमें, ना केवल उनका सुपर एनुएशन पेंशन बल्कि उनके डेथ केस, इन केस ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी उनको

0: फैमिली को भी पेंशन मिलता है एंड इंश्योरेंस का भी एक कंपोनेंट है लाइफ इंश्योरेंस का।
1: जी पुणेंदु जी, जैसे अक्सर शायद किसी ना किसी के मन में ये प्रश्न होगा कि जो ये योजना है रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बनाई गई है, लेकिन ऐसे में यदि कोई जो नियोक्ता योजना का लाभ प्राप्त करने के बाद कर्मचारी को नौकरी से हटा देता है या उसे लंबे समय तक कार्य में नहीं बना के रखता है, तो क्या ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कोई प्रावधान या निगरानी व्यवस्था है?
2: इसमें एक सिस्टम का ही इनबिल्ट मैकेनिज्म है। जैसे ही अगर कहीं भी एम्प्लॉयमेंट कम होती है जो बेस लाइन से, या थ्रेशोल्ड अगर उसका डाउन होता है, तो एम्प्लॉई तो चलो 6 महीने के बाद अगर वो नहीं रहते हैं वहाँ एम्प्लॉयमेंट में तो उनको नहीं मिलेगा बेनिफिट, लेकिन साथ ही एम्प्लॉयर को भी यह बेनिफिट कम हो जाती है। तो एम्प्लॉयर के लिए काइंड ऑफ डिसइंसेंटिव है कि अगर लोगों को निकाल रहे हैं, हटा रहे हैं, अगर वहाँ पर रिटेन नहीं कर रहे हैं, तो राधर एम्प्लॉयर को अभी ज़्यादा इंसेंटिव इसमें है कि लोगों को रखें, रिटेन करें और उनको ट्रेन करें। तो केवल रिटेन करना ही नहीं होगा, जितने दिन लोग रहेंगे उनके लिए एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एम्प्लॉई के लिए भी फायदा, एम्प्लॉयर के लिए भी फायदा।
1: जी, विन विन सिचुएशन है दोनों।
2: विन-विन है जी।
1: बिहार से जुड़े हैं मोहन पासवान जी।
3: नमस्कार सर।
2: नमस्कार।
3: मैं बसतपुर दरभंगा बिहार से बोल रहा हूँ सर। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि छोटी छोटी कंपनियां लोगों के रोजगार के लिए क्या क्या योजना बनाई है सर, नए स्तर से। दूसरा है सर
2: जी, पूछे
1: जी मोहन जी,
3: सर भारतीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का जो सपना है 2017 तक, इसके लिए कौन से सूत्र तैयार किए गए हैं सर, एवं इसमें युवाओं के रोजगार के लिए क्या क्या योजना बनाए गए हैं सर?
1: जनरलाइज सवाल पूछाना नहीं उन्हें?
2: एक जनरलाइज सवाल है, बहुत सारी योजनाएं तैयार की गई हैं भारत सरकार के द्वारा, उनमें से एक योजना ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है जो 2047 के विजन को ध्यान में रखकर किया गया है। इसमें एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई दोनों को बेनिफिट देते हुए, इंसेंटिव देते हुए ये कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार को जो सृजित कर रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए, वर्कर जो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए। तो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को ओवरऑल इंसेंटिव करने के लिए, इंसेंटिवाइज करने के लिए ये एक बहुत अच्छी योजना है।
1: जी अक्सर मैं एक सवाल जो रहता है जहन में एमएसएमई क्षेत्र को लेकर, जो छोटे छोटे जो रोजगार सृजित करते हैं, तो देश के जो एमएसएमई क्षेत्र को रोजगार का जो प्रमुख हम स्रोत मानते भी हैं, तो इस योजना को एमएसएमई क्षेत्र को क्या लाभ मिलने की संभावना है इस योजना से?
0: तो इसमें एमएसएमई के ऊपर जो जो इसके ऊपर प्रोविजंस है, तो नॉर्मली ईपीएफओ जो लॉ है वो केवल एस्टेब्लिशमेंट्स विद एटलीस्ट 20 एम्प्लॉयज जो है उनके लिए मैंडेटरी है, बट आज के डेट में हमारे पास जो डेटा है उसे बहुत सारे ऐसे एमएसएमई हमसे जुड़े हुए हैं जिसका स्ट्रेंथ 20 से भी कम है, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि उनके लिए उनके छोटा साइज को ध्यान में रखते हुए, उनके कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए उनको केवल 2 एम्प्लॉयज एडिशनल एम्प्लॉयज जनरेट करने का उनको कंडीशन रखा गया है। तो 2 साल के पीरियड में उनको एटलीस्ट 2 नए एडिशनल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है और उनको सस्टेन करना है, तो सारे एमएसएमएस इसमें बहुत बेनिफिट मिलने की आवश्यकता है।
1: तो विनिर्माण क्षेत्र को भी इस जो योजना से बहुत लाभ मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, तो वो किस प्रकार मिलेगा?
0: तो विनिर्माण क्षेत्र में एम्प्लॉयर्स जो है उनके लिए एडिशनल बेनिफिट है इसमें। सो जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन का कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से ये स्कीम चलता है, तो बाकी संस्थाओं को जो 2 साल तक जो बेनिफिट मिलता है हर एक महीने हर एक नेट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट, जो मैन्युफैक्चरिंग में है उनको 4 साल तक इसके स्कीम के बेनिफिट्स मिलते हैं।
1: यदि कोई जो युवा है पूर्णेंदु जी, पहली बार नौकरी शुरू कर रहा है, तो उसे ईपीएफओ से जुड़ी कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना होगा?
2: जो भी नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहली बात तो उनका एक फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू उमंग ऐप पे जब भी वो यूएएन जनरेट होता है तो वहाँ पे उनकी हम आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। जो पार्ट ए का जो बेनिफिट मिल रहा है इस स्कीम में कि फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू उनका होना पड़ेगा। सेकंड, उनका एक डीबीटी इनेबल्ड बैंक अकाउंट होना चाहिए जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए। सो आधार के साथ लिंक होता है, लेकिन आपको बैंक में साथ ही साथ अपना डीबीटी के लिए भी इनेबल करवाना पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ों को अगर ध्यान में रखेंगे, फिर जैसे ही ईपीएफओ में अगर आप जुड़ते हैं, ऑटोमेटिकली आप 6 महीने तक अगर आ रहे हैं यहाँ हमारे साथ, सस्टेन कर गए एक एम्प्लॉयर के साथ, आपका सारा रिटर्न यहाँ आ रहा है, आपका कंप्लायंस हो रहा है,

0: तो ऑटोमेटिकली आपके बेनिफिट कैलकुलेट होके आपके अकाउंट में चले जाते हैं।
1: छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं इंद्र भान जी।
2: डॉक्टर साहब, जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्र भान सिंह बोल रहा हूँ। प्रश्न ये है,
1: सवाल पूछे जी,
2: भारत रोजगार रोजगार में कौन कौन से सेक्टर है,
1: कौन कौन से
0: इसमें sectors? इसमें सारे सेक्टर्स इंक्लूडेड हैं जो भी ईपीएफओ के साथ जुड़े हुए हैं। ये स्कीम ईपीएफओ के थ्रू भारत सरकार चला रही है, वो भी इसलिए यहाँ पे हमारा आइडेंटिफिकेशन यूएएन के थ्रू करते हैं, कंपनीज कवर्ड हैं, तो बेनिफिट बिकॉज आइडेंटिफाइड लोगों को जाती है। तो जितने भी ईपीएफओ के साथ जुड़े हुए संस्थान हैं उनके थ्रू ये सारा कुछ, ये सारी बेनिफिट जाती है
1: जी। अगर किसी के मन में प्रश्न है कि या कोई कर्मचारी है नियोक्ता इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो कोई ऐसा पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर है जिस पर सीधा संपर्क किया जा सकता है?
3: हाँ, तो ये स्कीम के लिए एक डेडिकेटेड वेबसाइट है हमारा, pmvbrv.labor.gov.in। इसमें सारे स्कीम रिलेटेड सारे आपको विशेष उसमें मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको अगर कॉल करके पूछना है तो टोल फ्री नंबर है 1-44-80-1-44-80। इसमें आप मंडे टू सैटरडे 10 to 6 आप कॉल करेंगे तो आपको किसी भी तरह की डाउट है तो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं।
1: जी हाँ, 1-44-80 हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री नंबर है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी शंकाओं का जो भी है निवारण पा सकते हैं। पूर्णेंदु जी, आपसे एक जाते जाते यही आखिरी प्रश्न पूछना चाहूँगी कि ईपीएफओ के आंकड़ों के आधार पर देखें तो पिछले कुछ वर्षों में औपचारिक रोजगार में क्या परिवर्तन देखने को मिले?
0: मैम, हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हैं और ईपीएफओ के आंकड़े ये बताते हैं कि भारत में एक बहुत मेजर चेंज आ रहा है
1: जी।
0: वो जो इनफॉर्मल इकोनॉमी हुआ करती थी वो काफ़ी फॉर्मलाइजेशन की ओर बढ़ रही है और हमें उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में बिकॉज ऑफ दिस स्कीम हम ऐसे उम्मीद करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी और हम सबों को एक फॉर्मल इकोनॉमी, एक विकसित भारत देखने को मिलेगा।
1: जी हाँ, हमें विश्वास है कि आज की चर्चा से युवाओं को रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में उपयोगी जानकारी मिली होगी। धन्यवाद आप दोनों का, पूर्णेंदु जी और प्रणय जी, आप स्टूडियो में आए और हमारे साथ चर्चा की। श्रोताओं, आपका भी धन्यवाद करते हैं जो हमारे साथ जुड़े। अगले सप्ताह फिर से मुलाकात होगी सोमवार को एक नए मुद्दे के साथ। तब तक प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: नमस्कार।
4: यह आकाशवाणी सूरतगढ़ है, रात के 10 बजे हैं। थोड़ी देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे।
5: अमीर चैनल से।

0: खेल जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज के इस अंक में सबसे पहले आप सुनेंगे
1: पैरा स्विमर जगदीश तेली से की गई बातचीत। यह आकाशवाणी केंद्र उदयपुर का अंशदान है।
2: नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि पानी हर बाधा को अपने रास्ते से काटता हुआ आगे बढ़ता रहता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे ही खिलाड़ी जिन्होंने ना सिर्फ पानी की लहरों को बल्कि जीवन में आई हुई सभी चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए सफलता के नए आयाम कायम किए हैं। आइए स्वागत करते हैं जगदीश तेली जी का। जगदीश जी नमस्कार, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
3: जी नमस्कार सर।
2: जगदीश जी, कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले हम आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे।
3: सर, मेरा नाम जगदीश तेली है, मैं राजसमंद का निवासी हूँ और पैरा में मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ।
2: जैसे कहा, आप पैरा स्विमर हो
3: जी,
2: तो ये जो आपके साथ जो घटना हुई है इसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे, ये कैसे हुई और किस उम्र में हुई?
3: सर, ये घटना मैं जब 7 साल का था तब हुई है और उस समय मतलब मुझे भी नहीं पता था इतना नॉलेज, तो क्योंकि छोटा था मैं उस समय, लेकिन ये 7 साल की उम्र मेरे साथ घटना हुई थी।
2: अचानक से हो गई थी ये?
3: अचानक मतलब ऐसे मेरे माता पिता बताते हैं कि अचानक मतलब पैर जो है पैरालिसिस हो गया, मैं चल नहीं पा रहा था। फिर धीरे धीरे जैसे बड़ा हुआ

0: तो वापस थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ था।
1: जैसे आपने कहा आपको 7 साल की उम्र में ये हुआ, तो उसके पहले तो आप एक नॉर्मल किड थे,
0: जी,
1: लेकिन जब ये घटना हुई तो फिर आप
0: एक तरह
1: पैरल
0: का,
1: वो हो गए, आप डिसेबल
0: हाँ,
1: वो हो गए।
0: जो जो चलने में भी सहारे की जरूरत
1: हाँ
0: होती थी उस समय।
1: जी, तो जो समाज है उसका रवैया आपके लिए बिल्कुल बदल गया या वो ही रहा?
0: नहीं, बहुत नेगेटिव था सर,
1: जैसे कि
0: जैसे हीन भावना से या फिर कोई बोल देना, जैसे डायरेक्टली बोल देते थे, मतलब एक ऐसे शब्द बोलने नहीं चाहिए हालांकि, लेकिन अब ऐसे शब्द है कि जैसे लंगड़ा है, ऐसे बोल
1: जी
0: दिया,
1: जी
0: इस तरह की सुनने को मिलता था। अब कुछ नहीं कर पाएगा बच्चा,
1: मतलब वो
0: मतलब
1: समझते थे कि आप बोझ बन जाओगे एक
0: जी
1: तरह
0: बोझ
1: से।
0: बनेगा जी।
1: और आपके माँ बाप क्या सोचते थे?
0: नहीं, उनका मतलब बहुत पॉजिटिव था भाई, जो भी है वैसा है, क्योंकि माँ का एक मतलब कैसा भी बच्चा हो, माँ
1: हाँ
0: बाप का तो लाडला होता है
1: जी।
0: जी, तो वो उसमें तो मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई उनके सपोर्ट से।
1: आपको कब ऐसा लगा कि मुझे कुछ अपनी लाइफ में स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ करना है, खासकर स्विमिंग को लेकर?
0: ये सर एक मतलब एक खेल खेल में हुआ है।
1: खेल
0: मैं
1: अरे
0: जब ऐसे स्विमिंग खाली सीखने जा रहा था, और जब मैंने भक्ति शर्मा का देखा, उदयपुरी जलपुरी नाम से फेमस है,
1: जी
0: और उनकी माता जी के अंदर

0: जी, तो वो उसमें तो मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई उनके सपोर्ट से।
1: आपको कब ऐसा लगा कि मुझे कुछ अपनी लाइफ में स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ करना है, खासकर स्विमिंग को लेकर?
0: ये सर एक मतलब एक खेल खेल में हुआ है। मैं जब ऐसे स्विमिंग खाली सीखने जा रहा था और जब मैंने भक्ति शर्मा का देखा, उदयपुरी जलपुरी नाम से फेमस है
1: जी,
0: और उनकी माता जी के अंदर में मैंने स्विमिंग सीखी थी बाद में, तो उनका मैंने एक आर्टिकल देखा जिसमें वो इंग्लिश चैनल पार किया था 2016 में, तब से मेरे भी मन में आया कि लड़की होके कर सकती है। तो मैं खाली राजमंदिर क्यों, मैं नहीं सोचा कि मैं राजमंदिर में भी पार करूँ, तो मैंने ऐसे सोचा था और किसी को बोला मैंने भाई मैंने ऐसे राजमंदिर पार करनी, तो मुझे बोला कि नहीं नहीं तू तो दिव्यांग नहीं कर पाएगा। तो फिर मैंने दिमाग से आने अब तो करना ही है, मतलब एकदम तरह का मैंने पॉजिटिव लिया कि नहीं नहीं अब तो मुझे करना है, उन्होंने मना किया इसका मतलब, तो क्योंकि मुझे स्विमिंग आ गई थी और मुझे पता है कि मैं डूबूंगा तो नहीं, कम से कम कैसा भी हो जाए, मौसम कैसा हो जाए भले या फिर कुछ भी हो जाए।
1: स्विमिंग में सबसे ज़रूरी होती है कि आपके हाथों के साथ साथ पैरों का भी इस्तेमाल हो
0: जी,
1: ठीक है? तो आपको शुरुआती दौर में किन बाधाओं का सामना करना पड़ा?
0: सर एक भगवान मतलब एक लोग कहते हैं कि भगवान कुछ लेता है तो देता भी है, तो मेरे में एक चीज़ थी कि मेरे जब कोच भी बोलते सब कि मेरे जो पैर में जो पोलियो है उसके जब मतलब पता नहीं मतलब, लेकिन मेरा हाथ में जो हाथ है आम स्विमर जो होते हैं उनसे थोड़े लंबे हैं।
1: अच्छा।
0: तो मेरे वो मुझे फ़ायदा मिला उसका,
1: उस चीज़ का फ़ायदा मिला
0: जी।
1: और फिर जब आपने शुरुआत की तो फिर कहाँ से, नॉर्मल स्विमिंग से ही की कि जैसे आप गाँव में तो लोग तालाबों से शुरुआत करते हैं?
0: तालाबों से सर, वही नॉर्मल स्विमिंग जो देसी गाँव में होती है, क्योंकि मुझे फ्री स्टाइल का स्ट्रोक भी उदयपुर में आया तब पता चला क्योंकि ये एक्यूरेट स्विमिंग ये भी होती है।
1: अच्छा। और फिर उसके बाद फिर आप कैसे कैसे धीरे धीरे अप्रोच करते गए?
0: मैं फर्स्ट टाइम सर यहाँ यूपी में एक रिवर स्विमिंग थी नेशनल इवेंट, उसमें गया और ब्रॉन्ज मेडल लगा, तो एक तरह का होता है जैसे एक मेडल लग गया तो आपके पंख लग गए हो।
1: हाँ बिल्कुल
0: जी, तो उस टाइप का मेरा वहाँ हुआ। फिर मेरा मतलब एक अब खुद में भी सर पॉजिटिव सोच ये सब जागृत हो जाती है कि एक मेडल लग गया तो मतलब आपको फिर धीरे धीरे सब रास्ते भी खुल जाते हैं कहाँ से कहाँ आगे क्या बढ़ना है, आगे के जो भी स्ट्रोक है कैसे सीखने हैं ये चीज़ें सब।
1: एज अ पैरा स्विमर और नॉर्मल स्विमर जब सीखते हैं तो इन दोनों में ट्रेनिंग को लेके क्या अलग अलग रवैया रहता है
0: बहुत,
1: या फिर मतलब टेक्निक वगैरह कुछ अलग रहती है दोनों में?
0: नहीं तकनीक तो सर सेम होती है, लेकिन समझाने का तरीका जो होता है
1: जी,
0: जैसे आम स्विमर है उनको कोच समझा सकता है उनके तरीके से क्योंकि उनको पता है वो। आज हमें पूरे भारत में कई बहुत कम देखने को मिलते हैं दिव्यांग के लिए स्पेशल कोई कोच हो।
1: बिल्कुल।
0: तो अब कोच दिव्यांग अगर के लिए दिव्यांग के लिए होगा तो वो उसकी तरफ से समझा सकता है क्योंकि उनने वो फेस किया है। अब जैसे मैं हूँ, मैं दिव्यांग हूँ और मेरे जो स्टूडेंट है मुझे पता है ये अगर पैर नहीं है तो क्या तरीका अपनाएंगे तो जाके वो मेडल लाएगा, तो उस तरीके से वो अब धीरे धीरे होने लगा है। पहले ये नहीं था कि दिव्यांग के लिए समझाने वाला हो, जैसे मुझे बहुत सारी जगह ऐसे भी थे कि नॉर्मल स्विमर जो स्विमर स्विमिंग कर रहे हैं उससे अलग रखा जाता है भाई ये तू अलग यहाँ पर कर ले, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हुई कि मैं उनके पास में हालाँकि उनके साथ नहीं कर रहा हूँ लेकिन पास में करके मैं उनके तरह के कॉपी करने की कोशिश करता था, तो उससे मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ ज़्यादा।
1: तो ये स्विमिंग करने के लिए कुछ जैसे स्पेशल इक्विपमेंट्स का भी इस्तेमाल होता है
0: जी, जी।
1: पैरा स्विमर्स के लिए कि वही इक्विपमेंट्स होते हैं जो नॉर्मल स्विमर्स के लिए रहते हैं?
0: पैरा में कुछ अब आने लगे हैं, पहले नहीं होते थे इतने,
1: पहले नहीं होते थे
0: जी।
1: अब टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जा रही
0: अब
1: है,
0: अब अपग्रेड होते जा रही है, जैसे अभी डाइविंग के लिए भी आ रहे हैं, सपोर्ट के लिए आ रहे हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई अब।
1: अच्छा, जब आपने अपना पहला मेडल जीता था जैसे कि आपने बताया ब्रॉन्ज मेडल था
0: जी,
1: है ना, उसके बाद जो समाज का रवैया था वो कितना चेंज हुआ आपके प्रति?
0: जो लोग सर मुझे बोलते थे पहले, जैसे मैंने राजमंदिर पार करी उस समय मुझे जो बोलते थे भाई तू नहीं कर पाएगा ऐसा वैसा, वही लोग जैसे माला लेके आए फिर वही लोग तारीफ करते थे तो वो फिर एक अलग ही खुशी देता था।
1: आपने इंटरनेशनल भी कम्पीट किया है
0: जी,
1: तो जो आपका फर्स्ट इंटरनेशनल इवेंट था जिसमें आप कॉम्पिटिशन में जा रहे थे उस समय आपकी क्या फीलिंग थी? कभी आपने सोचा था कि मैं एज अ पैरा स्विमर इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर पाऊंगा?
0: सर सोचा तो नहीं था क्योंकि मैं एक किसान परिवार से आता हूँ, तो इतना बड़ा सोचना मेरे लिए बहुत बड़े एक सपने की तरह था
1: जी।
0: लेकिन जब समाज का सपोर्ट, अपने घर वालों का सपोर्ट, सबका जो कोच का जो रवैया है या भी उनका जो तरीका है अपने बताने का फेस करने का, उससे सर मुझे बहुत मतलब फ़ायदा हुआ है। और समाज जब एक होता है ना, जब मेरा आप बोला ब्रॉन्ज मेडल आया उसके बाद से मेरा लाइफ एक तरह का जैसे चेंज होने लगी थी, तो उससे मतलब अब जब इंटरनेशनल जा रहे हो आप तो उसमें तो होता ही सर एक प्रेशर तो होता है हालांकि वो वाले खेलने का, लेकिन एक खुशी भी होती है कि चलो एक गांव से निकल के यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी
1: जी। बिल्कुल। आपकी उपलब्धियों में सबसे बड़ी चीज़ है इंग्लिश चैनल और कैटालिना चैनल की
0: जी,
1: इन दोनों चैनलों के बारे

0: में आपके मन में सबसे पहले विचार क्या आया
1: सर? मेरा
0: और
1: सपना
0: कहाँ से आया, मतलब आपने कैसे सोचा कि मैं इन दोनों चैनलों में उतरूं और इनको पार करूं?
1: मैं सर है मतलब जब स्विमिंग की मेरी शुरुआत हुई थी मेन, तब मैं निकला इसलिए था कि इंग्लिश चैनल करना। 2009 में 10 में हमारा प्लान था कि इंग्लिश
0: अच्छा,
1: चैनल
0: आपने उनसे जो उदयपुर की जो
1: जी
0: भक्ति
1: जी
0: जी थी,
1: हाँ
0: हाँ, उनसे प्रेरणा लेके?
1: उनसे प्रेरणा ली कि भाई मुझे भी इंग्लिश चैनल करना है।
0: हाँ
1: लेकिन क्या हुआ कि ऐसे जैसे तो सर फंड की भी जरूरत होती है।
0: जी
1: अब मैं
0: बिल्कुल,
1: जैसे मैंने पहले बताया कि परिवार में किसान परिवार से हूँ, तो इतना वहाँ से तो होना नहीं, मतलब बाहर तक जाना मतलब सोचने से भी, और ट्रेनिंग के लिए भी नहीं हो रहा तो वहाँ तो क्या होगा सर। तो फिर पैसे नहीं हुए थे, तो मतलब 2010 तक मेरे बजट नहीं हुआ था, तो फिर नहीं कर पाया मैं। लेकिन जब मेरे स्टेट लेवल पे नेशनल पे मेडल लगने शुरू हो गए और लोगों का जैसे सपोर्ट मिलना शुरू हुआ, तो अलग अलग बहुत सारी कंपनियों भी हमें सपोर्ट किया। जैसे हमारे केलवा से भी कुछ संस्थाएं हैं, राजसमंद से, उदयपुर से हैं, मुंबई से हैं, ऐसी ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया था, और उससे हम इंग्लिश चैनल करके आए। और इंग्लिश चैनल में हमारा सर एक पैरा ग्रुप बना, जैसे हम नेशनल लेवल पर मिलते रहते खिलाड़ी लोग, तो उसमें हमारा एक ग्रुप बना, उसमें बोला सबको करना था इंग्लिश चैनल। तो हमने वहीं से एक प्लान करके 2018 में प्लान किया कि अब करना है। तो फिर हम रोहन, हमारे जो कोच थे रोहन मोरे जो पुणे के हैं, उनके दिशा निर्देशन में हमने ट्रेनिंग करी वहाँ, और फिर 2018 में करके आए हम।
0: तो जब आप इंग्लिश चैनल पार कर रहे थे, तो उस समय आपको क्या रियलाइज हुआ, कितनी बड़ी चुनौती है और ये उस समय क्या-क्या बाधाएं आईं?
1: सर हम एक तो इंग्लिश चलना अपन बोलते हैं यहाँ, यहाँ खाली खाली बोलना देखना मतलब करना ऐसा सोचना आसान है, लेकिन जब हम वहाँ हम गए ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ जो लगा कि जैसे एक हाथ पैर सुन्न हो जाना,
0: बिल्कुल,
1: ये चीज़ें हमारी
0: पानी का
1: जो,
0: बहाव भी ज्यादा होता
1: हाँ,
0: है।
1: तो दिमाग में कभी भी ऐसा हमारे भी दिमाग में आया था कि यार इसकी जगह कोई दूसरा गेम चूज़ करते तो अच्छा था, क्योंकि इतना ठंडा पानी और
0: ठंडा
1: खाली
0: पानी,
1: यहाँ मतलब कि दूसरा गेम करते तो ठंड से बच जाते हैं, लेकिन वहाँ चलो गे हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे हमने ट्रेनिंग करी वहीं पे, तो हम उसी लेवल मतलब जहाँ पे हम देखते थे वहाँ के लोग एकदम ओपन, जैसे हम कट में घूम रहे हैं कट कपड़े पहन के, और हम ऐसे जो अपने सर्दियों में पहनते हैं वो कपड़े पहन के घूम रहे थे। तो वहाँ पे फिर लगा कि सर ये मतलब इसके तो ये अब हम कैसे कर पाएंगे। तो धीरे धीरे धीरे हम 1.5 महीना वहाँ प्रैक्टिस करी, उसके बाद में हमने उसी उनकी तरह आराम से कर लिया जैसे।
0: और फिर उसके बाद कैटेलिना चैनल का नंबर आया।
1: जी
0: जो चुनौतियां इंग्लिश चैनल के समय थी, क्या वही चुनौतियां कैटेलिना चैनल के समय थी कि वहां पे
1: नहीं,
0: कुछ विपरीत वो माहौल था?
1: वो विपरीत माहौल था वहाँ। इंग्लिश चैनल बहुत टफ है
0: हाँ
1: और केरला चैनल थोड़ा सा लाइट, मतलब थोड़ा सा मतलब आप एकदम इजी भी नहीं मान सकते उसको, लेकिन थोड़ा लाइट है, जो ठंडे जो कम ठंडा है जैसे, और चैलेंजिंग नहीं। इंग्लिश चैनल में बहुत करंट आते हैं, जैसे करंट वेव आते हैं अंदर के जो आपको पीछे खींचते हैं, तो केरला चैनल में इतना नहीं था। और प्लान था हमारा कि जैसे इंग्लिश चैनल करना फिर केरला चैनल करना, 7C का टारगेट था, लेकिन फिर लॉकडाउन की वजह से नहीं कर पाए थे।
0: अच्छा सर, आप एक ट्रेनर भी हैं, इस ट्रेनर
1: जी
0: आपके पास जब कोई बच्चा स्विमिंग के लिए आता है, खासकर पैरा स्विमर, उसमें आप सबसे पहले कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करते हैं कि वो पानी में उतर के स्विमिंग कर ही पाएगा?
1: नहीं, उनको विश्वास में लेते सर, प्यार से भी बच्चे मतलब कर लेते हैं, जैसे साम दाम दंड भेद सब अपनाने पड़ते हैं हालांकि,
0: अच्छा
1: लेकिन पहले जो होता है प्यार से समझाना जैसे करना ना कराना वो कर लेते हैं। हालांकि ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत नहीं होती है ना। और पैरा स्विमर तो सर वैसे ही वो आते हैं, मतलब ऐसे मैंने अब तक जो सिखाए जितने भी पैरा हैं, मुझे जो नॉर्मल लोगों को सिखाना और उनको सिखाना बहुत आसान लगा, मतलब पैरा को सिखाना मुझे बहुत आसान लगा।
0: ऐसा
1: अब
0: क्यों?
1: पता नहीं ये अलग ही उनके अंदर एक सर अलग ही होता है, वो जुनून होता है थोड़ा सा एक, क्योंकि
0: हाँ,
1: वहाँ तक आना
0: कुछ
1: जो,
0: साबित करने का जुनून रहता है
1: हाँ
0: किसी
1: बस
0: को भी।
1: साबित करने का जुनून होता है। बाकी होता है नॉर्मल जो भी आते हैं सीखेंगे तो ठीक है, नहीं तो वापस चले जाएंगे सर।
0: आप
1: लेकिन
0: पिछले कितने सालों से सिखा रहे हैं?
1: मैं 4 साल हो गए सर सिखाते
0: तो इन
1: सिखाते
0: 4 सालों में आपका ऐसा कोई शिष्य जिसने बहुत ज्यादा मतलब काफी उपलब्धि हासिल कर ली हो?
1: एक है हमारा विष्णु कुमार बेरवा, जो अभी हाल ही में वो एक गोल्ड 2 सिल्वर लेके आया है बेंगलोर में पैरा जूनियर पैरा में।
0: आपके नॉर्मल स्टूडेंट से ज्यादा उपलब्धि उन्होंने
1: जी
0: हासिल की
1: जी
0: है।
1: हाँ,
0: अच्छा जगदीश जी, जाते जाते हमारे जो श्रोता है उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: हमारा उद्देश्य ये है कि हर व्यक्ति को अपने बचाव इतना स्विमिंग आनी चाहिए। अगर आप हो सके कंपटीशन की तैयारी करते तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने बचाव जितने तो हर व्यक्ति को सीखनी चाहिए, और माता पिता को भी अपने बच्चों को अपने बचाव जितने सिखानी चाहिए।
0: तो श्रोताओं, ये थे श्री जगदीश तेली जी। आपने अपनी कहानी से ये बताया, ये साबित किया कि शारीरिक बाधाएं सिर्फ नाम की होती है, अगर आपका मानसिक ताकत हो और आपके पास कर जाने का जुनून हो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, भले वो इंग्लिश चैनल हो या कैटेलियन चैनल हो। और हम आशा करते हैं कि आप भविष्य में सातों के सातों चैनल पार करें,
1: जी धन्यवाद
0: हमारे
1: सर,
0: उदयपुर का, राजसमंद का और हमारे देश का नाम रोशन करें। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।
1: धन्यवाद सर।
2: अभी आप

0: सुन रहे थे पैरा स्वीमर जगदीश तेली से की गई बातचीत। यह आकाशवाणी केंद्र उदयपुर का अंशदान था। श्रोताओं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं टेबल टेनिस खिलाड़ी प्रखर मदान से की गई बातचीत।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसे खिलाड़ी से मिलवा रहे हैं जिसका खेल बहुत ही तेज गति का है और उसमें शॉट मारने के लिए आपको इतना कम समय मिलता है जैसे सेकंड के 100वें हिस्से से भी कम समय में आपको ये डिसीजन लेना पड़ता है कि आप उस खेल के शॉट को कहाँ और कैसे मारें ताकि आप अधिक से अधिक अपने पॉइंट बना सकें। जी हाँ, उस खेल का नाम है टेबल टेनिस और टेबल टेनिस के एक खिलाड़ी के तौर पर आज हमारे साथ हैं श्री प्रखर मदान। प्रखर मदान, नमस्कार, स्वागत है आपका।
2: नमस्कार
1: प्रखर, टेबल टेनिस की बात की और जो जैसा कि मैंने कहा कि इतना कम समय मिलता है, सेकंड के 100वें हिस्से से भी कम जब आपको शॉट मारना पड़ता है, ये बात सच है?
2: हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। आपको आधा सेकंड से एक सेकंड रहता है, उसमें आपको पूरा डिसाइड करना होता है आपके पास बॉल स्पिन कौन सी आ रही है, कैसे कितनी स्पीड में बॉल आ रही है, सामने वाला प्लेयर कहाँ पर खड़ा है, आपको वो बॉल कहाँ पर प्लेस करनी है, ये सब चीज़ें आपको आधे से एक सेकंड में डिसाइड करके ही सब कुछ आपका फैसला लेके आपको उधर बॉल प्लेस करनी होती है।
1: इतनी तेज गति का खेल है ये जिसमें इतना कम समय हमको शॉट मारने के लिए सोचने का समय मिलता है कि हम कैसे अपने पॉइंट्स को बचाएं और अधिक से अधिक अपने पॉइंट बनाएं। टेबल टेनिस के खेल की तरफ आपका झुकाव कैसे हुआ?
2: तो ये स्टार्ट हुआ था जब मैं करीब 10 साल के आसपास का था, जब मैं फिफ्थ क्लास में था।
1: जी,
2: तो मेरे पापा ने मुझे इसके लिए इसमें लगाया है, मतलब मेरे पापा बहुत खेलते थे टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कैरम। तो इसका शुरुआत हुआ, मेरे पापा ने एक टूर्नामेंट जीता था तो वो बहुत सारे प्राइजेस लेके आए थे घर पे एक बार, तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, तो मैंने ऐसे ही पापा से सीखना चालू किया मेरे घर की डाइनिंग टेबल पे।
1: अच्छा,
2: तो मेरे पापा हमेशा ऑफिस से आते थे तो मैं डाइनिंग टेबल हमेशा रेडी करके सेट करके उस पर नेट वेट लगा के मैं हमेशा तैयार रहता था और पूरा इंतज़ार करता था उनका, और फिर मेरे पापा ने मेरे को खेलना सिखाया उसका। तो धीरे धीरे ऐसा चलता रहा, हम लोग खेले ऐसा 2-3 महीने, फिर मैं धीरे धीरे मेरे पापा को टक्कर देने लगा।
1: अच्छा।
2: पापा के साथ अच्छा जीतने लगा, मतलब वॉल प्रैक्टिस करता था मैं पापा, फिर घर आते थे तो खेलता था उनके साथ। तो फिर ऐसे ऐसे मेरा गेम काफ़ी इम्प्रूव हुआ और उसके बाद फिर ये देख के मैंने स्कूल में भी खेलना चालू करा, तो स्कूल में फिर मेरा धीरे धीरे हाउस टीम में सिलेक्शन हुआ। फिर ये ऐसा ऐसा करके मैंने फिर शाम को मैं आके डाइनिंग टेबल पे फिर मेरे को छोटी लगने लगी, और फिर मेरे पापा ने मेरे को, जो मैं तब अलवर में रहता था
1: जी,
2: तो अलवर में स्टेडियम था एक, वहाँ पे अच्छे प्लेयर खेलते थे, तो धीरे धीरे मैं अपनी मम्मा के साथ जाता था वहाँ पे शाम को खेलने, तो वहाँ पे मैंने खेलना स्टार्ट किया। फिर ऐसा करीब ये चला होगा 1 से 2 साल, फिर मैं अपनी स्कूल की टीम में सेलेक्ट हुआ, तो तब मैं सबसे छोटा प्लेयर था जो स्कूल की टीम में सेलेक्ट हुआ था 7th क्लास में। फिर उसके बाद हम लोग ने डिस्ट्रिक्ट खेला, तो 8th स्टैंडर्ड की बात है, तो मैं डिस्ट्रिक्ट खेला था जिसमें मेरा पहली बार ही मैं डिस्ट्रिक्ट खेला था और पहली बार में मेरा स्टेट में सिलेक्शन हो गया था। तो ऐसे ही चला। फिर 9th स्टैंडर्ड में भी मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला और 9th स्टैंडर्ड में मैं डिस्ट्रिक्ट में एज अ, मैंने 8th स्टैंडर्ड में मैं 5th क्वालिफाई किया था सिर्फ, बाकी 9th स्टैंडर्ड में मैंने 2nd स्थान प्राप्त किया पूरे जयपुर में।
1: जी,
2: तो उससे मेरा फिर वापस स्टेट हुआ और फिर उसी साल मैंने पूरे ऑल ओवर राजस्थान में 4th रैंक हासिल करी थी एज अ स्टेट लेवल पे।
1: जैसा आप बता रहे हैं कि 7th से आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलना शुरू किया और लगातार पहली दूसरी पोजीशन के आसपास ही आप स्टैंड करते रहे, और पापा ने आपको को देख कर आपको इसका शौक लगा। अभी खेलते खेलते आपको काफ़ी अर्सा हो गया है, और स्टेट के बाद में क्या कभी नेशनल टूर्नामेंट में किसी में जाने का मौका मिला जहाँ पर दूसरे स्टेट के प्लेयर्स भी आए हों?
2: स्टेट के बाद हमारा ऐसा होता है, जब मैं 4th रैंक आई थी मेरी ऑल ओवर राजस्थान में, मतलब पूरे स्टेट में, तब हमारा नेशनल कैंप लगता है जिसमें 10 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, जो एक रहता है आपका क्वार्टर फाइनल में जो 8 लोग आते हैं, उसके बाद 2 बच्चे वो उनकी ओवरऑल रैंकिंग एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस देख के 2 लोग जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स रहते हैं टेबल टेनिस के वो लोग सेलेक्ट करते हैं। तो उसका 10 लोग का हमारा नेशनल कैंप हुआ था जयपुर में, 2014 की बात है ये, तो 2014 में नेशनल कैंप हुआ था, तो उसमें मैं थोड़े से रैंक से रह गया था, तो 5 लोग क्वालिफाई करते हैं उसमें, तो मैं 6th पोजीशन पे आया था, तो उस साल मैं नहीं खेल पाया था। फिर नेक्स्ट ईयर भी 10th स्टैंडर्ड में भी मैं गया था खेलने स्टेट लेवल पे मैं 3 बार स्टेट लेवल खेला हूँ और 3 बार टीम इवेंट में हम लोग सेकंड आए हैं, 2 बार मैं जयपुर की तरफ से खेला हूँ और 1 साल मैं 8th स्टैंडर्ड में अलवर की तरफ से खेला हूँ।
1: जी हाँ, प्रखर मदान, आप काफ़ी तेज गति से इस गेम को खेलते

0: हैं और इससे कहते हैं कि हमारी बॉडी का जो स्टेमिना है काफ़ी इसमें चाहिए खेलने के लिए। वास्तव में अगर हम टेबल टेनिस की टेक्निक को सीखना चाहें, क्या टेक्निक का गेम है या माइंड का गेम है, किस तरह से हम इसको खेलते हैं?
1: तो जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं कहना चाहूँगा कि ये दोनों का ही गेम है। गति का भी गेम रहेगा इसमें, और इसमें आपका टेक्निक भी बहुत रहता है, और ये बहुत धीरे धीरे आपको आता है। आप सोचोगे कि आपको बहुत जल्दी आ जाए, ऐसा नहीं रहता। ये बहुत ही आपके आपको बहुत इसमें अनुभव चाहिए, बहुत टाइम की प्रैक्टिस चाहिए, तभी आप इसमें वो मास्टर कर सकते हैं ऐसे। क्योंकि बहुत स्पीड से बॉल आती है और बहुत तरीके की स्पिन होती है इसमें। साइड स्पिन होती है, बैक स्पिन होती है, फॉरवर्ड स्पिन होती है। तो आपको वो चीज़ें एनालाइज करने में और देख के खेलने में काफ़ी समय लगता है, बहुत टाइम लगेगा आपको ये सब सीखने में। तो उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, मतलब स्टैमिना के लिए भी, मतलब मेरा कोच मुझे मल्टी बॉल वो प्रैक्टिस कराता था, उसमें बहुत ज़्यादा स्टैमिना चाहिए होता है। फिर आपका फुटवर्क आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय होता है कि आप पोजीशन से इधर लेफ्ट से राइट, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करें। तो फुटवर्क भी इसमें एक बहुत ज़्यादा, इसमें आपको बहुत ज़्यादा काम का है, तो उसका आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है। और बाकी मेरा कोच मुझे ये मल्टी मल्टी बॉल से, और उसके उससे मेरा स्टैमिना काफ़ी इम्प्रूव हुआ था।
0: जैसा आप बता रहे हैं कि आपके कोच ने आपको सिखाने में काफ़ी मेहनत की, आपने दो शब्दों का इसमें इस्तेमाल किया है, फुटवर्क और स्पिन। ऐसा लगता है जैसे क्रिकेट की बात कर रहे हैं
1: हाँ, वो
0: हम
1: बॉल का गेम में तो सब में ही रहता है आपका। आप टेनिस ले लो, टेनिस और टेबल टेनिस दोनों में ही आपका सारा स्पिन रहता है, बैक स्पिन, फॉरवर्ड स्पिन, साइड स्पिन। तो वो सब आपको देख के खेलना पड़ता है कि आपको कब साइड स्पिन का, आपको कैसे सामने वाले को रिप्लाई करना है एज अ बैट से, तो वो सब आपको देख के ही करना पड़ता है।
0: प्रखर, कभी आपको लगा खेलते खेलते कि यार एक बहुत ही टफ गेम है और इसमें काफ़ी स्पीड चाहिए और मुझे गेम बदलना चाहिए, कुछ और खेलूँ, ऐसा विचार मन में आया कभी?
1: नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा विचार आया, लेकिन मैं ज़रूर, मैंने बैडमिंटन भी बहुत खेला है, मेरे पापा ने सिखाया वो भी मेरे को, तो मैंने बैडमिंटन भी बहुत खेला है और लॉन टेनिस। तो मैंने सारे तीनों रैकेट स्पोर्ट्स बहुत खेले हैं, बट प्रोफेशनली मैंने टेबल टेनिस को ही वो चुना, क्योंकि मेरे को उसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता था। लेकिन एज अ मैं बोलूँगा, लेकिन काफ़ी ये टेबल टेनिस और लॉन टेनिस काफ़ी सिमिलर गेम है, क्योंकि इसमें आपका स्पिन वगैरह सब ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। लेकिन थोड़ा, लेकिन बैडमिंटन ही भी खेला है, तो फुटवर्क मेरा उन सब से भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि बैडमिंटन बैडमिंटन में थोड़ा आपका बड़ा एरिया हो जाता है, तो
0: जी
1: उसके लिए आपको और फुटवर्क ज़्यादा अच्छा चाहिए होता है। तो मैं कहूँगा कि मेरा बैडमिंटन और लॉन टेनिस खेलने से भी मेरे गेम में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है।
0: इसका मतलब ये हुआ कि एक टेबल टेनिस के प्लेयर को बैडमिंटन और टेनिस दोनों खेलना जरूरी है ताकि
1: नहीं,
0: उससे
1: खेलना ज़रूरी नहीं कहूँगा मैं, लेकिन अगर आप खेलते हैं तो आपका फुटवर्क और ये सब जो,
0: मतलब आपकी गेम में इम्प्रूवमेंट आता
1: हाँ,
0: है।
1: गेम में इम्प्रूवमेंट आ सकता है। करेक्ट।
0: ऐसा कोई मैच याद है जब आपको बिल्कुल नेक टू नेक लग रहा था कि मैं हार जाऊंगा और हारते हारते जीत गए, या ऐसा कि मैं जीत रहा था और जीतते जीतते हार गया?
1: तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मेरा नेशनल कैंप लगा था, 9th स्टैंडर्ड की बात है ये, तो उसमें मेरा वो चल रहा था, प्री क्वार्टर फाइनल चल रहा था, जिसमें 16 लोग रहते हैं।
0: जी
1: तो उसमें मेरे को नेशनल कैंप क्वालिफाई करने के लिए आपको टॉप 8 में आना चाहिए, जो कि होता है क्वार्टर फाइनल। तो उसमें मुझे अच्छे से याद है, मेरा मेरा एक दोस्त ही था, मैं तब 8th स्टैंडर्ड में अलवर के लिए, अलवर से खेलता था, और 9th स्टैंडर्ड में मेरे पापा का ट्रांसफ़र हुआ था जयपुर, तो हमने, मैं जयपुर के उससे खेल रहा था। तो मेरे दोस्त से ही मेरा मैच था, जिसके साथ मैं अलवर में प्रैक्टिस किया करता था। तो वो 2-0 जीत रहा था, और ये तीसरा बेस्ट ऑफ 5 का मैच था, वो 2-0 अप था, और थर्ड मैच भी मैं वो 10-7 पॉइंट चल रहा था। तो टेबल टेनिस का मैच होता है 11 पॉइंट्स का मैच होता है, तो 10-7 का स्कोर चल रहा था। और उसके बाद मैंने 3 पॉइंट लगातार लेके ड्यूस पे मैं मैच को लेकर आया, और उसके बाद लगातार मैंने अगले 2 गेम भी जीते, और उसी से ही मेरा नेशनल कैंप में सिलेक्शन हुआ था। और उसी परफॉर्मेंस के चक्कर में मैं, मतलब, काफ़ी फेमस हो गया था, और जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं आपके टेबल टेनिस के, उनके भी उसमें आ गया था मैं। तो फिर उसके बाद मेरा नेशनल कैंप लगा, उसमें मैंने प्रैक्टिस करी, बट कुछ कारण के चक्कर में मेरा नेशनल में सिलेक्शन नहीं हो पाया था, मैं
0: जी
1: कैंप
0: हाँ,
1: में बाहर हो गया था। बट वो मैच एक ऐसा मैच है जो मैं कभी नहीं
0: तभी
1: भूलूंगा, जिसके
0: जी जी
1: चक्कर में मेरा काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी आया, मैं काफ़ी लोगों से मिला भी सही, और मतलब गेम चेंजिंग मैच था वो मेरे लिए।
0: प्रखर, अक्सर हम देखते हैं कि बहुत जुनूनी खिलाड़ी किसी अच्छे खिलाड़ी को देखकर, उसका मैच देख देख कर गेम सीख जाते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा भी हम मानते हैं कि अगर आपको परफेक्ट खिलाड़ी बनना है तो एक कोच होना जरूरी है जो आपके सारे कमियों को दूर कर दे और आपको एक परफेक्ट प्लेयर बनाए। तो कोच का रोल टेबल टेनिस में कितना है?
1: कोच का रोल बहुत होता है आपका। तो जैसा कि मैं इधर जयपुर के SMS स्टेडियम में खेला करता था, तो हमारे उधर एक संजय सर करके होते थे, तो उन्होंने मेरा बहुत सहयोग दिया है मेरे साथ। उन्होंने मेरा सारा, जो मेरा पूरा एक आपका मूवमेंट रहता है हैंड का, तो आपका, मेरा स्टार्टिंग में रिस्ट बहुत मूव होता था, तो जो कि आपका नहीं होना चाहिए। तो

0: रिस्ट का जो इम्प्रूवमेंट होता है वो टेबल टेनिस में बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है,
1: जी
0: तो वो मेरा उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव करा है, तो मैं उनको उसके लिए बहुत, मेरा उसके बाद से ही काफ़ी इम्प्रूव हुआ है गेम, तो काफ़ी महत्व रहता है। बाकी जो आपके आपको जब आपका मैच खेलते हो आप, आपको उसमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तब कोच, तब का भी कोच बहुत मतलब सपोर्ट करते हैं आपको, तो वो
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: सही अच्छा रहता है।
1: ऐसा कोई खिलाड़ी जिसको देखकर आप चाहते हैं कि मैं भी उसके जैसा खिलाड़ी बनूं, एक बड़ा खिलाड़ी, एक रोल मॉडल जो होता है ना, जो हमें काफ़ी प्रेरित करता है कि यार अगर टेबल टेनिस में खेल रहा हूं तो मुझे इसका गेम बहुत अच्छा लगता है।
0: तो इसके लिए मैं दो लोग को वो करूँगा, एक है तिमो बोल जो कि है जर्मनी के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत बार वो वर्ल्ड नंबर वन, 4 से 5 बार वर्ल्ड नंबर वन का उनका वो रहा है, बाकी
1: रैंकिंग
0: रैंकिंग रही है, एंड वो अभी भी 41 ईयर्स के हैं, लेकिन वो अभी भी खेल रहे हैं और अभी भी वो टॉप 20 टॉप 10 में आते रहते हैं। तो उनको ही देख के मैंने यूट्यूब पे उनके बहुत वीडियोज़ देखे हैं, उनकी टेक्निक से मैंने अपने आप को बहुत घर पर प्रैक्टिस करके बहुत इम्प्रूव करा है। और एक दूसरा नाम मैं लेना चाहूँगा, मानव ठक्कर करके, वो इंडिया के ही खिलाड़ी है और वो काफ़ी यंग लेवल के खिलाड़ी है जो कि अभी अपने इंडिया कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनको मैंने यहाँ पे जयपुर में भी खेलते हुए देखा है, वो अजमेर में प्रैक्टिस करते थे PSPB अकेडमी में, तो उनको मैंने देख के मतलब काफ़ी मैंने अपना रोल मॉडल माना है, वो काफ़ी कम उम्र से वो खेलना चालू करे थे और काफ़ी अच्छा खेलते हैं वो, और अभी सबसे छोटे प्लेयर होंगे जो
1: जी
0: वर्ल्ड
1: हाँ
0: इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे
1: प्रखर,
0: हैं।
1: आप अभी एक जॉब में भी आ गए हैं और आपका खेलना भी जारी है, तो आगे आपका इस खेल को लेकर टेबल टेनिस में कोई अच्छा सा ड्रीम होगा, क्या करना चाहेंगे?
0: तो जैसा मैंने आपको बताया था कि 9th स्टैंडर्ड में मैं नेशनल कैंप तक ही जा पाया था और फिर मेरा नेशनल में कभी खेला भी नहीं था, 10th स्टैंडर्ड में मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया था, तो वो मेरा अभी अधूरा रह रखा है, तो उसको मैं, अगर मेरे को टाइम मिला अभी जॉब के साथ, तो मैं अभी भी प्रैक्टिस करता हूँ, जैसे हमने कॉरपोरेट इवेंट्स भी खेलते हैं, तो अभी भी मैं
1: जी
0: शाम को जॉब से आने के बाद प्रैक्टिस करता हूँ, तो वो मेरा अगर पूरा हो पाएगा तो नेशनल खेलने का एक, तो मैं मतलब वो मेरा है सपना एक तरीके से, एक बार नेशनल खेलना है मेरे को, तो उसके लिए मैं एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करूँगा और
1: जी
0: सही
1: जी
0: पूरा करूँगा।
1: क्या कहना चाहेंगे नए दौर के खिलाड़ियों के लिए जो नए नए आ रहे हैं टेबल टेनिस में, कि वो थोड़ा सा पेशेंस रखें और थोड़ा पेशेंस भी रखें?
0: करेक्ट,
1: जी क्या कहेंगे?
0: तो मैं यही बोलूँगा, मैंने भी बहुत प्रैक्टिस करी है, 2 साल मेरे को वॉल प्रैक्टिस करी है, मैंने बहुत लोगों के साथ खेला है, लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगा कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो होती है वो बहुत ज़रूरी है, मैंने कितने मैचेस खेले वो मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे को वो याद है कि नए नए लोगों से मिला हूँ कैसे सारे, जैसे मैंने आपको एक मैच बताया उसके बारे में याद रहता है, तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वो जो जर्नी है आपकी वो
1: जी
0: बहुत अच्छी रहती है, आपको फिर आपको खेलना है तो आपका मतलब कुछ ना कुछ तो आपको खेलना ही चाहिए आपको, और टेबल टेनिस एक ऐसा गेम है जो आपको स्टैमिना भी आपका इम्प्रूव करता है, आपका मूवमेंट्स भी ये आपके
1: अच्छे
0: मूवमेंट
1: रहते
0: स्ट्रांग
1: हैं
0: कराता है,
1: और
0: तो
1: आपको फिट रखने में
0: हाँ
1: मदद
0: आपको
1: करता है।
0: फिट रखने में बहुत मदद करता है वो, तो नए को मैं ये बोलूँगा, नए खिलाड़ियों को कि आप खूब से खूब टाइम दें, मतलब एज अ स्टडीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए आपको
1: जी
0: उसके लिए,
1: जी
0: लेकिन आपका कोई भी स्पेयर टाइम होगा तो उसमें अगर आप टेबल टेनिस को टाइम दे सकते हैं तो उसके लिए आपको ज़रूर मेहनत करनी चाहिए।
1: तो प्रखर मदान, आप एक अच्छे खिलाड़ी बने रहें और नित नई सफलताएं आपको मिलते रहें, ऐसी शुभकामनाएं आकाशवाणी आपको देती है।
2: अभी आप सुन रहे थे टेबल टेनिस खिलाड़ी प्रखर मदान से की गई बातचीत, कार्यक्रम का समय हो चला है, अब हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल जगत, ये आकाशवाणी है। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगा हर्ट्ज और दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर।
1: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है।

ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरत का है। मीडियम वेव 326.72 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात के 10:30 हुआ चाहते हैं। आइए सुने कार्यक्रम फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत के आज के इस अंक के साथ सभी सुनने वालों को नमस्कार। रोहिता शर्मा की ओर से दोस्तों, दिन में हमारी मुलाकात अक्सर अपने दिल से कहाँ होती है। दिमाग दौड़ाता है, हम दौड़ते हैं, थक कर चूर शाम का इंतजार करते हैं, लेकिन शाम ढलते कहाँ देख पाते हैं। रात आती है और दिल इस रात के साथ जागता है, न सोता है न सोने देता है। रात हमें कुछ याद नहीं था, रात हमें कुछ याद नहीं था, रात बहुत ही याद आई हो।

दिन ढल जाए, हाय रात न जाए। दोस्तों, रात के वक्त दर्द ही दर्द याद आए, ऐसा नहीं, मीठी यादों का पुरकेफ झोंका हमें खुशियों से भर सा जाता है कि आहट सी कोई आए तो लगता है कि तुम हो, उस साया कोई लहराए तो लगता है कि तुम हो, और जब रात गए कोई किरण मेरे बराबर चुपके से सो जाए तो लगता है कि तुम हो।

तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। दोस्तों, दिल के पास होके भी दूर होना मजबूरी है। ऐसी मजबूरियों से मोहब्बत कहाँ कम होती है। ये रात का वक्त

उसी महबूब का दीदार करवाता ही है। वो की खुशबू की तरह फैला था मेरी चार सू, वो की खुशबू की तरह फैला था मेरी चार सू, मैं उसे महसूस कर सकता था, सू सकता नहीं।

आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है। क्या कहा है? यही ना कि यह रात फिर ना आएगी। दोस्तों, ये रातें, ये बातें यूं ही चलती रहेगी। जो कहा मैंने कि प्यार आता है मुझको तुम पर, जो मैंने कहा कि प्यार आता है मुझको तुम पर, हंस के कहने लगे और आपको आता क्या है।

दोस्तों, हर हसीन पल की गवार रात, बेकरारी का किला क्यों करे और खता का शिकवा क्यों करे, कि वो जान ही गए कि हमें उनसे प्यार है, वो जान ही गए कि हमें उनसे प्यार है, आंखों की मुखबरी का मजा हमसे पूछिए।

जी दोस्तों, रात दिन की दूरी कभी थी, लेकिन आज जबकि महबूब का दीदार हुआ और रूबरू हुआ, तो दिल ने यूं कहा कि कभी हुस्न पर्दा नशीब भी हो ज़रा आशिकाना लिबास में, कभी हुस्न पर्दा नशीब भी हो ज़रा आशिकाना लिबास में, जो मैं बन संवर के कहीं चलूं, मेरे साथ तुम भी चला करो।

इसी गीत के साथ आज के इस प्रोग्राम से अपनी दोस्त रोहिता शर्मा को अनुमति दें इस बात के साथ कि गम हमेशा खूबसूरत दीजिए, हम मोहब्बत हैं, मोहब्बत दीजिए, और आपसे मिलकर बहुत सी खुश हुआ। फिर मिलेंगे, अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी सूरतगढ़ है। 11 बजे हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्र सहित 15 लोगों की मौत हो गई और 6 छात्र घायल हो गए। उन्हें लखनऊ के KGMC में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
2: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
1: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट के रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल

0: स्थिति में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी और विपुल एम पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken,
2: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता

0: तैयार की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken,
2: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: जर्मनी के सोहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक भी जीते। भारत 5 स्वर्ण 1 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Fifteen people, most of them students, lost their lives in a tragic fire incident in the Aliganj area of Lucknow in Uttar Pradesh this afternoon. The tragedy occurred when a massive fire broke out at an animation coaching center located inside a commercial complex. Several injured persons have been admitted to nearby hospitals. Chief Minister Yogi Adityanath has said a high-level committee comprising the Director General of Police and the Additional Chief Secretary Home will investigate the incident and those found responsible would face strict action. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives in the fire. In a social media post, Mr. Modi announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased. The injured will receive 50,000 rupees each. Prime Minister Narendra Modi has stated that India is a fast-growing and credible economy and has become a reliable power. Mr. Modi said this while addressing a summit organized by a private media house in New Delhi today. He noted that several initiatives have been launched in the last 12 years with the motive of Nation First. Mr. Modi asserted that Nation First is India's highest guiding principle today.
4: Bharat jo kar raha hai, wo aane wale 1000 varsh ka future likhne wala hai. और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
3: The Prime Minister said the country has witnessed and endured cycles of growth and destruction. He added that India carries the memory chip of ages within its consciousness. Mr. Modi stated that India's actions are shaping the future for the next 1000 years. Highlighting the achievements of the NDA government over the past 12 years, Mr. Modi said, mobile connectivity has been extended to approximately 45,000 villages across the country. He also mentioned that around 75,000 banking correspondents and over 6,000 post offices were established. Shiv Sena leader and Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde today announced the induction of 6 Lok Sabha MPs from the Shiv Sena UBT faction into the party. Addressing a press conference in Mumbai, Mr. Shinde welcomed the MPs Sanjay Dina Patil, Sanjay Deshmukh, Sanjay Jadhav, Bhav Saheb Bakachore, Nagesh Patil Ashtikar and Om Prakash Rajanimbalkar into Shiv Sena. Mr. Shinde said, the induction of the 6 MPs marked the second phase of the movement that began in June 2022 when 40 Shiv Sena MLAs rebelled. He said the uprising was aimed at preserving the ideology of Shiv Sena founder Balasaheb Thackeray and safeguarding the party's Hindutva principles. Indian Railways has approved the deployment of automatic train protection system Kavach on 631 route kilometers of East Coast Railway to enhance safety and operational efficiency. The Railway Ministry said the project covers 6 important railway sections of East Coast Railway, including

0: बाकुआपाल बुधपंग हरदासपुर तुपारादीप खुर्दा रोड बालांगीर नौपाड़ा गुनपुर लांजीगढ़ रोड टू जूनागढ़ एंड बोबली सलूर. द हज कमिटी ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव पिलग्रिम्स फॉर हज 2027. Releasing the policy, Minority Affairs Minister Kiran Rijiju today said applications can be submitted online through the Haj Committee of India portal and the Haj Suvidha app, making the process more flexible, simple and accessible. India has recorded more than 5 lakh organ donation pledges, reflecting the growing awareness, compassion and collective commitment of citizens towards the life-saving cause of organ and tissue donation. The Ministry of Health and Family Welfare said, this achievement underscores the increasing public recognition of organ donation as a profound act of humanity that offers hope and a second chance at life to patients awaiting transplantation. In shooting, India added 4 more medals at the ISSF Junior World Championship, including a gold medal by teenager Pritam Kendre at Zue in Germany, to strengthen its position at the top of the medals tally. India's overall medal tally has now risen to 12, comprising 5 gold, 1 silver and 6 bronze medals. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है. मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर. हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात के 11:10 हुए हैं. अब हमारी आज की सभा के प्रसारण संपन्न होते हैं. कल सवेरे 5:52 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे. तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए. शुभरात्रि. जय हिंद.